आप सभी श्रोताओं को ढेरों शुभकामनाएं। अनमोल विचार के पश्चात अब लीजिए सुनिए भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। सबसे पहले आइए सुनते हैं मातृवंदना।

अभी आपने वाणी जयराम और साथियों की आवाज़ों में ये भजन सुना, और अब लीजिए सुनिए नितिन मुकेश और साथियों की आवाज़ों में ये भजन।

0: नंदिनी शरण के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, अब लीजिए सुनिए एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ चर्चा करें पावर टिलर की उपयोगिता के संदर्भ में। हमारे द्वीपों में भी पिछले कुछ वर्षों से पावर टिलर काफ़ी प्रचलित हुआ है और आप इसकी उपयोगिता के बारे में समझने लगे हैं। पावर टिलर सचमुच में किसान का एक बहुत बड़ा दोस्त होता है। इसके कई कारण हैं। पहली बात तो यह है कि सामान्य व्यक्ति द्वारा सामान्य ज्ञान प्राप्त करके पावर टिलर को चलाया जा सकता है, अर्थात इसमें किसी विशेष गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा ये कि पावर टिलर आकार एवं शक्ति में छोटा होने के कारण अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करता है और इस प्रकार ऊर्जा का नुकसान बहुत कम होता है। तीसरी बात ये कि पावर टिलर चूंकि छोटा होता है और कम शक्ति का होता है, इस कारण ट्रैक्टर की अपेक्षा ये सस्ता भी पड़ता है।

0: आकार में छोटा होने के कारण इसे छोटे आकार के खेतों में बिना किसी कठिनाई के आसानी से प्रयोग में लाया जा सकता है। पहाड़ी एवं ढालू जमीन में बनाए गए सीढ़ीनुमा खेतों पर भी पावर टिलर का इस्तेमाल आसानी से हो सकता है, जबकि इन जगहों पर ट्रैक्टर का इस्तेमाल लगभग नहीं हो सकता। अब जब हम अपने द्वीपों की बात करते हैं तो यहाँ पर पावर टिलर की उपयोगिता और भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ढालू जमीन में खेत छोटे छोटे आकारों के हैं। छोटे छोटे आकार के खेत होने के कारण इनमें ट्रैक्टर का उपयोग कुशलतापूर्वक हम नहीं कर पाते और इसमें कई प्रकार की कठिनाइयों का भी हमें सामना करना पड़ता है। यहाँ ये भी सच है कि अधिक वर्षा के कारण मिट्टी भारी हो जाने से कमज़ोर पशु भी इनमें ठीक से काम नहीं कर पाते। ऐसे में पावर टिलर यहाँ पे खेती के काम में आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध हो सकता है। पावर टिलर 6.5 से 12 अश्व शक्ति का दो पहियों वाला डीजल से चलने वाला इंजन यंत्र है, जिसमें हल, हैरो, कल्टीवेटर, ट्रॉली आदि लगाकर विभिन्न कृषि कार्य किए जा सकते हैं। धान की खेती के लिए खेत तैयार करने हेतु पावर टिलर बहुत ही उपयोगी है। आपने देखा होगा कि छोटे खेतों में बार बार ट्रैक्टर चलाने से पहियों के वहीं घूमने से गड्ढे पड़ जाते हैं और प्रायः कीचड़ में ये फंस जाते हैं, किंतु पावर टिलर का भार कम होने तथा रोटरी टिलर को आगे की दिशा में धकेलने की प्रवृत्ति के कारण कीचड़ बनाने वाले खेत में इसके फंसने की संभावना कम होती है। एक हेक्टेयर खेत में रोटावेटर, कल्टीवेटर आदि चलाने में लगभग 10 से 12 घंटे लगते हैं, जबकि सूखी जुताई में 11 से 15 घंटे का समय लगता है। पावर टिलर द्वारा विभिन्न दवाओं का छिड़काव एक अन्य विशेष यंत्र की सहायता से 500 लीटर प्रति घंटे की दर से किया जा सकता है। इस तरह सामान्यतः 1 घंटे में 1 हेक्टेयर भूमि का छिड़काव हो सकता है। फसल की कटाई, मड़ाई एवं ओसाई भी हम पावर टिलर की सहायता से कर सकते हैं। चारे की मशीन चलाना, पंप से पानी खींचना, इन कामों को भी हम पावर टिलर की मदद से कर सकते हैं। पावर टिलर में ट्रॉली लगाकर 10 क्विंटल तक सामान हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। इस प्रकार से किसान भाइयों, हम देख सकते हैं कि पावर टिलर खेतीबाड़ी में काफ़ी मददगार सिद्ध हो सकता है। किसान भाइयों, जब हम खेतीबाड़ी में आर्थिकी की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ट्रैक्टर जहाँ खरीदने में ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, वहीं ट्रैक्टर की मरम्मत और देखभाल में भी ज़्यादा खर्च होता है, जबकि पावर टिलर इसकी तुलना में कम खर्च पर हमें मिल जाता है और इसकी देखभाल में खर्च भी कम होता है। अतः हम आपसे कहेंगे कि हमारे इन द्वीपों की परिस्थितियों में पावर टिलर का उपयोग आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।
1: अभी आप सुन रहे थे एग्री टिप्स।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6 बजने को हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि ब्रिक्स देशों में सहयोग की प्रेरणा हो और मानवता की प्रगति के हित में योगदान दे। 2 दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
2: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे।

0: इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कजाखिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर पूरे देश में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर महीने में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होंगे। देशभर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है। इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह आज मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और 6 अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। श्री शाह उद्घाटन सत्र में हिंदी को बढ़ावा देने और इसके कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को 2025-26 के राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत MTEL गैया पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक चालक दल के 13 भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। दूतावास ने कहा कि खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय किया जा रहा है। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। इसे विनायक चतुर्थी या गणेश उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। 10 दिनों तक चलने वाले उत्सव का आज पहला दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The 18th BRICS summit concluded in New Delhi with Prime Minister Narendra Modi underscoring that the BRICS diversity should remain its identity, cooperation its inspiration, and its progress should contribute to the cause of humanity. In his closing remarks on the final day of the two-day summit, the Prime Minister said, BRICS is not merely a grouping of nations but an ecosystem of solutions. He said the discussions over the past 2 days had further strengthened this conviction. Mr. Modi expressed hope that the New Delhi Declaration adopted at the summit would provide clear direction for a shared vision and future cooperation. He stressed the need to translate all outcomes into time-bound actions that deliver last-mile impact.
0: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे

जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार एमवी भारत सीमा आज रात 8 बजे माया मंदिर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर श्री विजयपुरम से चलेगा। वापसी कल दोपहर बाद 2 बजे डिगलीपुर से चलकर माया मंदिर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। लिटिल अंडमान की यात्रा पर एमवी कैमलबे कल मंगलवार 15 तारीख को सुबह 10 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और वापसी कल ही रात 9 बजे लिटिल अंडमान

से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कालीघाट परसों 16 तारीख को सवेरे 7 बजे लिटिल अंडमान होते हुए कांडकुबार की यात्रा पर श्री विजयपुरम से जाएगा। रवानगी अगले रोज शाम 4 बजे कांडकुबार से चलकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। नानकौरी और कैमल बे की यात्रा पर नालंदा जहाज कल 15 सितंबर को श्री विजयपुरम से सुबह 9 बजे प्रस्थान करेगा तथा अगले रोज 17 तारीख को सुबह 8 बजे कैमल बे से चलकर नानकौरी होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। और अब अंतरद्वीप जाने वाले जलयान एमवी जॉली बॉय आज श्री विजयपुरम से दिन के 11 बजे शहीद द्वीप की यात्रा पर छूटेगा तथा यहां से ये जलयान दोपहर 1 बजे स्वराज द्वीप की यात्रा पर चलेगा और स्वराज द्वीप से आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम वापस आएगा। स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी रंगत आज दिन के 11

द जहाज कल 15 सितंबर को श्री विजयपुरम से सुबह 9 बजे प्रस्थान करेगा तथा सत्र अगले रोज 17 तारीख को सुबह 8 बजे कैमल बे से चलकर नानगौरी होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। और अब अंतरद्वीप जाने वाले जलयान एमवी जॉली बॉय आज श्री विजयपुरम से दिन के 11 बजे शहीद द्वीप की यात्रा पर छूटेगा तथा यहां से ये जलयान दोपहर 1 बजे स्वराज द्वीप की यात्रा पर चलेगा और स्वराज द्वीप से आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम वापस आएगा। स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी रंगत आज दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा। जलयान स्वराज द्वीप से दोपहर बाद 2 बजे शहीद द्वीप के लिए जाएगा और शहीद द्वीप से दोपहर बाद 3:30 पर श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी कमोटा आज श्री विजयपुरम से दोपहर बाद 2:30 पर शहीद द्वीप की यात्रा पर चलेगा और आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी स्ट्रेट आइलैंड आज शाम 5:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। वापसी कल प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। और अब कल के यात्रा कार्यक्रम पर एक नज़र। एमवी रंगत कल मंगलवार 15 सितंबर को श्री विजयपुरम से प्रातः 6 बजे स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर छूटेगा तथा कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से चलकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी कमोटा कल शहीद द्वीप तथा एमवी रानी चंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल प्रातः 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होंगे। एमवी कमोटा शहीद द्वीप से सवेरे 8:30 पर लौटेगा जबकि एमवी रानी चंगा कल सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी बम्बुका कल दिन की 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान स्वराज द्वीप की यात्रा पर दोपहर 1 बजे जाएगा और स्वराज द्वीप से दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम वापस आएगा। वहीं एमवी स्ट्रीट आइलैंड कल स्वराज द्वीप की यात्रा पर दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और स्वराज द्वीप से दोपहर बाद 2 बजे शहीद द्वीप के लिए जाएगा और शहीद द्वीप से कल ही दोपहर बाद 3:30 पर श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा आरंभ करेगा। अभी आप सुन रहे थे जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 6:15 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम।
1: इंद्रधनुष।

नमस्कार श्रोताओं, इंद्रधनुष कार्यक्रम में मैं अनीता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, प्रेम का अर्थ है प्यार, स्नेह जो हर किसी रिश्ते में होता है, लेकिन जो स्नेह हम अपने प्रिय के लिए अपने मन में रखते हैं वो कभी कभी शब्दों में बयां नहीं कर पाते। ऐसे में हमें प्रेम पत्र का सहारा लेना पड़ता है और उस पत्र को प्यार की स्याही में डुबोकर अपना प्रेम उस पत्र में लिख डालते हैं।

श्रोताओं, ये प्रेम रोग का लगना भी बहुत दुखदाई होता है। ये कब, कहां, किसे लग जाए कोई समझ नहीं पाता। दिल बेचैन हो जाता है, रातों को नींद गुम हो जाती है और खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कहा जाता है कि प्रेम रोग का इलाज तो डॉक्टर्स के पास भी नहीं होते।

श्रोताओं, कहा जाता है कि प्रेम के ढाई अक्षर होते हैं, लेकिन देखा जाए इस शब्द में वजन कई ज्यादा होते हैं। जो दिल से किसी को चाहता है, उसे ना तो कुछ पाने की खुशी और ना तो कुछ खोने का गम होता है।

0: इसी खूबसूरत संदेश के साथ अब समय है विदा लेने का। फिर मिलेंगे इंद्रधनुष कार्यक्रम में एक नए विषय और एक नई रंगों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
1: इंद्रधनुष।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इंद्रधनुष। और अब एक सूचना, आकाशवाणी श्री विजयपुरम ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट यानी प्रसारण सहयोगों के पैनल तैयार करने हेतु चयन परीक्षा आयोजित करेगा। उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होने के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं की दक्षता तथा कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। 31 अगस्त 2026 को उम्मीदवार की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन योग्यताओं को पूरा करने वाले एवं श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म आकाशवाणी के ड्यूटी रूम में प्राप्त किया जा सकता है। भरे हुए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026। प्रसारण सहायक के रूप में चयन भविष्य में किसी भी नियमित रोजगार का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क कर सकते हैं। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए रामचरित मानस गान। इसकी 361वीं कड़ी, गायक हैं सुरेश वाडेकर और महेंद्र कपूर।

श्री राम के राज्याभिषेक से जिस सुख, संतोष और आनंद का सृजन हुआ है वो अनंत है। दिन बीत रहे हैं किंतु किसी को भी समय के प्रवाह का भान नहीं हो रहा। इस प्रकार जब 6 माह की अवधि बीत चली तो एक दिन श्री राम ने अपने उन सखा सहयोगियों को बुला भेजा जो लंका से उनके साथ आए थे और जिन्हें आनंद सागर में गोते लगाते अपने घर की सुधि

बिसर गई थी। उनके त्याग, प्रेम और समर्पण की प्रशंसा करके कहा, मेरा प्रेम आप सब पर निरंतर बना रहेगा। मेरे हित के लिए आप लोगों ने अपने घरों को भी त्याग दिया है, किंतु अब आपको लौट जाना चाहिए। कर्तव्य पालन करते हुए आप मुझ पर प्रेम बनाए रखें। विदा लेकर जब ये अतिथिगण चले तो अंगद ने श्रीराम के चरण पकड़ लिए। आर्द्र कंठ से बोले, हे भक्त वत्सल, मरते समय मेरे पिता बाली ने मुझे आपकी गोद में डाल दिया था, अतः आप मेरा त्याग न कीजिए।

0: सुरेश वाडेकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में अभी आपने रामचरितमानस गान की 361वीं कड़ी सुनी। संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कचरा प्रबंधन के नए नियम, परिवर्तन की शुरुआत घर से पर समाचार वार्ता। लेखक और वाचक हैं चित्रकांत शर्मा।
1: हर घर से रोज निकलने वाला कचरा हमें मामूली लग सकता है, लेकिन जब यही कचरा करोड़ों घरों से निकलता है तो यह देश के सामने बड़ी चुनौती बन जाता है। गीला और सूखा कचरा एक साथ फेंकने से न केवल सफाई की समस्या बढ़ती है बल्कि उपयोगी सामग्री भी बर्बाद हो जाती है। इसी समस्या से निपटने और कचरे को संसाधन में बदलने की दिशा में केंद्र सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 लागू किए हैं। ये नियम 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो चुके हैं। नए नियमों का उद्देश्य कचरा कम करना, उसे शुरुआत में ही अलग करना, अधिक से अधिक कचरे का पुनर्चक्रण करना और लैंडफिल को अंतिम

0: विकल्प बनाना है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत ये नियम बनाए हैं। इनमें चक्रीय अर्थव्यवस्था और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व पर बल दिया गया है। सरल शब्दों में कहें तो अब कचरे को बेकार वस्तु नहीं बल्कि दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले संसाधन के रूप में देखने की जरूरत है। नए नियमों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा घर से निकलते समय ही कचरे को अलग अलग रखना होगा। पहला है गीला कचरा, जिसमें रसोई और भोजन के अवशेष, फल सब्जियों के छिलके, मांस और फूल आदि शामिल हैं। इससे खाद और बायोमीथेन तैयार की जा सकती है। दूसरा है सूखा कचरा, जिसमें प्लास्टिक, कागज, धातु, कांच, लकड़ी और रबर आते हैं। इसे छटाई और पुनर्चक्रण के लिए सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा में भेजा जाएगा। तीसरा है स्वच्छता कचरा, जैसे डायपर आदि। ऐसे कचरे को सुरक्षित तरीके से लपेटकर अलग रखना होगा। चौथा है विशेष देखभाल वाला कचरा, जिसमें दवाइयां, पेंट के डिब्बे, बल्ब, बैटरी और पैराथर्मामीटर जैसी चीजें शामिल हैं। इन्हें अधिकृत एजेंसियों या निर्धारित संग्रह केंद्रों तक पहुंचाना होगा। स्थानीय निकायों को अलग अलग कचरे के लिए जरूरी डिब्बे और संग्रह व्यवस्था उपलब्ध करानी होगी। नए नियमों में बड़े आवासीय परिसरों, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, कॉलेज, विश्वविद्यालय, सरकारी विभागों और बड़े व्यवसायिक संस्थानों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। 20,000 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्र, रोज 40,000 लीटर या अधिक पानी की खपत अथवा प्रतिदिन 100 किलोग्राम या अधिक कचरा पैदा करने वाली संस्थाओं को थोक अपशिष्ट उत्पादक माना जाएगा। ऐसी संस्थाओं को कचरे का संग्रह, परिवहन और प्रसंस्करण पर्यावरण अनुकूल तरीके से करना होगा। गीले कचरे का प्रसंस्करण संभव हो तो परिसर में ही करना होगा। उन्हें हर साल 30 जून तक ऑनलाइन रिटर्न भी जमा करना होगा। कचरा प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा। इसमें कचरे के उत्पादन को लेकर संग्रह, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान तक की जानकारी दर्ज होगी। कचरा प्रबंधन से जुड़े स्थानीय निकायों, संस्थाओं, परिवहनकर्ताओं और प्रसंस्करण इकाइयों का पंजीकरण भी होगा। बिना पंजीकरण करने, गलत जानकारी देने, जाली दस्तावेज लगाने या कचरे का सही तरह से पृथककरण नहीं करने पर पर्यावरणीय मुआवजा देना पड़ सकता है। इसके लिए प्रदूषक भुगतान करें सिद्धांत लागू किया गया है। नए नियमों के तहत लैंडफिल में केवल वही कचरा भेजा जाएगा जिसे न पुनर्चक्रित किया जा सकता है, न उससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। मिश्रित कचरे को लैंडफिल में भेजना महंगा किया जाएगा, ताकि कचरे को अलग करना अधिक बेहतर विकल्प बने। पुराने डंप साइटों का 31 अक्टूबर तक मानचित्रण और मूल्यांकन करना होगा। इसके बाद उनका जैव खनन और जैव उपचार समयबद्ध तरीके से किया जाएगा। कचरे से ऊर्जा प्राप्त करने पर भी जोर दिया गया है। 1500 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम या अधिक ऊर्जा वाले कचरे का उपयोग ऊर्जा पुनर्प्राप्ति में किया जाएगा। कचरे से बने ईंधन के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। पहाड़ी और द्वीपीय क्षेत्रों में पर्यटकों से उपयोगकर्ता शुल्क लेने, कचरा प्रबंधन की क्षमता के अनुसार पर्यटकों की संख्या नियंत्रित करने और विशेष कचरा संग्रह केंद्र बनाने जैसे प्रावधान किए गए हैं। नए नियम केवल सरकार या नगर निकायों की जिम्मेदारी नहीं है, इनकी सफलता आम नागरिकों की भागीदारी पर निर्भर करेगी। घर से निकलने वाले कचरे को सही तरीके से अलग करना एक छोटी आदत जरूर है, लेकिन करोड़ों घरों में यही आदत बड़ा बदलाव ला सकती है। स्वच्छ भारत का सपना केवल सफाई करने से पूरा नहीं होगा, बल्कि कचरा पैदा करने के तरीके और उसे संभालने की हमारी सोच बदलने से पूरा होगा। आज हम कचरे को अलग करेंगे तो कल उसे खाद, ऊर्जा और उपयोगी संसाधनों में बदल सकेंगे। इसलिए नए नियमों की असली शुरुआत किसी सरकारी कार्यालय से नहीं बल्कि हमारे अपने घर से होती है।
1: अभी आप कचरा प्रबंधन के नए नियम, परिवर्तन की शुरुआत घर से पर समाचार वार्ता सुन रहे थे। लेखक और वाचक थे चित्रकांत शर्मा। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। वतन के गीत देशगान के तहत आइए सुनते हैं ये देशभक्ति रचना।

वतन के गीत कार्यक्रम के तहत अभी आप ये देशभक्ति रचना सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:50 हुए हैं। आइए आपको बता दें मौसम का हाल व कार्यक्रमों का विवरण। सबसे पहले मौसम। मौसम कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार द्वीपों के एकाध स्थानों में हल्के से मध्यम वर्षा हुई। कल सवेरे तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि द्वीपों के एकाध स्थानों में हल्के से मध्यम वर्षा होगी या गरज के साथ तेज हवाएं चलेंगी जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रहेंगी, बढ़कर 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती हैं। मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि तेज हवाओं के कारण समुद्र में हवाओं की गति लगभग 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रहेंगी, जिसके बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। ऐसे में मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे समुद्र में न जाएं। ये था मौसम का हाल। और अब श्रोताओं, एक नज़र हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। आज सवेरे 7:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी देशभक्ति गीतों से सजा कार्यक्रम देश रागनी, और ठीक उसी वक्त विविध भारती मुंबई पर आप सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम

0: भूले बिसरे गीत। प्राइमरी चैनल और 100.9 मेगाहर्ट्ज पर सवेरे 7:30 पर सुनिएगा गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम। इसके तहत हितेश कुमार की वार्ता होगी, विषय रहेगा हर्ष और उल्लास का पर्व गणेश उत्सव। सुगम संगीत के कार्यक्रम के तहत फनकार होंगे सलमा आगा, मोहम्मद अजीज, तलत अजीज और मनर उदास। सवेरे 8:30 पर सवेरे 9 बजे होगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम के तहत सुनेगा उस्ताद अमजद अली खां का सरोद वादन। कार्यक्रम का समय रहेगा 9:30। सुबह 10 बजे सुनेगा गीत गाता चल कार्यक्रम। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुन पाएंगे दिन के 11 बजे। दिन के 11:30 पर एक ही कलाकार कार्यक्रम के तहत आज सुनिए अनुराधा पौडवाल की गाये गीत। तेलुगु कार्यक्रम के तहत एक ही संगीतकार के गीत सुनवाए जाएंगे। कार्यक्रम का समय रहेगा 12:00। दोपहर 12:30 पर मलयालम कार्यक्रम के तहत विनायका चतुर्थी पर मिनी वी का लिखा रूपक आप सुन पाएंगे। सामूहिक शिक्षा का कार्यक्रम सुनिएगा दोपहर 1:30 पर कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम सुना जा सकता है। दोपहर बाद 2:30 पर प्राइमरी चैनल पर सभा समाप्ति उद्घोषणा के पश्चात FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन पाएंगे फोन आउट कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स। और यूं ही गाते रहो कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर बाद 3:30 पर। शाम 4 बजे होगी हमारी दूसरी सभा की शुरुआत निकोबारी कार्यक्रम के साथ। इसके तहत हरमिंदर बे के सदस्यों के गाए गीत सुनिएगा। सुगम संगीत के कार्यक्रम के तहत फरीदा खानम को आप सुन पाएंगे शाम के 4:30 पर। शाम 4:40 पर सुनिएगा कार्यक्रमों का विवरण। 4:45 पर आप सुन पाएंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। तमिल कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 5 बजे। 5:30 पर बांग्ला कार्यक्रम के तहत सुनिएगा युवाणी कार्यक्रम। कृषि जगत कार्यक्रम के तहत बुद्धिमता के प्रतीक श्री गणेश विषय पर श्रीमती अहल्या गौरी की वार्ता आप सुन पाएंगे शाम के 6 बजे। 6:30 पर होगा प्रोग्राम पॉप मसाला। शाम 7:30 पर युवाणी कार्यक्रम के तहत गजलों पर आधारित कार्यक्रम होगा कहकशा तथा हिंदी दिवस और गणेश चतुर्थी पर चर्चाएं होंगी। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:55 होने को हैं। अब संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। राष्ट्रीय राजधान्यां नवदिल्ल्यां 18 ब्रिक्स शिखर सम्मेलनं सम्पन्नम्। सम्मेलनस्य समापन वेलायां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विशेषतया निरूपितवान् यत् विविधता एव ब्रिक्स समूहस्य अभिज्ञानं भवेत्। सहकारः अस्य प्रेरणा स्यात्, अथ अस्य प्रगतिः समग्र मानवतायाः हिताय भवेत्। द्विदिवसीयस्य अस्य शिखर सम्मेलनस्य अन्तिमे दिने स्वकीय समापन सम्बोधने प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् ब्रिक्स इति न केवलं राष्ट्राणां समूहः अपितु समाधानानां एकं पारिस्थितिकी तन्त्रं वर्तते। तेन प्रतिपादितं यत् विगतयोः दिनद्वयोः जाताभिः मन्त्रणाभिः अयं दृढप्रत्ययः अधिकं पुष्टङ्गतः। श्रीमोदी आशां प्राकटयत् यत् सम्मेलने स्वीकृतं नवदिल्ली घोषणापत्रं प्रकटितदृष्टये आगामि सहकाराय च सुस्पष्टां दिशं निर्दिशेत्। सः सर्वाणि निष्पन्नानि परिणामात्मकलक्ष्याणि समयबद्धकार्येषु परिणमयितुम् अन्त्योदयप्रभावं जनयितुं च बलम् अददात्। इतः पूर्वम् उद्घाटन भाषणे प्रधानमन्त्री मोदी न्यरूप्यत यत् ब्रिक्स समूहे सुदृढतायाः संवर्धने विशेष बलं दत्तमस्ति, यतोहि वैश्विक संक्रमण

0: प्रमाणेन जलवायु आपद्भिः आपूर्ति श्रृंखला विघ्नैश्च स्पष्टीभूतं यत् अद्यतनस्य परस्पर सम्बद्धस्य विश्वस्य कोऽपि सङ्कटः केवलम् एकस्मिन्नेव क्षेत्रे सीमितः न तिष्ठति। विदेशमन्त्रालयेन विज्ञापितं यत् नवदिल्ल्यां सम्पन्नेन अष्टादश ब्रिक्स शिखरसम्मेलनेन बहवः मूर्तविकासोन्मुखः परिणामाः सञ्जाताः। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयता विदेशमन्त्रालयस्य सचिवेन सुधाकर दलेल इत्यमुना न्यरूप्यत यत् विविधेषु विषयक्षेत्रेषु 50+ मूर्तपरिणामाः प्राप्ताः। एतामुपलब्धिं सः भारतस्य ब्रिक्स अध्यक्षतायाः महत्या सिद्धित्वेन वर्णितवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी नवदिल्ल्यां समनुष्ठिते ब्रिक्स शिखरसम्मेलने उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्तानां बहूनि उपवेशनानि अकरोत्। विगतेषु त्रिषु दिवसेषु प्रधानमन्त्रिणा विविध देशानां शासनाध्यक्षैः राष्ट्राध्यक्षैश्च सह 15 द्विपक्षीयोपवेशनानि आचरितानि। एतदतिरिच्य तेन विश्वनेतृभिः अन्ताराष्ट्रिय संस्थानां प्रमुखैश्च सह काश्चन अनौपचारिकाः संक्षिप्तमन्त्रणाः अपि विहिताः। एताभिः मन्त्रणाभिः द्विपक्षीयसम्बन्धानां दृढीकरणाय, परस्परहितसम्बद्धेषु विषयेषु विचारविमर्शाय, अथ च क्षेत्रीयवैश्विकघटनाक्रमेषु स्वदृष्टिकोणस्य आदानप्रदानाय महत्वपूर्णः अवसरः समुपलब्धः। केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः अद्य मुम्बईनगरे 26+ हिन्दीदिवसस्य अथ च 6 अखिलभारतीयराजभाषासम्मेलनस्य उद्घाटनसत्रं सम्बोधयिष्यति। कृत्स्नेहि देशे अद्य गणेशचतुर्थी पर्व महता भक्तिभावेन श्रद्धया च आचर्यते। अयं पावनदिवसः ऋद्धिबुद्धिसिद्धीनां प्रतीकभूतस्य भगवतः श्रीगणेशस्य जन्मोत्सवत्वेन आमान्यते। विनायकचतुर्थी उत गणेशोत्सवः इति नाम्ना प्रसिद्धः अयं दिनविशेषः 10-दिवसीयानाम् उत्सवकार्यक्रमाणां शुभारम्भं सूचयति, यस्मिन् भक्ताः स्वकीयगृहेषु मण्डपेषु च भगवतः गणेशस्य मृण्मयीं प्रतिमानं प्रतिष्ठाप्य विधिवत् पूजार्चनं कुर्वन्ति। भारत ऋतुविज्ञानविभागेन अद्य गुजरात राज्ये अतितीव्रवृष्ट्यै नारङ्गवर्णपरा सञ्चेतना प्रकाशिता। ऋतुविज्ञानविभागानुसारम् अद्य राष्ट्रियराजधान्यां नवदिल्ल्यां, हरियाणाराज्ये, चण्डीगढ़े, पंजाबे, पूर्वराजस्थाने, असमे, अरुणाचलप्रदेशे च अतिवृष्टिः सम्भाव्यते। गतरात्रौ दुबईनगरे अनुष्ठितायां महिलानां 20-प्रतिविंशतिः एशिया चषक प्रतिस्पर्धायाः अन्तिमस्पर्धायां भारतेन श्रीलंकादलं 270 पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 7 हैं। जन सूचनाएं। स्थानीय मौसम कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम तथा आसपास के क्षेत्रों में 0.1 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। आज सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 97% रही, जबकि न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कल का अधिकतम तापमान रहा 31.6 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय 5:09 पर हुआ तथा सूर्यास्त का समय रहेगा 5:21। और अब एयर इंडिया की आज की उड़ानों के बारे में आपको बता दें। दिल्ली से आ रहा विमान 2937 श्री विजयपुरम पहुंचेगा आज दिन के 11 और वापसी पर विमान 2936 श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए दिन के 11:40 पर उड़ान भरेगा। ये थी एयर इंडिया से प्राप्त जानकारी।

क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर है तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।

और अब कार्यक्रम संबंधी जानकारी आपको दे दें, आज सवेरे 7:15 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीतों से सजा कार्यक्रम देश रागिनी। प्राइमरी चैनल और 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर सवेरे 7:30 पर आप सुन पाएंगे गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम। इसके तहत हितेश कुमार की वार्ता होगी, विषय रहेगा हर्ष और उल्लास का पर्व गणेश उत्सव। जन सूचनाएं समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:05 होने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन इस अंतराल के बाद।

0: मुख्य समाचार। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्य में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। डॉक्टर दिनेश शर्मा कल अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 14वें उपराज्यपाल के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है और आज पूरे देश के साथ द्वीप समूह में भी गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह के समाचारों के साथ मैं तरन्नुम मोहम्मद। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है।
1: सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल

0: देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
1: श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए।
0: इसमें ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है, क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं, उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियलिटीज, बट टुगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी।
1: डॉक्टर दिनेश शर्मा कल अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 14वीं उपराज्यपाल के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। मनोनीत उपराज्यपाल का शपथ ग्रहण समारोह कल दिन में 11:30 बजे लोक निवास में आयोजित किया जाएगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविन्द्र विट्ठल राव घुगे उपराज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। प्रशासन के मुख्य सचिव ज्ञानेश भारती नियुक्ति पत्र पढ़कर सुनाएंगे। उपराज्यपाल कल अपनी पत्नी डॉ जयलक्ष्मी शर्मा के साथ श्री विजयपुरम पहुंचे। वीर सावरकर हवाई अड्डे पर सांसद विष्णुपद रे, मुख्य सचिव तथा प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। सांसद ने मनोनीत उपराज्यपाल डॉ दिनेश शर्मा का स्वागत करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि उनके अनुभवी नेतृत्व में द्वीपवासियों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को नई ऊर्जा, दिशा और उद्देश्य मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप द्वीप समूह में विकास, जनकल्याण और इसकी अपार संभावनाओं को साकार करने की दिशा में एक नई गति देखने को मिलेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं।
2: अब श्री विजयपुरम में हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक जुंगलीघट लेकर आया है महिलाओं के लिए विशेष स्त्री रोग एवं आधुनिक अल्ट्रासाउंड सेवाएं एक ही छत के नीचे। स्त्री रोग एवं निसंतानता संबंधी परामर्श के लिए उपलब्ध है गायनेकोलॉजिस्ट एवं इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट। माहवारी की समस्या PCOS, गर्भावस्था की देखभाल, गर्भधारण में कठिनाई तथा महिलाओं की अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के लिए विशेषज्ञ परामर्श उपलब्ध है। साथ ही आधुनिक अल्ट्रासाउंड एवं डॉपलर सेवाएं, प्रेगनेंसी स्कैन, एनोमली स्कैन, एब्डोमेन पेल्विस अल्ट्रासाउंड एवं डॉपलर स्टडीज। तो देर न करें, अपने स्वास्थ्य को दें विशेषज्ञ देखभाल। आज ही अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 9933219444 या 89-00914124। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक अनन मार्ग रोड जुंगलीघाट श्री विजयपुरम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार आप सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म एक्स, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज देश भर में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नवी मुंबई में हिंदी दिवस कार्यक्रम और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में हिंदी को राजभाषा, जनभाषा और संपर्क भाषा के तौर पर विकसित करने के साथ साथ दूसरी भारतीय भाषाओं के साथ इसका तालमेल को बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। उधर अंडमान निकोबार प्रशासन की ओर से भी सभी सरकारी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में आज से 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जाएगा। प्रशासन और केंद्र सरकार के कार्यालयों के अधिकारियों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों

बीच राजभाषा हिंदी का व्यापक प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से कई विशेष कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है। पूरे पखवाड़े के दौरान समाचार पत्रों में राष्ट्रीय नेताओं के राजभाषा संबंधी विचार प्रकाशित किए जाएंगे। इस सिलसिले में कल श्री विजयपुरम मुख्यालय क्षेत्र के तमिल, बांग्ला और तेलुगु माध्यम के अहिंदी भाषी विद्यालयों में कक्षा छठी से दसवीं तक विद्यार्थियों के लिए हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। 16 सितंबर को हिंदी टंकन प्रशिक्षण केंद्र में प्रशासन और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के कर्मचारियों के लिए हिंदी टंकन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। हिंदी पखवाड़ा का समापन समारोह 30 सितंबर को आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। आज पूरे देश में गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता है। इसे विनायक चतुर्थी या गणेश उत्सव के नाम से भी जाना जाता है।

ताओं को प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। आज पूरे देश में गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता है। इसे विनायक चतुर्थी या गणेश उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। 10 दिनों तक चलने वाले उत्सव की शुरुआत का आज पहला दिन है। इस दौरान लोग अपने घरों में भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्तियाँ स्थापित करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। द्वीप समूह में भी आज से गणेश पूजा का आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न स्थानों पर पूजा पंडाल लगाए गए हैं, जिसे आकर्षक ढंग से सजाया गया है। द्वीपों के सांसद विष्णुपद रे ने द्वीपवासियों को गणेश चतुर्थी के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भगवान गणेश की कृपा से हर घर में सुख, समृद्धि, शांति और उत्तम स्वास्थ्य का वास हो। उन्होंने इस पवित्र त्यौहार में रिश्तों में मिठास, प्रेम और समाज में सद्भाव व एकता को और मजबूत करने की कामना की है। अंडमान टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने भी गणेश चतुर्थी के अवसर पर लोगों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्य में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। डॉक्टर दिनेश शर्मा कल अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 14वें उपराज्यपाल के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है और आज पूरे देश के साथ द्वीप समूह में भी गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:15 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए हमारा अगला कार्यक्रम।

आप सुन रहे हैं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम देश रागनी। श्रोताओं, देश केवल एक भूभाग नहीं बल्कि हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमारी भावनाओं का नाम है। इसकी मिट्टी में हमारे सपने हैं, इसकी हवाओं में हमारी आजादी की खुशबू है और इसके तिरंगे में करोड़ों दिलों की धड़कन। इन्हीं भावनाओं को सुरों में पिरोते हुए आज सुनेंगे कुछ ऐसे गीत जो हमें अपने वतन से मोहब्बत करना ही नहीं बल्कि उसके प्रति अपने कर्तव्यों को याद रखना भी सिखाते हैं।

एक देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकता होती है। जब अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं एक तिरंगे के नीचे आकर एक हो जाती हैं, तब बनता है एक मजबूत और खूबसूरत हिंदुस्तान।

भारत की पहचान सिर्फ उसकी धरती से नहीं बल्कि उसकी नदियों, पर्वतों और प्रकृति की उस अनुपम सुंदरता से भी है, जिसे देखकर हर भारतीय का मन गर्व से भर उठता है। हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर गंगा की निर्मल धारा तक ये देश अपने भीतर प्रकृति और संस्कृति की अनगिनत कहानियां समेटे हुए हैं।

देशभक्ति हमारे छोटे बड़े कर्म से दिखाई देने वाली जिम्मेदारी है। आइए अपने देश की एकता, शांति और प्रगति के लिए हमेशा अपना योगदान देते रहें। इसी जज्बातों के साथ आज के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम देश रागिनी। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब पेश है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।

0: सुबह के नई किरणों, नई उम्मीदों और संगीत की मीठी धुनों के साथ आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान में। मैं हूं देवकी और आप सभी श्रोताओं का गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। भगवान गणेश आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता लेकर आए और आपके सभी कार्य को मंगलमय बनाए। भगवान गणेश को हम विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता के रूप में पूजते हैं। किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश जी का स्मरण करने की परंपरा इसलिए है क्योंकि वे बुद्धि, विवेक और शुभारंभ के प्रतीक माने जाते हैं। तो चलिए इस खुशनुमा सुबह की शुरुआत उन्हीं के नाम से करते हैं और कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं हर्ष और उल्लास का पर्व गणेश उत्सव विषय पर हितेश कुमार शर्मा की वार्ता।
1: आप सभी श्रोताओं को मैं हितेश कुमार शर्मा की तरफ से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर हम भारतीय संस्कृति का समृद्धि, एकता और श्रद्धा का पर्व पर बात करेंगे। प्रिय श्रोताओं, आज का यह विशेष रेडियो कार्यक्रम एक ऐसे पर्व को समर्पित है जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संदर्भों में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, गणेश चतुर्थी। इस पर्व के माध्यम से हम न केवल भगवान गणेश के जीवन और शिक्षाओं से परिचित होते हैं बल्कि भारतीय समाज की एकता, समरसता और हमारी पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी के महत्व को भी समझते हैं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में गणेश चतुर्थी के विभिन्न पहलुओं को

विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। गणेश चतुर्थी का धार्मिक और पौराणिक महत्व। श्रोताओं, गणेश चतुर्थी जिसे विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है, भगवान गणेश के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगवान गणेश को हिंदू धर्म में विघ्नहर्ता और सिद्धिदाता के रूप में पूजा जाता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी के पूजा के बिना अधूरी मानी जाती है, क्योंकि यह विश्वास है कि गणेश जी सभी बाधाओं को दूर कर मार्ग को सुगम बनाते हैं। गणेश चतुर्थी का पौराणिक महत्व बहुत ही गहरा है और व्यापक है। पुराणों के अनुसार देवी पार्वती ने अपने शरीर के माटी से गणेश जी का निर्माण किया। उन्होंने गणेश जी को अपने स्नानागार की रखवाली के लिए नियुक्त किया। जब भगवान शिव लौटे और प्रवेश करने का प्रयास किया तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। शिव जी ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर गणेश जी का सिर काट दिया। जब पार्वती जी को इस घटना का पता चला तो वह अत्यधिक दुखी हुई और पूरी सृष्टि को नष्ट करने की धमकी दी। शिव जी ने पार्वती जी के दुख को देखकर गणेश जी को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। उन्होंने एक हाथी के बच्चे का सिर लगाकर गणेश जी को पुनर्जीवित किया और उन्हें गणाध्यक्ष यानी सभी गणों का मुखिया का पद प्रदान किया। इस प्रकार गणेश जी का स्वरूप अत्यधिक अद्वितीय और पूजनीय है। उन्हें हाथी जैसे सिर और मानव शरीर के साथ एक प्रतीकात्मकता के भरे हुए देवता हैं। उनका बड़ा सिर और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, छोटी आंखें ध्यान और सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक हैं, और बड़ा पेट पूरे ब्रह्मांड को समाहित करने की क्षमता का प्रतीक है। गणेश जी के हर अंग और उनके रूप के पीछे गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा हुआ है। गणेश चतुर्थी का इतिहास और सामाजिक प्रसार। श्रोताओं, गणेश चतुर्थी का उत्सव सदियों पुराना है, लेकिन इसका मौजूदा स्वरूप 19वीं शताब्दी में विकसित हुआ जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसे सार्वजनिक समारोह में मनाने की परंपरा शुरू की। इससे पहले गणेश चतुर्थी मुख्यतः घरों तक सीमित थी, जहां परिवार के लोग गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर उनकी पूजा करते थे। लेकिन तिलक जी ने इस पर्व को सामाजिक राजनीतिक उद्देश्यों के साथ जोड़ा। उन्होंने गणेश चतुर्थी को एक सामूहिक उत्सव का रूप दिया जो ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों को एकजुट करने का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया। तिलक जी के प्रयासों से गणेश चतुर्थी न केवल महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में एक प्रमुख त्यौहार बन गया। इस उत्सव के माध्यम से उन्होंने लोगों में एकता, भाईचारे और देशभक्ति की भावना को जागृत किया। यह पर्व अब भी समाज में एकता और सद्भावनाओं को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बना हुआ है। श्रोताओं, गणेश चतुर्थी का आयोजन और पूजा विधि में गणेश चतुर्थी का पर्व 10 दिनों तक चलने वाला एक विशाल और भव्य आयोजन होता है। इस दौरान गणेश जी की मूर्तियों की स्थापना की जाती है, जिन्हें खास तौर पर कलाकारों द्वारा तैयार किया जाता है। लोग अपने घरों, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर गणेश जी की मूर्तियों को स्थापित करते हैं। इस स्थापना के साथ ही गणेश चतुर्थी का आरंभ होता है। स्थापना के बाद अगले 10 दिनों तक गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। प्रतिदिन विशेष आरती की जाती है, जिसमें परिवार के सदस्य और समुदाय के लोग मिलकर भाग लेते हैं। भक्तजन गणेश जी को मोदक, लड्डू, दुर्वा, नारियल और अन्य मिठाइयों का भोग लगाते हैं। इस दौरान धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। पंडालों में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, जिसमें नृत्य, संगीत, नाटक और बच्चों की प्रतियोगिताएं शामिल हैं। समाज में गणेश चतुर्थी का योगदान। गणेश चतुर्थी न केवल धार्मिक उत्सव है, बल्कि यह समाज में एकता और सहयोग की भावना को भी प्रबल करता है। इस पर्व के माध्यम से लोग अपने अपने मतभेदों को भुलाकर एक साथ मिलते हैं और उत्सव मनाते हैं। यह पर्व विशेष रूप से महाराष्ट्र में समाज के सभी वर्गों को एक साथ लाने का एक महत्वपूर्ण साधन बना हुआ है। गणेश चतुर्थी के दौरान समाज के विभिन्न वर्गों और समुदाय के लोग एकजुट होकर इसे मनाते हैं। यह पर्व न केवल धार्मिक उन्माद को प्रकट करता है, बल्कि समाज में भाईचारे, सद्भावना और सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। श्रोताओं, यह पर्व समाज के उन सभी वर्गों को एक मंच प्रदान करता है जो समाज में हाशिए पर होते हैं, और सामाजिक एकता को प्रोत्साहित करता है जो एक ऐसे समाज का निर्माण करता है जो परस्पर सम्मान और सहयोग पर आधारित होता है। गणेश चतुर्थी के सार्वजनिक उत्सव में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमियों से आए लोग एक साथ मिलते हैं, इसे मनाते हैं, जिससे समाज में एकता की भावना प्रबल होती है। गणेश जी के विसर्जन का क्या महत्व है? श्रोताओं, इस पर हम बात करते हैं कि गणेश चतुर्थी का 10वां दिन जिसे अनंत चतुर्दशी कहा जाता है अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। इस दिन गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है।

0: है जो कि जीवन के चक्र और नश्वरता का प्रतीक है। विसर्जन का यह अनुष्ठान न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। विसर्जन के दौरान भक्तजन गणपति बप्पा को विदाई देते हैं और इस समय गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आके जयकारे लगाते हैं। यह दृश्य बहुत ही भावुक और भक्तिमय होता है। विसर्जन का यह कर्मकांड इस तथ्य को दर्शाता है कि जीवन अनश्वर है। हर चीज की एक निश्चित अवधि होती है। यह हमें सिखाता है कि हम सभी को जीवन के इस चक्र को स्वीकार करना चाहिए और भगवान गणेश के आशीर्वाद से आने वाली चुनौतियों का सामना करना चाहिए। श्रोताओं, पर्यावरणीय दृष्टिकोण और चुनौतियाँ, जहाँ गणेश चतुर्थी धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, वहीं इसके साथ कुछ पर्यावरणीय चुनौतियाँ भी जुड़ी हुई हैं। पारंपरिक रूप से गणेश प्रतिमाओं को POP से बनाया जाता था, जो विसर्जन के बाद पानी में घुलता नहीं, जल प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अलावा मूर्तियों में उपयोग किए गए रासायनिक रंग भी पानी को प्रदूषित करते हैं और जलीय जीवन को नुकसान पहुँचाते हैं। इन पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधान के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ अब लोग पर्यावरण अनुकूल गणेश मूर्तियों का उपयोग कर रहे हैं। मिट्टी से बनी मूर्तियों का प्रचलन बढ़ रहा है, जो विसर्जन के बाद पानी में घुल जाती हैं और जल स्रोतों को प्रदूषित नहीं करती हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर ग्रीन गणेश अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें गणेश जी की मूर्ति के साथ एक पौधा लगाया जाता है, जो भविष्य में पेड़ बनकर पर्यावरण की रक्षा करता है। श्रोताओं, गणेश चतुर्थी का सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में महत्व। गणेश चतुर्थी केवल आज पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों को एक महत्वपूर्ण समय भी है, जो इस दौरान पंडालों में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। उसमें नृत्य, संगीत, नाटक प्रतियोगिताएं शामिल होती हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में सांस्कृतिक धरोहर को संजोने और अगली पीढ़ी तक पहुँचाने का कार्य किया जाता है। इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय कलाकारों और बच्चों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है, जिसमें समाज, कला, संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ती है और लोगों में आपसी भाईचारे की भावना का विकास होता है। गणेश चतुर्थी का आर्थिक प्रभाव। श्रोताओं, गणेश चतुर्थी का आर्थिक प्रभाव भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इस पर्व के दौरान मूर्तिकार, पंडाल सजाकर, फूल विक्रेता, मिठाई विक्रेता व अन्य व्यापारिक वर्गों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं। यह पर्व पर्यटन उद्योग के लिए भी लाभदायक साबित होता है, क्योंकि लोग विभिन्न स्थानों पर आयोजित गणेश उत्सव को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। इस प्रकार गणेश चतुर्थी न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह पर्व छोटे और मध्यम व्यवसायों को बढ़ावा देता है और समाज के विभिन्न वर्गों के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान करता है। गणेश चतुर्थी न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे समाज की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक धरोहर का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पर्व हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है, समाज में एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है और पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी याद दिलाता है। इस गणेश चतुर्थी पर हम सभी से यह आग्रह है कि हम गणेश भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। साथ ही हम सभी को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करें और इसे सुरक्षित और स्वच्छ बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करें। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल दिया।
1: हर्ष और उल्लास का पर्व गणेश उत्सव विषय पर अभी आप हितेश कुमार शर्मा की वार्ता, पूर्व प्रसारित वार्ता सुन रहे थे। और अब श्रोताओं बढ़ते हैं गीत संगीत की ओर और सुनवा रहे हैं अग्निपथ फिल्म का ये गीत।

0: अजय और साथियों की आवाज़ों में अभी आपने अग्निपथ फिल्म का ये गीत सुना। श्रोताओं, कार्यक्रम में ले रहे हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?

0: बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
0: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: पुनः स्वागत है आप सभी का, सभी श्रोताओं का आज के गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में। गणेश चतुर्थी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि नई शुरुआत और सकारात्मकता ऊर्जा का उत्सव है। हम भगवान गणेश से बुद्धि और विवेक की प्रार्थना करते हैं ताकि जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना हम समझदारी और धैर्य के साथ कर पाएं।

श्रोताओं, गणेश चतुर्थी को हम बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि ज्ञान, विनम्रता और सही सोच के साथ बड़ी बड़ी बाधा को भी पार किया जा सकता है। और जब आस्था के साथ संगीत का रंग मिल जाए तो उत्सव की रौनक और भी बढ़ जाती है। तो आइए सुनते हैं वास्तु फिल्म का ये गीत।

रविंद्र साठी और साथियों की आवाज़ों में अभी आपने वास्तव फिल्म से ये आरती सुनी और अब चलते चलते आपको ABCD2 फिल्म से ये गीत सुनाती चली दिव्या कुमार की आवाज़ में।

तो श्रोताओं, इसी के साथ ही आज का गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पर है। चलते चलते हम इतना ही कहेंगे कि विघ्नहर्ता गणेश हमारे जीवन में सभी विघ्न दूर करे और हमारे घर आंगन में खुशियां लाए और हमारा हर नया कदम सफलता और शुभता की ओर बढ़े। जहां गणपति का नाम होता है वहां हर काम शुभ और आसान होता है। इसी मंगल कामना के साथ एक बार फिर आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 8 बजने को है, अब समाचारों का प्रसारण होगा जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए ब्रिक्स नेताओं का आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे देश में श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। मुंबई में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में 2025-26 के राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। भारत ने ओमान तट पर व्यापारिक पोत पर हुए हमले की निंदा की। भारतीय चालक दल के 13 सदस्यों को बचाया गया। धीरज बोमा देवरा ने मेक्सिको में तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाज बनकर इतिहास रचा। और क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार महिला एशिया कप का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के नेताओं का दिल्ली में हुए शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए आभार व्यक्त किया है। 2 दिन के शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
2: पिछले 2 दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
1: शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन और

0: अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल थे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन्ह हंग, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलूपो सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शिखर सम्मेलन में उपस्थित थे। भारत ने 12-13 सितंबर 2026 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें समूह के 11 सदस्य देशों और 10 भागीदार देशों के नेताओं सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। श्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान अंतिम 3 दिनों में राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें भी की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेंगी। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी लागू हो चुकी है और 2029 से पहले भाजपा एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा।
1: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे। भारतीय न्याय संहिता जो बनाई है, इसने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भारतीय आधार देने का काम किया है और कई सारे राज्यों में सजा कराने का दर का एक ही साल में 30% वृद्धि हुआ है।
0: श्री शाह ने कहा कि 3 तलाक को समाप्त कर दिया गया है, जिससे मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार मिले हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर श्री शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35 ए को बिना किसी विवाद के हटा दिया गया है।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा में धारा 370 और 35 ए हटाना जो असंभव माना जाता था, रक्त की एक भी बूंद गिराए बगैर, एक भी गोली चलाए बगैर धारा 370 आज पास्ट बनकर खड़ी है और कश्मीर पूर्णतया भारत के साथ जुड़ा है।
0: श्री शाह ने कहा कि सरकार ने 5 दशकों से चले आ रहे नक्सलवाद को समाप्त कर दिया है और देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 14 से अधिक शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 महीने के राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान की घोषणा की है। यह अभियान जन भागीदारी के माध्यम से वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को मजबूत करने के लिए 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। मुंबई में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह अभियान भाजपा एनडीए के सहयोगी दलों, स्वयंसेवी संगठनों और देशभर के नागरिकों द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस अभियान में सेवा ज्योति कलश यात्रा, वडनगर वाराणसी सेवा यात्रा, सेवा से मेरा योगदान, सेवा सेतु अभियान, सेवाचे रंग, राष्ट्र संगे और सेवा प्रथम नवाचार चुनौती शामिल है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृहमंत्री अमित शाह आज नवी मुंबई में हिंदी दिवस 2026 कार्यक्रम और 6वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
4: महाराष्ट्र के नवी मुंबई में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा 2 दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य महाराष्ट्र की समृद्ध भाषाएं, सांस्कृतिक और साहित्य परंपरा के साथ हिंदी के जीवंत संबंधों को रेखांकित करना है। उद्घाटन सत्र में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वर्ष 2025-26 के लिए राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और वरिष्ठ अधिकारी सम्मेलन में

0: शामिल होंगे। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत MTL गाइया पर कल हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक चालक दल के 13 भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। दूतावास ने कहा कि जारी खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों को बचाने में सहयोग के लिए ओमान के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। भारत ने तनाव को तत्काल कम करने और क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की सलाह दी है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच आज ओमान में होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। इसमें होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर जहाजों की आवाजाही की व्यवस्था पर चर्चा की जानी थी। ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी ने कल देर शाम इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज सलालाह में होने वाली बैठक को आम सहमति बनाने के क्रम में स्थगित किया गया है। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार कुछ क्षेत्रीय देशों के अनुरोध पर ईरान और ओमान ने संयुक्त रूप से ये निर्णय लिया। यमन की सेना ने लाल सागर के तट पर ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों के ठिकाने पर हमले किए हैं, जबकि हौसियों ने यमन की सरकार का समर्थन कर रहे पड़ोसी देश सऊदी अरब को निशाना बनाया है। यमन की सरकार ने लाल सागर तट पर और अधिक सैनिक भेजने का फैसला किया है। पिछले सप्ताह हौसी विद्रोहियों ने महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर मोखा और बाब अल मंदेब जलडुमरू मध्य में एक द्वीप पर कब्जा कर लिया था। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। हमारी संवाददाता ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया है।
2: गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे महाराष्ट्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। घरों और मोहल्लों में भक्ति गीतों, आरती और गणपति बाप्पा मोरिया के जयघोष के बीच लोग गणपति बाप्पा का स्वागत कर रहे हैं। मुंबई में कई गणेश मंडल सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का भी आयोजन कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे और बेस्ट ने विशेष गाड़ियों की व्यवस्था की है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उत्तर प्रदेश में भी आज से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कजरी तीज मनाई जा रही है।
3: लखनऊ के झूलेलाल वाटिका पर भव्य गणेश उत्सव का शुभारंभ होगा। गोमती के किनारे आज से शुरू होकर 25 सितंबर तक चलने वाले इस गणेश उत्सव में 13,000 स्क्वायर फीट का वातानुकूलित वाटरप्रूफ पंडाल बनाया गया है, जहां भक्त बैठेंगे और गजानन की चिट्ठी लिखेंगे। उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कजरी तीज पर्व आज मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं शिव पार्वती की पूजा करेंगी और निर्जला व्रत रखेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बाल विकास, पोषण और प्रारंभिक प्रोत्साहन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में यूनिसेफ इंडिया की विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा एस पांडे और स्वामी दयानंद अस्पताल के बाल रोग और नवजात शिशु विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता टेलीफोन नंबर 0112331 0481 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं चंद्रशेखर शर्मा।
4: भारतीय तीरंदाज धीरज बोमा देवरा विश्व कप फाइनल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व खिलाड़ी बन गए हैं। मेक्सिको में कल उन्होंने जापान के नाकानिशी जूनिया को रोमांचक शूट ऑफ में हराया। क्रिकेट में भारत ने महिला एशिया कप 2026 जीत लिया है। भारत ने कल फाइनल में श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका को 184 रन का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 111 रन ही बना सकी। भारत की ओर से सैफ अली वर्मा ने 39 गेंदों में 68 रन बनाए और स्मृति मंधाना ने 39 गेंदों में 59 रन का योगदान दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय महिला टीम को एशिया कप जीतने पर बधाई दी है। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 156 रन बनाए। जवाब में भारत ने 13 ओवर और 4 गेंद में 3 विकेट पर 157 रन बनाकर जीत हासिल की। भारत की ओर से

0: अभिषेक शर्मा ने 32 गेंदों में 82 रन बनाए और अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
1: इसके अलावा जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने न्यूयॉर्क में अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर अमरीकी ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब भी जीत लिया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने भारत की मेजबानी में संपन्न हुए ब्रिक्स सम्मेलन को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने ब्रिक्स नेताओं का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, जय हो दिल्ली, अब पेकिंग में मिलेंगे। सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान हिंदुस्तान में है। पत्र लिखता है, खनिजों को हथियार न बनाए। अमर उजाला की सुर्खी है, ब्रिक्स का अब साझा लक्ष्य सर्वजन हिताय। राजस्थान पत्रिका ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट लिमिटिंग ओवरशूट के हवाले से लिखा है, ग्लोबल वार्मिंग की पहली लड़ाई हारे, दशकों तक रहेगा ज्यादा गर्मी का दौर। लोकसत्य ने स्वदेश लौटने पर विचार कर रहे लोगों पर लिखा है, पश्चिमी सपनों पर वीजा की कैंची, भारत लौट रहा टैलेंट। अमरीका यूके

0: सर्वजन हिताय। राजस्थान पत्रिका ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट लिमिटिंग ओवरशूट के हवाले से लिखा है, ग्लोबल वार्मिंग की पहली लड़ाई हारे, दशकों तक रहेगा ज्यादा गर्मी का दौर। लोकसत्य ने स्वदेश लौटने पर विचार कर रहे लोगों पर लिखा है, पश्चिमी सपनों पर वीजा की कैंची, भारत लौट रहा टैलेंट। अमरीका, यूके, कनाडा से शुरू हुआ रिवर्स ब्रेन ड्रेन। दैनिक भास्कर ने सोशल मीडिया अटेंशन पर लिखा है, डिजिटल दौर में शॉक कंटेंट का खेल जिंदगियां बर्बाद कर रहा। हिंदी दिवस पर आज कई समाचार पत्रों ने विशेष आलेख प्रकाशित किए हैं। हिंदुस्तान ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, निबिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल, प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, देश की धड़कन है हिंदी।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए ब्रिक्स नेताओं का आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे देश में श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। आज हिंदी दिवस भी मनाया जा रहा है। भारत ने ओमान तट पर व्यापारिक पोत पर हुए हमले की निंदा की। और क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार महिला एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi thanks BRICS leaders for making Delhi summit productive and outcome-oriented. Union Home Minister Amit Shah says BJP-led NDA governments in 21 states will introduce uniform civil code before 2029. Festival of Ganesh Chaturthi being celebrated across the country today with great devotion. Hindi Divas being celebrated today, Rajbhasha Awards for 2025-26 to be presented at Mumbai Conference. India condemns attack on merchant vessel off Oman coast, 13 Indian crew members rescued. Dheeraj Boma Devra scripts history by becoming first Indian male recurve archer to win gold medal at World Cup final in Mexico. And in cricket, India thrashed Sri Lanka by 72 runs to win record-extending 8th Women's Asia Cup title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has expressed gratitude to the leaders of all the BRICS member countries for making the Delhi summit of the grouping productive and outcome-oriented. A video reflecting key moments of the two-day summit was posted on the social media handles of the Prime Minister. In the video, a part of the Prime Minister's summit speech was shown where he said, through BRICS, India has advanced friendship, partnership and cooperation all across.
3: भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेनर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन, यूथ और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बने। हमने ब्रिक्स कनेक्ट के माध्यम से स्किल्स, एम्प्लॉयबिलिटी, विमेन इन वर्कफोर्स, सोशल सिक्योरिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ावा दिया है।
2: The leaders who attended the summit included Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, Iranian President Masoud Pezeshkian and Abu Dhabi's Crown Prince Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, Vietnamese Prime Minister Lee Min Hung, Indonesian President Prabowo Subianto, Egypt's President Abdel Fattah Al-Sisi, President of the Philippines Ferdinand R. Marcos Jr., Uganda's Vice President Jessica Alupo, besides others, also attended the summit. Union Home Minister Amit Shah has said that BJP-led NDA governments in 21 states will introduce Uniform Civil Code, UCC, before 2029. Speaking to reporters in Mumbai, Home Minister said UCC has been introduced in several states and he is confident that it will be introduced in the 21 BJP NDA-ruled states before 2029.

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 8:30 हुए हैं। सुगम संगीत श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम के तहत फनकार हैं सलमा आगा, मोहम्मद अजीज, तलत अजीज और मनहर उदास। सुनवा रहे हैं इनकी आवाज़ में चंद गज़लें। सबसे पहले आइए सुनते हैं सलमा आगा को।

आखिर में आपने सुना मनहर उदास को। सुगम संगीत के कार्यक्रम के तहत आज फनकार थे सलमा आगा, मोहम्मद अज़ीज़, तलत अज़ीज़ और मनहर उदास। इन्हीं के साथ ही अब सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 9 बजे हैं। लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने। सबसे पहले सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, भूपेंद्र, शैलेंद्र सिंह और सपना चक्रवर्ती की आवाज़ों में हमसे बढ़कर कौन फिल्म का ये गीत।

मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, भूपेंद्र, शैलेंद्र सिंह और सपना चौधरी की आवाज़ों में अभी आपने ये फिल्म रविंद्र रावल का गीत सुना। राम लक्ष्मण का संगीत था, फिल्म का नाम था हमसे बढ़कर कौन। और अब अगला गीत आइए सुनते हैं इलाका फिल्म से।

अनजान के बोल हैं, संगीत तैयार किया नदीम श्रवण ने, गायक कलाकार हैं किशोर कुमार और आशा भोसले।

0: इलाका फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में, और अब कार्यक्रम में ले रहे हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर है तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
2: हेलो, मैं हूँ एचआईवी वायरस।

0: नाम तो सुना ही होगा। मैं आपका दोस्त बनकर आपके शरीर में घुसकर आपको बीमार कर सकता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। इसलिए मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं, नशा करते वक्त सुई व सिरिंज शेयर नहीं करते हैं, और देखो जरा जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। और यही नहीं, हर गर्भवती माँ मुझसे दूर रहना चाहती है, तभी तो पहली तिमाही में अपनी HIV जांच कराती है और मुझसे बचने के उपाय करती है। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूँ। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: Hey, nice smoke machine you've got there. Oh wait, that's just your diesel car?
2: Ha ha ha, very funny. At least it's powerful.
1: Powerful? More like powerfully expensive. Fuel bills through the roof. And don't forget the pollution. My Victorious S CNG runs cleaner. Gives me 27.02 km per kg mileage and still packs a punch with its 1.5 liter engine. And its underbody tank gives me uncompromised boot space.
2: Alright. Victorious S CNG really has got it all. Guess I need to upgrade.
1: Victorious S CNG. Now run with a smarter fuel.
3: और अब आइए सुनते हैं ए हरिहरन और साथियों की आवाजों में दर्द का रिश्ता फिल्म का ये गाना।

तराने सुहाने कार्यक्रम के आखिर में आपने सुना सुरेश वाडेकर और साथियों की आवाज़ों में कालचक्र फिल्म का ये गाना। इसी के साथ ही कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। 9:30 हुए हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले समय हो चला है एक छोटे से अंतराल का। पुलिस
1: मिस सीमा
2: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बच जाओगे।
2: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, ब्रेक के बाद आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं उस्ताद अमजद अली खां की प्रस्तुति राग स्वर समीर, जो झाप ताल एवं तीन ताल में निबद्ध है।

श्रोताओं, अभी आपने शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में उस्ताद अमजद अली खां का सरोद वादन स्वर समीर सुना। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 10 बजे हैं और पेश है फिल्म गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल।

सुरों की महफिल सजी, गीतों का हो सिलसिला, हर धुन में छुपा हो कोई प्यारा सा किस्सा, तो चलिए इन्हीं सुरीली यादों के साथ कार्यक्रम का आगाज करते हैं गीत गाता चल का।

आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं जुड़वा 2 फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे आवाजें दी है अमी मिश्रा ने, बोल दानिश सबरी के हैं तथा संगीत साजिद वाजिद का है।

श्रोताओं, आइए गीत गाता चल कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं। विक्की डोनर फिल्म से इस गीत को अपनी आवाज़ें दी है आयुष्मान खुराना ने। संगीतकार व गीतकार है रोचक कोहली और आयुष्मान खुराना।

0: श्रोताओं,
1: अब पेश है फिल्म ओम शांति ओम का एक गीत। इस गीत को गाया है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने। गीत के बोल जावेद अख्तर के हैं तथा संगीत विशाल शेखर का है।

श्रोताओं, गीत गाथा चल कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं अजय गोंगा वाले के स्वर में। संगीत है अजय अतुल का तथा बोल अमित भट्टाचार्य ने लिखे हैं। फिल्म का नाम है अग्निपथ।

0: श्रोताओं, गीत गाता चल कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माय वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
2: Do you play for the rush or do you play it smooth? Lead every play with the new Brezza, now available with the exciting turbo booster jet, refined K15C engine and underbody SCNG with 5-star safety rating, superior performance and features like ventilated seats, new 10.1-inch infotainment screen with premium audio. Every road is your playground. The new Brezza, now available at an introductory starting price of Rs. 7.39 lakh. Book a test drive today at your nearest Maruti Suzuki Arena showroom.
0: श्रोताओं, गीत गाता चल कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं नौटंकी साला फिल्म का एक गीत। गीतकार हैं आयुष्मान खुराना, रोचक कोहली और गुरप्रीत सैनी। संगीत दिया है आयुष्मान खुराना और रोचक कोहली ने। इस गीत को गाया कलाकार है नीति मोहन और आयुष्मान खुराना।

प्रस्तुत है सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में एक गीत रचना। गीतकार है नासिर फराज, संगीतकार है राजेश रोशन, फिल्म का नाम है कृष।

श्रोताओं, अभी आप बंजो फिल्म का एक गीत सुन रहे थे जिसके बोल लिखे हैं अमित भट्टाचार्य ने, विशाल शेखर का संगीत और विशाल ददलानी के आवाज़ों में आप ये गीत रचना सुन रहे थे। अब अगला गीत सुनते हैं वास्तव द रियलिटी फिल्म से। इस गीत को संगीत सजाया है जतिन ललित ने व इस गीत को सुरों में पुरोया है रविंद्र साठे ने।

श्रोताओं, अब पेश है अमित त्रिवेदी के संगीत निर्देशन में तैयार एक गीत रचना, जिसे अपनी आवाजें दी है शाहिद माल्या ने। गीतकार हैं शिव कुमार बतलावी।

श्रोताओं, गीत गाता चल कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं। आयुष्मान खुराना की आवाज़ों में इस गीत को संगीत से सजाया है तनिष्क बागची ने और वायु ने, तथा बोल वायु के है। फिल्म का नाम है शुभ मंगल ज़्यादा सावधान।

श्रोताओं, अब पेश है दिव्या कुमार और जैस्मिन सैंडलस की आवाज़ में ये गीत, जिसके बोल लिखे हैं भार्गव पुरोहित ने तथा संगीत से सजाया है सचिन जिगर ने। फिल्म का नाम है स्ट्रीट डांसर 3D।

श्रोताओं, गीत गाता चल कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। आइए इस कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं बागी 3 फिल्म से। इस गीत को गाया है विशाल शेखर, के शान और तुलसी कुमार ने। संगीत विशाल शेखर का है तथा बोल तैयार किया है पंछी जलोनवी ने।

श्रोताओं, बागी 3 फिल्म के इस गीत के साथ ही हमारा आज का गीत गाता चल कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 11 बजे हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1371वीं कड़ी।

0: पतंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। स्वागत है बहुत बहुत आज के उमंग कार्यक्रम में। सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलोदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीमबाई मानिकपुरी जी ने। अच्छे स्वभाव और व्यवहार वाले लोगों की जगह इस दुनिया में प्राणवायु फैलाने वाले हरे वृक्षों जैसी होती है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल और दीपांजलि पटेल के साथ दीपक पटेल, टेकलाल पटेल जी लिखते हैं। विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार। 19 अगस्त को सुनने को मिला नदी का सफर, हमें और हमारे परिवार को बहुत अच्छा लगा। उसके लिए उमंग टीम को हम हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। ज्ञान का खजाना है उमंग कार्यक्रम। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू ने लिखा है नमस्कार। ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत हमारी प्रिय हिंदी भाषा के कुछ ऐसे शब्दों को जान सके जिनको सर्वसम्मति से पूरा विश्व ये मान्यता प्रदान करता है कि इन शब्दों की उत्पत्ति भारतीय है। जंगल, शैम्पू, पायजामा और अगले अंक में बंगला, खाकी, लूट, योग, गुरु शब्दों की मूल उत्पत्ति पर गहन साहित्यिक मालूमात हासिल हुई। कुछ दिनों पहले कुछ हिंदी शब्दों के अर्थ भी बताए गए थे, उसके लिए हम पूरी उमंग टीम का आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल, बेंगलुरु से जगदम्बिका और हमसावेनी, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये और राधिका गजभिये, रेडमा डाल्टनगंज पलामू झारखंड से मिंटू दुबे, दिशानी दुबे, किसले और आनंद के साथ साथ प्रीति दुबे। धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। हमारा पहला प्रश्न था, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर है साथियों, साइकिल का आविष्कार जर्मनी के एक आविष्कारक कार्ल ड्राइस ने किया था। हमारा दूसरा प्रश्न था, महान पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर विजय कब प्राप्त की थी? तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं, उन्होंने 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया और माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली भारत की पहली दिव्यांग महिला बनने का असाधारण गौरव प्राप्त किया। और हमने अगला प्रश्न पूछा था, दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोदकर रास्ता बनाने में कितना समय लगा? इसका उत्तर है, उन्हें कुल 22 वर्षों का समय लगा। और हमारा अगला प्रश्न था, देश के लिए कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग में शहीद हुए 3 युवा क्रांतिकारियों के नाम बताइए। उन शहीदों का नाम था विनोय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता। हमारा अंतिम प्रश्न था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिताजी का क्या नाम था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिताजी का नाम था ठाकुरदास बंदोपाध्याय। तो ये थे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताजा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं

0: तो एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है बैंगनी जोजो। कक्षा दो की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम एक प्यारे डॉगी के बारे में बताता है जो एक पेड़ के नीचे सो रहा था, और जब वो उठा तो उसने देखा कि उसका पूरा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। पर क्यों, आइए जानते हैं इस कार्यक्रम से।
1: जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वो जग गया।
2: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
1: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
2: बादल, बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
3: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
1: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
2: सूरज, सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
3: नहीं, मैं तो पीला हूं।
2: कौवे, कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं, नहीं, मैं तो काला हूं।
4: गुब्बारे, गुब्बारे,
2: क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
3: नहीं, मैं तो लाल हूं।
2: घास, घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
5: नहीं, मैं तो हरी हूं।
1: बेचारा जोजो।
2: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।
6: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जोजो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए।
0: बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
2: इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम मारिया मोंटेसरी। इस कार्यक्रम में विश्व की महान शिक्षाविद, चिंतक और शिक्षिका मादाम मारिया मोंटेसरी के जीवन और शैक्षिक जगत में उनके अमूल्य योगदान के बारे में विस्तार से बताया गया है।
3: शिक्षा का उद्देश्य मात्र तथ्यों को सीखना नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना होता है। ये कथन है 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन का।
4: आज हम बात करेंगे एक महान विलक्षण स्त्री की, जिसने बाल मनो को प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षा शास्त्र को एक नया आयाम दिया और शिक्षण प्रणाली में सुखद और क्रांतिकारी परिवर्तन का सूत्रपात किया।
3: उनका नाम है मारिया मोंटेसरी। वो इटालियन चिकित्सक और शिक्षाविद थी। मैडम मारिया मोंटेसरी को क्रिया प्रधान मनोवैज्ञानिक शिक्षण एवं खेल आधारित बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति के विकास का श्रेय दिया जाता है।
4: उनका पूरा नाम था मारिया टेकला आर्टेमिसिया मोंटेसरी। मारिया का जन्म 31 अगस्त 1870 को चेरा वाले इटली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम एलेसेंड्रो मोंटेसरी था, जो इतालवी सरकार के वित्त मंत्रालय में एक अधिकारी थे।
3: उनकी माँ का नाम रेनिल्ड स्टोपानी था, जो बहुत ही सभ्रांत और सुशिक्षित घराने से आती थी। मारिया के जीवन पर उनकी विदुषी माता का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जो जीवन भर उनके साथ रहा।
4: जब वो मात्र 4 वर्ष की थी, उनका परिवार चेरा वाले से रोम आ गया। 6 वर्ष की आयु में मारिया ने स्थानीय राज्य पोषित विद्यालय में दाखिला लिया। वो बहुत कुशाग्र बुद्धि की थी।
3: उनके विद्यालय में सह शिक्षा थी। उन दिनों सामाजिक मान्यताओं के कारण ये स्वीकार करना आसान नहीं था कि लड़कियां लड़कों से अच्छा कर सकती हैं।
4: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए 1886 में रेजियो इंस्टीट्यूटो टेक्निको लियोनार्डो दा विंची नामक तकनीकी स्कूल में दाखिला लिया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने चिकित्सा विज्ञान पढ़ने का मन बनाया। सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण

0: उन्हें बहुत हतोत्साहित किया गया।
1: और आखिर आ ही गया 10 जुलाई 1896 का वो गौरवशाली दिन।
2: साथियों, आज का दिन रोम विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक दिन है। हम बहुत हर्ष के साथ सूचित करते हैं कि मादाम मारिया टेक्ला आर्टेमिसिया मोंटेसरी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ मास्टर ऑफ साइंस इन मेडिसिन

0: दिन है। हम बहुत हर्ष के साथ सूचित करते हैं कि मादाम मारिया टेक्ला आर्टेमिसिया मोंटेसरी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ मास्टर ऑफ साइंस इन मेडिसिन की उपाधि प्राप्त करके इटली की पहली महिला डॉक्टर बनने का गौरव प्राप्त किया है।
1: बधाई हो।
2: धन्यवाद,
3: बहुत बहुत बधाई।
2: धन्यवाद।
3: इटली की पहली महिला डॉक्टर, भाई वाह, कमाल है।
1: बहुत बहुत बधाई हो।
4: अठारह सौ सत्तानवे में वो रोम विश्वविद्यालय के मनोरोग क्लिनिक द्वारा संचालित एक शोध कार्यक्रम में शामिल हुई और इस शोध कार्यक्रम के तहत वो रोम शहर और आसपास के पिछड़े इलाकों में बने बाल गृहों का दौरा करने लगी।
5: इन बाल गृहों में सामान्य बच्चों के साथ साथ आंशिक रूप से दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, लोकोमोटर बाधित और कुछ कुछ बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चे भी शामिल थे। इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके सोचने के तरीके में एक नया आयाम जोड़ दिया। एक दिन वो एक बाल गृह पहुंची। मिस्टर गैब्रियल उस बाल गृह की देखभाल करते थे।
6: आइए मारिया जी।
2: कैसे हो गैब्रियल? कैसा चल रहा है यहाँ
6: जी?
2: कुछ उदास लग रहे हो।
6: जी मैडम, अब आपको क्या बताऊं, मुझे तो लगता है कि इन दिव्यांग बच्चों की हालत दिन ब दिन और बुरी होती जा रही है।
2: और बुरी?
6: जी।
2: अब भला वो कैसे?
6: आज दोपहर के भोजन के बाद आप बच्चों का ध्यान पूर्वक निरीक्षण कीजिएगा।
2: हाँ हाँ जरूर।
6: जी
5: बच्चों की कक्षा का समय समाप्त हुआ और दोपहर के भोजन का समय हो गया। भोजन के बाद बच्चों को कुछ समय का अवकाश दिया जाता था। मारिया ने देखा कि भोजन के बाद कुछ बच्चों ने अपने बर्तनों को, भोजन की मेज की खुरदरी सतह को, खिड़कियों की जालियों को छूना और टटोलना शुरू किया।
7: देखा आपने मारिया जी, क्या ये असामान्य नहीं है? जब ये बच्चे छोटे थे तो इनकी इस तरह की गतिविधियां बहुत कम थी, लेकिन अब तो देखिए देखिए, कुछ बच्चे बाहर जा रहे हैं। अभी वो सड़क की गिट्टियों से खेलेंगे। वो देखिए, वो बच्चा टूटी हुई दीवार से निकली ईंटों पर उंगलियां फेर रहा है। देखिए देखिए।
2: नहीं नहीं गैब्रियल, मुझे लगता है कि यह सामान्य नहीं है।
5: बाल गृह से बाहर आकर लौटते समय रास्ते में वो सोच रही थी,
2: शायद ये बच्चे चीजों को इसलिए बार बार छूते हैं क्योंकि उन्हें संवेदी उत्तेजना चाहिए, लेकिन ऐसा वो क्यों करते हैं? ऐसा करके शायद वो सीखना चाहते हैं, वो अवलोकन और निरीक्षण करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि शायद इनके सीखने सिखाने का एक नया रास्ता मुझे मिल गया है।
4: उन्होंने इस विषय पर गहरा अध्ययन किया और इस विषय पर अन्य शिक्षाविदों के विचार जाने। उन्होंने सीखने के प्रतिफल विषय पर जितना संभव हो सके पढ़ना शुरू किया और विशेष रूप से उन्होंने 19वीं शताब्दी के शुरुआती फ्रांसीसी शिक्षाविद एवं बाल शिक्षा विशेषज्ञ एडवर्ड सेगुइन के अभूतपूर्व काम का 2 वर्षों तक गंभीर अध्ययन किया।
5: उन्होंने लोम्ब्रोसो और सर्गी जैसे विचारकों द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधि की भी जानकारी प्राप्त की।

0: मैंने अब महसूस कर लिया है कि इन बच्चों की बहुत सी समस्याओं का निदान चिकित्सा और दवा से अधिक शिक्षा विधि में निहित है। क्यों ना उनके लिए ऐसे खिलौनों और पाठ्यचर्या का विकास किया जाए जो उनकी संवेदना को उत्तेजित करे और उनमें उत्सुकता जगाए। खिलौनों को यदि एक समस्या की तरह उन्हें दे दिया जाए तो वो खिलौना ही उनका समाधान बन जाएगा।
1: बस फिर क्या था, उन्होंने बौद्धिक रूप से दिव्यांग और अन्य बाधित बच्चों की संवेदी धारणाओं और मोटर कौशल को विकसित करने में मदद करने के लिए व्यवहारिक उपकरण और खिलौने बनवाए, जिनमें ब्लॉक्स, छिद्रों वाला तख्ता, बीट्स, कंचे, माला, गीली मिट्टी, रंग, विभिन्न अलग अलग आकारों की खुरदरी आकृतियां, वाद्य यंत्र, लकड़ी के जोड़ने वाले ब्लॉक्स और पैटर्न्स वाले खेल मुख्य रूप से शामिल थे।
2: उन्होंने बाल गृहों के रखरखाव पर भी बहुत जोर दिया और सुनिश्चित किया कि इन गृहों के वातावरण को सुसज्जित और साफ सुथरा रखा जाए। दीवारों पर अलग अलग प्रकार की रंग बिरंगी समतल और खुरदरी आकृतियां बनाई जाएं। 6 जनवरी 1907 को कासा देई बम्बिनी यानी चिल्ड्रन हाउस खुला।
1: इन बाल गृहों में 3 से 8 वर्ष के बच्चों को प्रवेश दिया जाता था और शर्त ये थी कि बच्चों को साफ सुथरा बिना पुस्तकों के भेजा जाए। अब सीखने सिखाने के ये बाल गृह लोगों की उत्सुकता और आलोचना का केंद्र बन चुके थे। चाइल्डहुड हाउस के कुछ फर्नीचर ऐसे भी होते थे जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था, इससे मोटर ट्रेनिंग भी हो जाती थी।
2: एक दिन मारिया कक्षा में आई। नव सुसज्जित स्कूल का दृश्य ही अद्भुत था। हर बच्चा अपने अपने कार्य में लगा हुआ था, कोई ज्ञानेंद्रियों तो कोई कर्मेंद्रियों से संबंधित अभ्यास में लगा था, कोई चित्र बना रहा था तो कोई कुछ और कर रहा था। सारा कक्ष रोचक गतिविधियों से भरा हुआ था।
1: ১৯০৮ की शरद ऋतु तक 5 बाल गृहों का संचालन किया गया, 4 रोम में और 1 मिलान में। इन खेल आधारित बाल गृहों में आंशिक रूप से दिव्यांग बच्चों ने असाधारण प्रगति की और जल्द ही 5 साल के इन बच्चों ने लिखना और पढ़ना शुरू कर दिया। मोंटेसरी के इस नए दृष्टिकोण की खबर सारे यूरोप में तेजी से फैल गई। शिक्षाविद और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी और बच्चों के अभिभावक खुद ये देखने के लिए पहुंचे कि वो इस तरह के आश्चर्यजनक परिणाम कैसे प्राप्त कर रहे हैं।
3: धन्यवाद डॉक्टर मारिया, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता था कि मेरी बच्ची कभी नहीं सीख पाएगी, लेकिन अब वो लिखने और पढ़ने भी लगी है।
4: धन्यवाद
5: डॉक्टर मारिया, मेरे पास धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है। आपने असंभव को संभव कर दिखाया। वाह, मुझे धन्यवाद के शब्द नहीं मिल रहे हैं। आपके पढ़ाने का तरीका कमाल है, बेमिसाल है।
4: धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, मुझे लगता है कि मैंने शिक्षा का कोई नया तरीका इजाद नहीं किया। मैंने तो बस कुछ छोटे बच्चों को उनके अनुसार जीने का मौका दिया है।
3: जी,
4: मैं सोचती हूँ कि यदि इसी खेल और अनुभव आधारित विधि का प्रयोग सामान्य बच्चों में भी किया जाए तो परिणाम आश्चर्यजनक होंगे।
3: जी जी, धन्यवाद
4: धन्यवाद।
1: समावेशी शिक्षा की सफल शुरुआत शायद यहीं से होती है। मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों के संदर्भ में सफलता मिलने पर मोंटेसरी ने इसी विधि का

0: उपयोग सामान्य बच्चों की शिक्षा के लिए भी किया।
1: उनकी असाधारण सफलता को देखते हुए इटली की सरकार ने उन्हें बाल गृह संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। मारिया मोंटेसरी ने बाल शिक्षा विषय पर अनगिनत लेख लिखे और एक पुस्तक भी लिखी, जिसे आज विश्व मोंटेसरी मेथड्स के नाम से जानता है।
0: 1939 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के निमंत्रण पर वो भारत आईं और देश भर में बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति पर व्याख्यान दिए। उन्होंने लगभग पूरे विश्व में जाकर मोंटेसरी शिक्षण विधि का प्रचार प्रसार किया।
1: आज पूरे विश्व में मोंटेसरी शिक्षण पद्धति पर आधारित अनगिनत विद्यालय हैं, जो बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित सीखने सिखाने के कार्य में जुटे हैं।
0: मोंटेसरी पद्धति में कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है। बच्चों का कार्य और ज्ञान में कुशलता प्राप्त करने के भाव को ही बच्चे के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। उनकी शिक्षण विधि के मूल स्तंभ हैं बच्चों की स्वतंत्रता, स्वशिक्षा, रोचक शिक्षण, संवेदी अनुभव, प्यार और सम्मान।
1: छह मई 1952 को इस महान शिक्षा शास्त्री का हॉलैंड में निधन हो गया। मारिया मोंटेसरी को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। उन्हें फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर सम्मान से भी नवाजा गया और दुनिया के कई महानतम विश्वविद्यालयों से उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। आधुनिक शोध भी उनके नवाचार और निष्कर्षों की मूलभूत भावना को मान्यता देता है।
0: विश्व शिक्षा के क्षेत्र में उनके महान योगदान के लिए सदा ऋणी रहेगा।
2: आओ खेलें झटपट चटपट कुछ अनूठे खेल, सब मिलकर बनाएं हम अक्षर।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अरशद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: श्रोताओं, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1071वीं 1371वीं कड़ी सुन रहे थे।

इस समय दिन के 11:30 हुए हैं। अब पेश है एक ही कलाकार कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको अनुराधा पौडवाल के गीत सुनवाएंगे। तो आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं और सुनते हैं साथी फिल्म का एक गीत। इस गीत को बोल दिया है समीर ने, संगीत नदीम श्रवण का है तथा स्वर दिया है अनुराधा पौडवाल ने।

श्रोताओं, एक ही कलाकार कार्यक्रम में अब अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में अगला गीत सुनते हैं। फिल्म का नाम है दिल है कि मानता नहीं। इस गीत को संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, आइए अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में अगला गीत सुनते हैं, सड़क फिल्म से। इस गीत को गाया है कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल ने। बोल समीर और सुरेंद्र साथी ने लिखे हैं तथा धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

0: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माय वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: श्रोताओं, एक ही कलाकार कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं आशिकी फिल्म से। इस गीत को संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने तथा बोल समीर के हैं। गाने वाले कलाकार हैं अनुराधा पौडवाल।

श्रोताओं, आइए अगला गीत सुनते हैं सिर्फ तुम फिल्म से। इस गीत को स्वर दिया है अनुराधा पौडवाल और हरिहरन ने। संगीत तैयार किया है नदीम श्रवण ने तथा बोल समीर के हैं।

0: अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോഹെർട്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

श्रोताओं, अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी सदस्य देशों का आभार व्यक्त किया है। शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली

0: घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 11 सदस्य देशों और 10 भागीदार देशों के नेताओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सफलता ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छाप छोड़ी है। श्री सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम घेब्रेसस ने कहा है कि इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय सीधे तौर पर वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ा था। उन्होंने देशों से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निगरानी चेतावनी प्रणाली और स्थानीय उत्पादन को मजबूत करने का आग्रह किया। विदेश मंत्रालय ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन में सहयोग के लिए केंद्र सरकार के सभी विभागों और एजेंसियों का आभार व्यक्त किया है। मंत्रालय ने उन सभी राज्य सरकारों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने ब्रिक्स की विभिन्न बैठकों की मेजबानी की। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन का आयोजन जटिल कार्य था जिसके लिए सरकार और देश के सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास जरूरी थे। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2020 के बाद से 9 राज्य में 147 कोयला खंडों की नीलामी की गई है। कोयला मंत्रालय ने बताया है कि इससे लगभग 47,500 करोड़ रुपए का राजस्व और 4,90,000 नौकरियां सृजित होने का अनुमान है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले वित्त वर्ष में आवंटित वाणिज्यिक खदानों से लगभग 3,090 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। देशभर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखे हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत में कई भाषाओं का होना देश की सबसे बड़ी ताकत है। हिंदी दिवस पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा किसी दूसरी भाषा की प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है।
2: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ संबंधों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है। भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े हाल के मामलों पर श्री कबीर ने कहा कि बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय कानून, सीमा संबंधी नियमों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत कूटनीतिक बातचीत से मुद्दों का समाधान करेगा। भारत ने T20 महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल भारतीय टीम ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Union Home Minister Amit Shah has said the presence of multiple languages in India is the biggest strength of the country. Sharing a video message on Hindi Divas today, he said, Hindi language is not the competitive language of any other language, but an important connecting thread of national unity.
2: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में

0: मिनट हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं समूहगान शिक्षा का कार्यक्रम।
1: अच्छा बच्चों, आज हम तुम्हें एक हिंदी गीत सिखाएंगे। नलिनी जी मेरे साथ आपको सिखाने में मदद करेंगी। नलिनी जी, कौन सा गीत लें आज?
2: विनय चंद्र जी, आज हम बच्चों को जो गीत सिखाएंगे उसके बोल हैं, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। और बच्चों, आपको पता है ये किसने लिखा है? इस गाने को विनय चंद्र जी ने ही लिखा है और स्वरबद्ध भी इन्होंने ही किया है।
1: अच्छा बच्चों, सबसे पहले हम इस गीत के बोल लिख लें। आप लिख लीजिए सब बोल। हिंद देश, हिंद देश के निवासी, हिंद देश के निवासी, आगे चले, आगे लिखवाए, लिख। हाँ, सभी जन,
3: सभी जन,
1: सभी जन एक हैं,
3: एक हैं,
1: सभी जन एक हैं। पूरी पंक्ति सुन लो एक बार। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। इतनी पंक्ति सबको ठीक समझ में आ गई ना? लिख ली। आगे लिखे, रंग,
3: रंग,
1: रूप,
3: रूप,
1: रंग, रूप, वेश,
3: वेश,
1: वेश, भाषा,
3: भाषा,
1: रंग, रूप, वेश, भाषा, चाहे,
3: चाहे,
1: चाहे अनेक हैं,
3: अनेक हैं,
1: चाहे अनेक हैं, बेला, लिखो, गुलाब,
3: गुलाब,
1: बेला, गुलाब, जूही, ये सब फूल है ना, खुशबूदार, सुंदर सुंदर, देखे तुमने ये सब फूल? बेला, गुलाब, जूही और चंपा, चमेली, चंपा, चमेली, प्यारे प्यारे फूल,
3: प्यारे प्यारे फूल,
1: गूंथे,
3: गूंथे
1: माला में,
3: माला में
1: एक हैं,
3: एक हैं।
1: सबके समझ में आ गया ना अंतरा? लिख लिया
3: जी।
1: अच्छा, अभी और भी अंतरे हैं इसमें। दूसरा अंतरा है, कोयल की कूक न्यारी, कोयल की कूक न्यारी, पपी है की टेर प्यारी, गा रही,
3: गा रही
1: तराना,
3: तराना,
1: गा रही तराना, बुलबुल,
3: बुलबुल,
1: और बुलबुल तो तराना गा रही है ना, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है,
3: राग एक है।
1: अब ये है ना, कोयल, पपीहा, बुलबुल है ना, अलग अलग ढंग से बोलते हैं, लेकिन सबका राग एक है, मतलब भाव सबका एक ही है, राग एक ही है उसका। अच्छा, एक अंतर और है, वो भी लिखवा दूं?
3: जी हाँ।
1: अच्छा लिखो। अलग, हमारे देश में बहुत सारी नदियां हैं ना, तो उन नदियों के नाम इसमें आ गए हैं। गंगा,
3: गंगा,
1: जमुना,
3: जमुना,
1: ब्रह्मपुत्र,
3: ब्रह्मपुत्र,
1: ब्रह्मपुत्रा नहीं, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र,

0: कृष्णा
1: राम
0: कावेरी गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई जाके मिल गई कहाँ जाके मिल गई
2: सागर।
0: हाँ।

0: जाके मिल गईं, कहाँ जाके मिल गईं?
1: सागर।
0: हाँ, जाके मिल गईं सागर में, सागर में। तुमने ठीक सोचा, नदियां कहाँ मिलेंगी? सागर में ही तो मिलती है ना। तो जाके मिल गईं सागर में, हुई सब एक हैं,
2: हुई
0: हुई सब एक हैं। अब ये जो गाना हम शुरू करेंगे आपको, अब दूसरे काले स्वर को सामान के हम सिखा रहे हैं आपको, और चार मात्रा का एक कहरवा ताल है, उसमें ये गाना बंधा हुआ है। एक बार इसको लय में बोल लें आप सब, है ना। हिंद देश के निवासी,
2: हिंद देश के निवासी,
0: सभी जन एक हैं,
2: सभी जन एक हैं,
0: रंग रूप वेश भाषा,
2: रंग रूप वेश भाषा,
0: चाहे अनेक हैं,
2: चाहे अनेक हैं,
0: हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं,
2: हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं,
0: रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं,
2: रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं,
0: बेला गुलाब जूही चंपा चमेली,
2: बेला गुलाब जूही चंपा चमेली,
0: प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं,
2: प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं,
0: हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं,
2: हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं,
0: रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं,
2: रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं।
0: अच्छा, गीत सिखाएंगे तुम्हें, पहले सुन लो एक बार साथ, फिर उसके बाद इस सुर में अपना सुर

0: अच्छा बच्चों, गीत अच्छी तरह समझ में आ गया ना तुम्हें?
1: जी हाँ।
0: इसकी धुन, शब्द वगैरह सब ठीक तरह से हो गए ना?
1: जी हाँ।
0: अच्छा, फिर जाना अपने घर पे जाके इसको खूब इसका अभ्यास करना, कहीं बाद में भूल ना जाए। करोगे ना अभ्यास अच्छी तरह से?
1: जी हाँ।
2: नमस्ते।
0: नमस्ते भाई, नमस्ते।
3: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप समूह गान शिक्षा का कार्यक्रम सुन रहे थे।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:30 हुए हैं। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। आपके व्हाट्सएप संदेश, फरमाइश और आपके नाम के भेजे गए पैगाम के साथ आज फिर सजी है गीतों की ये खूबसूरत महफिल। तो आइए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं आपके पसंद के फिल्मी गीतों का सिलसिला। सबसे पहले सुनते हैं आज का पहला फरमाइश।

श्रोताओं, इस गीत की फरमाइश हमें आई है तन रेंगी पटरा पर छत्तीसगढ़ से। ये है हीरामणि वर्मा, परसमणि वर्मा, भूपेंद्र मणि वर्मा, नेखेलाल वर्मा। ये सुनना चाहते हैं इलाका फिल्म का ये गीत, तो आइए सुनवाते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

कोई दुख संता।

0: श्रोताओं, गणेश चतुर्थी के उत्सव पर हमें मैसेज आया है संबलपुर कांकेर से। ये है फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। ये सुनना चाहती हैं हमसे बढ़कर कौन फिल्म का ये गीत। तो आइए सुनते हैं सभी के साथ इनकी पसंद का ये गीत।
1: देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन स्वामी, तुमसे

श्रोताओं, अग्निपथ फिल्म के इस गीत के साथ हमें फरमाइश आई है जिला नांदेड़ येताल महाराष्ट्र से। ये है शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल व संपूर्ण जायसवाल परिवार। ये सुनना चाहते हैं अग्निपथ फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है अजय गोंगावाली ने। तो आइए सभी को सुनवाते हैं इनके।

श्रोताओं, फिल्म मरते दम तक से हमें फरमाइश आई है कुंडी सेक्टर 5 सूर्यनगर जोधपुर राजस्थान से। ये है रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कपिल, बेबी बेबी बॉय, हिमांश और संपूर्ण चौहान परिवार ये सुनना चाहते हैं गणेश चतुर्थी के उत्सव पर गणपति पप्पा जी की यह गीत।

श्रोताओं, सादर बाजार मारवाड़ बिलाड़ राजस्थान से हमें फरमाइश आई है रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान का। ये गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य पर ये गीत सुनना चाहते हैं, तो आइए सभी को सुनवाते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

नीलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से ये है पीएस नहावकार निर्मला विशाल। मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले सुपन तांडे आशीष मुरेकर और ये सुनना चाहते हैं गणेश चतुर्थी के उत्सव पर ये गीत। तो आइए सभी के साथ सुनते हैं इनके पसंद का ये गीत।

फिल्मी पैगाम अब यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम में आज के गीतों का यह सिलसिला अब यहीं समाप्त होता है। आपके प्यारे संदेश और फरमाइश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी फरमाइश हमें व्हाट्सएप करते रहिए और आपके पसंद के गीत सुनते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों के बाद यानी 2 बजे समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: evening. He said the regional meeting scheduled for today in Salalah has been postponed in the interest of consensus, while stressing Oman's continued commitment to dialogue, regional stability and long-term cooperation. Global oil prices recorded another jump today, with Brent crude futures trading over $107 a barrel and WTI at over $102. Yemen's Houthi rebels captured more strategic islands in the southern Red Sea. According to Yemeni government officials and a Houthi spokesperson, the rebels deployed fighters on the islands of Greater Hanish and Lesser Hanish, 160 kilometers north of Bab al-Mandeb Strait. The Houthis took over the islands after hundreds of government allied forces withdrew from the archipelago. Germany's Alexander Zverev has won the men's singles title of the U.S. Open tennis, beating American Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 in New York last night. This marks Zverev's second major title of 2026 following his French Open victory in June. Ben Shelton's loss keeps the 23-year Grand Slam title drought alive for American men, though he became the first black American man to make it to a U.S. Open final since Arthur Ashe in 1972. And now before we end the bulletin, the headlines once again. BRICS leaders stress energy security as crucial foundation for economic development and national security, caution against weaponization of technology and critical minerals. China significantly cuts down troop deployment in 2025, says Defense Ministry report, terms security situation in Jammu and Kashmir as stable. Union Home Minister Amit Shah says India's linguistic diversity strengthens unity amidst diversity, congratulates people on occasion of Hindi Divas. IMD predicts heavy rain and thunderstorm for several districts across Gujarat today. Ganesh Chaturthi being celebrated across the country today with great devotion, pomp and gaiety. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा को आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की महत्वपूर्ण नींव बताया। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने पर आगाह किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा, देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष 2025 में चीनी सेना की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति स्थिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की भाषाई विविधता अनेकता के बीच एकता को मजबूत करती है। गृहमंत्री ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी दी। गुजरात के अनेक जिलों में आज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अनुमान। देश भर में आज गणेश चतुर्थी पर श्रद्धा और हर्षोल्लास का माहौल। और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स नेताओं ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सभी देशों के कल्याण की महत्वपूर्ण नींव है। नई दिल्ली में आयोजित दो दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने ऊर्जा बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित करके और विभिन्न स्रोतों के जरिए ऊर्जा के निर्बाध प्रवाह को

0: राष्ट्रीय सुरक्षा और सभी देशों के कल्याण की महत्वपूर्ण नींव है। नई दिल्ली में आयोजित दो दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने ऊर्जा बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित करके और विभिन्न स्रोतों के जरिए ऊर्जा के निर्बाध प्रवाह को बरकरार रखने तथा महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठान को सुरक्षित रखकर ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने से प्रगति में बाधा आ सकती है। एक रिपोर्ट।
1: दो दिनों तक चले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित रहा। भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान लोगों के विकास और ग्लोबल साउथ के हितों को विशेष महत्व दिया। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि सम्मेलन के पहले ही दिन सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाना था। पश्चिम एशिया की स्थिति पर ब्रिक्स नेताओं ने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने, बातचीत और कूटनीति के माध्यम से समस्या का समाधान करने की अपील की। वहीं आम लोगों और नागरिक सुविधाओं की सुरक्षा की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा सभी नेताओं ने हर तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं संक्रामक बीमारियों की रोकथाम और उनसे निपटने के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने पर भी सहमति बनी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सफलता ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छाप छोड़ी है। श्री सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस ने कहा है कि इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय सीधे तौर पर वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ा था। उन्होंने देशों से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निगरानी, चेतावनी प्रणाली और स्थानीय उत्पादन को मजबूत करने का आग्रह किया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने त्रिकुरल के प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तिरुकुरल के रूसी अनुवाद की प्रति भेंट करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। विदेश मंत्रालय ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन में सहयोग के लिए केंद्र सरकार के सभी विभागों और एजेंसियों का आभार व्यक्त किया है। मंत्रालय ने उन सभी राज्य सरकारों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने ब्रिक्स के विभिन्न बैठकों की मेजबानी की। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन का आयोजन जटिल कार्य था जिसके लिए सरकार और देश के सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास जरूरी थे। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि सेना के अथक प्रयासों के चलते जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। रक्षा मंत्रालय ने अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में कहा है कि इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई है। विरोध प्रदर्शनों में भी गिरावट आई है और पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं हुई है। रिपोर्ट में चीन के साथ समग्र स्थिति पर भी प्रकाश डाला गया है। वर्ष 2025 में उत्तरी सीमाओं के सामने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बलों की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। वास्तविक नियंत्रण रेखा LSE और पारंपरिक प्रशिक्षण क्षेत्रों में 10 संयुक्त शस्त्र ब्रिगेड के आकार के बल तैनात किए गए हैं। भारत और चीन के बीच राजनीतिक, राजनयिक और सैन्य स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत से उत्तरी सीमाओं पर सकारात्मक विकास हुआ है जिससे स्थिरता आई है। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ संबंधों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है। ढाका में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को भारत के साथ आपसी हितों के आधार पर नए सिरे से काम करना चाहिए। भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े हाल के मामलों पर श्री कबीर ने कहा कि बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय कानून, सीमा संबंधी नियमों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत कूटनीतिक बातचीत से मुद्दों का समाधान करेगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के नवी मुंबई में 6वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2025-26 प्रदान किए। श्री शाह ने हिंदी दिवस के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया।
2: हिंदी शब्द संसाधन, हिंदी

0: अंशुलिपि, इसके प्रशिक्षण का भी शुभारंभ हुआ है। राजभाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव पुरस्कार का भी सबको सम्मानित करने का काम हुआ है। जिन जिन लोगों को राजभाषा कीर्ति सम्मान और राजभाषा गौरव पुरस्कार मिला है, वो सभी को मैं मन पूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।
1: गृहमंत्री ने वंदे मातरम को देश का गौरव बताया।
0: वंदे मातरम की उद्घोषणा के साथ न केवल आजादी की उत्कंठता को, आजादी प्राप्त करने की तीव्र भावना को जागृत किया, इसके साथ साथ भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव डालने का काम भी बंकिम चंद्र जी ने किया था। आजादी के बाद भी इसको पूर्ण स्वरूप से स्वीकार करते करते 80 साल हो गए। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने वंदे मातरम को फिर से बार पूर्ण स्वरूप गौरव के साथ सरकारी समारोह में गाने का काम किया।
1: दो दिन के अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की ओर से नवी मुंबई में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य हिंदी और महाराष्ट्र के समृद्ध भाषाई, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक परंपराओं के बीच संबंध को उजागर करना है। सम्मेलन में विभिन्न संस्थानों, संगठनों, बैंकों और मंत्रालयों की ओर से प्रदर्शनी भी लगाई गई है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखे हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है।
2: हिंदी दिवस वो दिन है जब हम सिर्फ एक भाषा का उत्सव नहीं मनाते, बल्कि उस भाव को नमन करते हैं जो हमें शब्दों के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ता है। संत कबीर ने भी कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहुं शीतल होए। वाणी केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि हमारे संस्कारों की भी पहचान है। हिंदी ने सदियों से भावनाओं को शब्द दिए हैं। भाषा का वास्तविक गौरव तभी है जब वो ज्ञान को सबके लिए सहज बनाए और समाज को जोड़े। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहा है कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, निज भाषा ज्ञान के मिटत नहिय को सूल। इस हिंदी दिवस पर आइए हिंदी को केवल सिर्फ एक दिन के रूप में न याद करें, बल्कि इसे बोलें, पढ़ें, लिखें और आगे बढ़ाएं। साथ ही दूसरी भाषाओं का भी सम्मान करें, क्योंकि भाषा में जितनी स्वीकार्यता होगी वो उतनी ही आगे बढ़ेगी। आकाशवाणी की ओर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2020 के बाद से 9 राज्य में 147 कोयला खंडों की नीलामी की गई है। कोयला मंत्रालय ने बताया है कि इससे लगभग 47,500 करोड़ रुपए का राजस्व और 4,90,000 नौकरियां सृजित होने का अनुमान है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले वित्त वर्ष में आवंटित वाणिज्यिक खदानों से लगभग 3,090 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। भारत के विद्युत मंत्रालय ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को 13 सितंबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली निर्यात करने की मंजूरी दे दी है। हाल ही में आई बाढ़ से नेपाल के जल विद्युत अवसंरचना को भारी नुकसान पहुंचा है। इससे नेपाल के घरेलू बिजली उत्पादन क्षमता में कमी आई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता उत्पन्न हुई है। राजस्थान में 309 शहरी स्थानीय निकायों के लिए हुए चुनावों की वोटों की गिनती जारी है। अब तक मिले रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। राज्य के 10 नगर निगमों में से भाजपा जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा और उदयपुर सहित 6 में आगे है, जबकि कांग्रेस पाली और बीकानेर में बढ़त बनाए हुए है। भरतपुर में निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार भूमि मालिकों की जानकारी के बिना किए जाने वाले फर्जी भूमि पंजीकरणों को रोकने के लिए एक प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली शुरू कर रही है। ये संपत्ति पंजीकरण को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है। केंद्रीय विद्युत और आवास तथा शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अमरीका पहुंच गए हैं। ऊर्जा प्रचुरता पर G20 मंत्री स्तरीय बैठक 14 से 16 सितंबर तक आयोजित की जा रही है।

0: है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन यायार ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के अनेक जिलों में आज तेज बारिश और आंधी तूफान की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, नवसारी और वलसाड इन पांच तटीय और अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कच्छ, जामनगर, देवभूमि द्वारका, राजकोट, मोरबी, सुरेंद्रनगर, बोटाद, अमरेली, भावनगर और सूरत समेत 10 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट प्रभावी है। इन दौरान 41 से 61 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। वहीं राज्य में मानसून की नई बारिश से फसलों को संजीवनी मिली है, जिससे किसानों में खुशी की लहर छाई है। राज्य के 35 बांध अपनी पूरी क्षमता से भरने के कारण हाई अलर्ट पर है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने कल तक हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, ओडिशा और बिहार में भी तेज बारिश की आशंका व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अगले 2 दिन तक बारिश जारी रह सकती है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में भगवान गणेश की पूजा की।
2: गणेश चतुर्थी की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री गणेश सबके जीवन में हमेशा शुभ करें, हर व्यक्ति के जीवन में खुशी, उत्साह, उत्सव रहे, इसकी कामना करता हूँ। भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद बना रहे।
0: गणेश चतुर्थी की वजह से आज घरेलू शेयर बाजार बंद है। कमोडिटी बाजार में आज सुबह के सत्र में कोई कामकाज नहीं हुआ, लेकिन शाम 5 बजे से कारोबार फिर शुरू हो जाएगा। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अमरीकी ओपन पुरुष सिंगल्स खिताब जीत लिया है। फाइनल में ज्वेरेव ने अमरीका के बेन शेल्टन को हराया। ये 2026 में ज्वेरेव का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले उन्होंने जून में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। भारत ने T20 महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल भारतीय टीम ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा को आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की महत्वपूर्ण नींव बताया। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने पर आगाह किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा, देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष 2025 में चीनी सेना की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति स्थिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की भाषाई विविधता अनेकता के बीच एकता को मजबूत करती है। गृहमंत्री ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी दी। गुजरात के अनेक जिलों में आज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अनुमान और देश भर में आज गणेश चतुर्थी पर श्रद्धा और हर्षोल्लास का माहौल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। ब्रिक्स नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा।
3: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र। मौसम। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं थी। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय 2:31 होने वाले हैं। अब हमारी प्राइमरी चैनल पर पहली सभा की समाप्ति होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: हेलो डियर फ्रेंड।
1: हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार मैम
0: जी नमस्कार। आप पहले तो हमारे

0: श्रोताओं को अपना परिचय दे दीजिए कि आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं।
1: मैं हितेंद्र दास आसाम से बोल रहा हूँ।
0: जी, आप आसाम से बोल रहे हैं। आपसे हमारी पहले भी बात हो चुकी है इस कार्यक्रम में।
1: हाँ जी, हाँ हो चुकी है।
0: जी, तो आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं इस कार्यक्रम में?
1: थ्री इडियट्स मूवी का ऑल इज वेल यह गाना सुनना चाहता हूँ।
0: जी, हम आपको सुनवाएंगे ये गीत। और आप वहाँ के मौसम के बारे में बताइए हितेंद्र जी।
1: मौसम अभी तो शांत है, अच्छा है, धूप निकला हुआ है।
0: जी, और इस वक्त आप हमें कहाँ से संपर्क कर रहे हैं, घर से या फिर घर के बाहर हैं आप?
1: अभी घर के बाहर है।
0: जी, आज वहाँ पर छुट्टियाँ हैं।
1: हाँ, छुट्टियाँ है, गणेश चतुर्थी है, इसीलिए आज छुट्टियाँ है।
0: जी, और वहाँ पर गणेश चतुर्थी कैसी मनाई जाती है?
1: पंडालों में, मंदिरों में पूजा हो रहा है, लेकिन साउथ इंडिया में जैसा होता है धूमधाम से, हमारा वहाँ इतना धूमधाम से नहीं होता है, मतलब
0: जी,
1: पूजा
0: आपके
1: होता है।
0: वहाँ पर कौन से ऐसे त्यौहार हैं जो बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं आपके आसाम में?

0: हाँ सिद्धिया है, गणेश चतुर्थी है इसीलिए आज सिद्धिया है।
1: जी, और वहाँ पर गणेश चतुर्थी कैसी मनाई जाती है?
0: हो रहा है पंडालों में, मंदिरों में पूजा हो रहा है, लेकिन साउथ इंडिया में जैसा होता है धूमधाम से, हमारा वहाँ इतना धूमधाम से नहीं होता है,
1: जी,
0: मतलब पूजा
1: आपके
0: होता है।
1: वहाँ पर कौन से ऐसे त्यौहार हैं जो बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं आपके आसाम में?
0: असम में जैसे दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, काली पूजा,
1: जी
0: लक्की पूजा, और विश्वकर्मा पूजा, मनसा पूजा, ये सब पूजा पूजा
1: जी
0: ये सब पूजा मतलब होता है धूमधाम से।
1: जी अलग अलग हमारे राज्यों में अलग अलग त्योहारों को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है।
0: हाँ
1: जी, तो आप क्या करते हैं, आप बताइए हितेंद्र जी।
0: मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूँ,
1: जी, आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ता है?
0: और ये ना 1 to 5।
1: जी, आप घूमने का, आप छुट्टियों के दिनों में घूमने जाते हैं बाहर कहीं?
0: हाँ जाता हूँ।
1: जी, आसाम में जो चाय है वो बहुत मशहूर है, तो आप
0: हाँ
1: आपके घर के अगल बगल या फिर आपके बगवान में क्या आप चाय की खेती करते हैं?
0: ना हमारा तो चाय का खेती नहीं करता, लेकिन हमारा अगल बगल में चाय का खेती है, और वो
1: जी
0: सब खेती सरकार द्वारा प्रोटेस्टेड है।
1: जी और वहाँ के लोग किन कामों में ज़्यादा अपना किन काम में व्यस्त रहते
0: वो
1: हैं
0: रहता
1: वहाँ के
0: है
1: लोग?
0: कृषि, कृषि फार्मर, एग्रीकल्चर।
1: जी, एग्रीकल्चर से जुड़े हैं वहाँ के लोग।
0: हाँ ज्यादा लोग
1: जी, एग्रीकल्चर में कौन से ऐसे फसल है जो आसाम में ज़्यादातर उगाया जाता है?
0: धान, आख,
1: धान।
0: हाँ
1: जी, राइस की खेती होती है वहाँ पर।
0: होता है।
1: जी, और सब्जी में वहाँ कौन सी सब्जी ज़्यादा उगाई जाती?
0: मेरा तो होता है, ये बोलता है इंग्लिश में जो फूल गोभी, बाँधा गोभी, ये सब।
1: जी, और आज का आपका दिन कैसा रहा?
0: अच्छा रहा, और आकाशवाणी में से सब फोन मिलता है और भी अच्छा लगता है।
1: जी, आप सबके प्रेम से हमारा कार्यक्रम और भी खूबसूरत बन जाता है।
0: हाँ
1: जी, आप गाने गुनगुनाना पसंद करते हैं?
0: नहीं, गाना नहीं आता।
1: जी, तो चलिए फिर हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
0: अच्छा, ठीक है।
1: जी, किन किन ना दोस्तों के नाम लेना चाहेंगे आप?
0: अभी जिस बहुत जून सुन रहा है, सभी को लेके यह गाना सुनना चाहता हूँ।
1: जी, तो चलिए हम सभी के साथ सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
0: हाँ थैंक यू।
1: जी, धन्यवाद।

0: हेलो डियर फ्रेंड।
1: जय माता दी।
0: जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
1: मेरा नाम है पूरण वर्मा और मैं आपसे जुड़ गया हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंसमेल बुगला।
0: जी आज आपसे बात हो रही है तो आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं हमारे इस कार्यक्रम में?
1: जी मैडम, समय भी बहुत कम है, आखिरी कॉल आपने कॉल कर दिया तो मैं तो इंतजार करता कर रहा था कि कॉल आएगा कि नहीं आएगा, कि तो बहुत खुशी और आखिरी कॉल आ गया। बहुत देर हो गई इंतजार करते करते, मोबाइल हाथ में लेके बैठा था मैडम।
0: जी कभी कभी हमारे यहाँ से कॉल नहीं लग पाती है कुछ नेटवर्क के इशू के कारण।
1: जी तो फिल्म का नाम तो बाढ़ गणेश है और उसमें क्योंकि आज गणेश उत्सव है तो पूरी आकाशवाणी विजयपुरम की टीम को और जो लाइव कॉलर सुन रहे हैं उनको हार्दिक शुभकामना।
0: जी आप गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य पर हम आपको ये गणेश जी का गीत सुनवाएंगे, तो समय भी कम है तो आपसे फिर मुलाकात होगी और हमारे आने वाले कार्यक्रमों पर।
1: जी तो तीन दोस्तों को याद कर सकता
0: हूं? जी जरूर जरूर।
1: सबसे पहले तो आप है
0: जी,
1: और मेरा दोस्त है राकेश है, शिवालुवाड़ है, और रमेश पात्रे, अमल, विमल और पूर्णिमा मैडम विजयपुरम से और महाराष्ट्र से।
0: तो चलिए फिर जी, तो चलिए सुनते हैं फिर आपका पसंद का ये गीत।
1: थैंक यू मैडम
0: जी।

तो दोस्तों, इसी के साथ ही आज के हमारे हेलो डियर फ्रेंड कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हमसे जुड़ने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातें और आपकी आवाज़ इस कार्यक्रम को और भी खास बनाती है। इसी उम्मीद के साथ कि आज की ये बातचीत आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाई होगी। फिर मिलेंगे एक नई बातचीत और एक नए श्रोताओं के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार। हम आकाशवाणी के शिवजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम यूं ही गाते रहो।

आकाशवाणी के कार्यक्रम यूं ही गाते रहो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन कुछ खास है क्योंकि आज हम जन्मदिन मना रहे हैं उस कलाकार का जिसने अपनी आवाज़ से भी दिल जीते हैं और अपनी अभिनय से भी। एक ऐसे कलाकार जिसे आप अभिनेता कहे, गायक कहे, रेडियो कहे या एंकर, हर भूमिका में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आयुष्मान खुराना की। इनका जन्मदिन आज हम मना रहे हैं, तो आइए हम सुनते हैं

श्रोताओं, कहते हैं कुछ आवाज़ें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, सीधे दिल पर उतर जाती है। आयुष्मान खुराना की आवाज़ भी कुछ ऐसी ही है। अभिनेता के रूप में अपनी अलग पहचान बनाने वाले आयुष्मान ने गायिका में भी अपनी खास जगह बनाई है। और जब बात हो प्यार के खूबसूरत एहसास की, तो फिल्म बरेली की बर्फी से हम अगला गीत सुनते हैं जिसमें आयुष्मान जी ने किरदार किया है। तो आइए ये प्यारा सा गीत सुनते हैं।

आयुष्मान खुराना की फिल्मों की खासियत रही है कि वे रोज़मर्रा की ज़िंदगी की छोटी छोटी कहानियों को भी बड़ी खूबसूरती अंदाज में पर्दे पर लेकर आते हैं। तो आइए इनके गाए हुए कुछ और गीत सुनते हैं, और हम अगला गीत सुनते हैं बधाई हो फिल्म से।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: A golden opportunity for those making outstanding contributions to animal husbandry. The National Gopal Ratna Award 2025 will honor dairy farmers, AI technicians and dairy cooperative societies nationwide for adopting innovative technological practices. Selections will be made in 3 categories: dairy farmer, dairy cooperative and AI technician. Special awards will be given to winners from the Northeast region and Himalayan states in each category to encourage and promote dairy development activities. Apply now. The application window is open from August 15 to September 30th, 2025. Visit www.awards.gov.in or your nearest Common Service Center to submit your nomination. Celebrate your hard work with a national award.
3: श्रोताओं, आयुष्मान खुराना ने अपनी करियर की शुरुआत रेडियो जॉकी से की, फिर टेलीविजन, एक्टिंग, अभिनय और गायिका। उन्होंने हर पड़ाव को अपनी अंदाज में किया और शायद यही वजह है कि उनकी फिल्मों में हमें एक आम इंसान की कहानी दिखाई देती है। उनके किरदार में प्रेम, हास्य है, संघर्ष है, सपने हैं और

0: ngat indai ai hang mine tahle lenga teh tin ke ke tikak ni me holi ail ngam church of the holy cross itimle ha ye nga tel nga ang in nga sindamu hek in hura ai hang rong ta sa ta it the fan kin ro tala harap nga yen
1: श्रोताओं अभी आप निकोबारी कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:30 हुए हैं। सुगम संगीत इस कार्यक्रम में आज की फनकारा है फरीदा खानम। तो लीजिए सुनिए इनकी गाई ये गज़ल।

फरीदा खानम की गाई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 4:40 हुए हैं। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले आज के शेष कार्यक्रम, अब से कुछ देर बाद यानी 4:45 पर सुनिए कार्यक्रम बहारों की शाम। थिरकते हुए गीतों का आनंद लीजिए शाम 5 बजे तमिल कार्यक्रम में। 5:30 पर बांग्ला में युवाणी कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। संध्या 6 बजे कृषि जगत कार्यक्रम में श्रीमती अहिल्या गौरी की वार्ता होगी, विषय रहेगा बुद्धिमत्ता के प्रतीक श्री गणेश। पॉप मसाला कार्यक्रम का आनंद लीजिए 6:30 पर। मौसम की जानकारी, जलानों का यात्रा कार्यक्रम एवं जनसूचनाएं दी जाएंगी 7:15 पर। 7:20 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। 7:30 पर युवाणी में गणेश चतुर्थी पर चर्चा के बाद आप सुनेंगे हिंदी दिवस पर विशेष कार्यक्रम। फिल्मी गीतों का लुत्फ लीजिए 8:00 चित्रपट संगीत कार्यक्रम में। 8:30 पर सुनिए रोजगार समाचार, तत्पश्चात होगा कार्यक्रम गौरव गान और 10:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम संदेश से आते हैं। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त 9:15 पर स्पॉटलाइट और 9:30 पर पब्लिक स्पीक कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, जबकि रात्रि 10:00 FM 100.9 MHz पर आप सुन सकेंगे विविध भारती से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। और अब एक नजर कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। कल हमारी पहली सभा संपन्न होगी प्रातः 5:23 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात होगा भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। 5:55 पर एग्री टिप्स कार्यक्रम में जानकारी का विषय रहेगा पशुओं में थनैला रोग। जलयानों के यात्रा कार्यक्रम से हम आपको अवगत कराएंगे सवेरे 6:10 पर। 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम सुर शीर्षक पर केंद्रित होगा। रामचरितमानस गान की 362वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी 6:30 पर। वतन के गीत कार्यक्रम सुनिए 6:40 पर। मौसम की जानकारी एवं कार्यक्रमों का विवरण बताया जाएगा 6:50 पर। सवेरे 7:00 सुनिए जन सूचनाएं। 7:15 पर प्राइमरी चैनल पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम देश रागिनी, जबकि इसी समय पर FM 100.9 MHz पर आप सुन पाएंगे विद भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

30 मिनट पर प्राइमरी चैनल और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर आनंद लीजिए गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम का। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 8:30 पर फनकार होंगे नीना मेहता और राजेंद्र मेहता। फिल्मी गीतों का लुत्फ लीजिए सुबह 9 तराने सुहाने कार्यक्रम में। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में ML वसंता कुमारी का कर्नाटक शैली में गायन प्रसारित किया जाएगा। गीत गाता चल कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 10:00। दिन के 11:00 आप सुन सकेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1372वीं कड़ी। चित्रगीत कार्यक्रम सुनिए 11:30 पर। दोपहर 12:00 तेलुगु में आप सुन पाएंगे स्वास्थ्य कार्यक्रम। मलयालम कार्यक्रम प्रसारित होगा 12:30 पर। दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में रेणु विजय चौधरी को आप सुन सकेंगे। आपके नाम फिल्मी पैगाम कार्यक्रम सुनिए 1:30 पर। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा संपन्न होगी, जबकि FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर हमारी स्थानीय सभा जारी रहेगी नॉन स्टॉप म्यूजिक कार्यक्रम के साथ। तत्पश्चात 3:30 पर सुनिए कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर मनी टॉक और 9:45 पर मंथन कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, जबकि रात्रि 10:00 FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन सकेंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 4:45 हुए हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम बहारों की शाम। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं जोरदार फिल्म के इस गीत से, जिसे गाया है अनु मलिक साधना सरगम और साथियों ने। बोल इंदिवर के, धुन बनाई अनु मलिक ने।

क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर है तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।

अनु मलिक के संगीत निर्देशन में तैयार, अब लीजिए सुनिए कलयुग फिल्म का ये गीत। स्वर दिया राहत फतेह अली खान ने, गीत रचना सईद कादरी की।

एक आवश्यक सूचना, आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएट उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक ना हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायकों अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।

और अब कार्यक्रम के अंत में सुनिए जावेद अख्तर का लिखा एवं जतिन ललित का संगीतबद्ध किया हुआ गीत अनवर फिल्म से, स्वर दिया रूप कुमार राठौर ने।

0: रूप कुमार राठौर और साथियों के गाए अनवर फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम बहारों की शाम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। अब लीजिए सुनिए तमिल कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम वानोली निलयम वळंगुम तमिळ अमुदम् वणक्कम் नेयर्गळे,

अभी आप तमिल कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। अब पेश है बांग्ला कार्यक्रम।

श्रोताओं, अभी आप बांग्ला कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के ठीक 6 बजे हैं। अब कृषक भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे, कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले तमाम किसान बहनों और भाइयों को वर्षा का नमस्कार और आज के इस अंक में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, श्री कृष्ण कहते हैं, अपना समय और जीवन उन बातों पर व्यर्थ ना करें जो वास्तव में कोई महत्व नहीं रखती। जो चीजें आपके जीवन में सचमुच मायने रखती है, उन पर आज ही अपना पूरा ध्यान और प्रयास लगाए, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं होता। इन्हीं नेक विचारों के साथ चलिए अब हम बढ़ते हैं खेती किसानी की ओर। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हर रोज की तरह हम आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। और हमारा आज का प्रश्न है, वामबन चार किस फसल की उन्नत किस्म है, ये आपको बताना है। प्रश्न एक बार फिर सुने, वामन चार किस फसल की उन्नत किस्म है। साथियों, आप इस प्रश्न का उत्तर सोचते रहिए। कार्यक्रम के अंत में हम इस प्रश्न का सही उत्तर आपको अवश्य ही बताएंगे।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर है तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
0: किसान साथियों, आज पूरे देश में गणेश उत्सव का त्योहार बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और आपको हमारी ओर से गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। बुद्धिमता के प्रतीक श्री गणेश, इस संदर्भ में आइए अब हम कुछ वार्ता करेंगे। और वार्ता

0: कार है श्रीमती अहिल्या गौरी। तो चलिए सुनते हैं ये वार्ता।
1: साथियों, भगवान गणेश हिंदू धर्म के सबसे लोकप्रिय और प्रथम पूजनीय देवता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जिसका अर्थ सभी बाधाओं को दूर करने वाला, गणपति बप्पा मोरिया। आज का यह दिन हम सभी के लिए अत्यंत आनंद, उत्साह और श्रद्धा से भरा हुआ है। गणेश उत्सव केवल एक धार्मिक त्यौहार नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज को एक सूत्र में पिरोने और एकजुट करने वाला एक महापर्व है। आज जब हम विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की स्थापना अपने घरों और पंडालों में करते हैं, तो हमारे मन में एक नई ऊर्जा और आशा का संचार होता है। श्री गणेश प्रथम पूज्य और बुद्धि के देवता भारतीय संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य, पूजा या अनुष्ठान की शुरुआत भगवान गणेश के स्मरण के बिना अधूरी मानी जाती है। वे प्रथम पूज्य है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि उन्हें क्यों यह स्थान मिला? जब माता पार्वती और भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश से ब्रह्मांड की परिक्रमा करने को कहा, तो कार्तिकेय ने अपने मयूर पर सवार होकर पूरे विश्व की यात्रा पर निकल गए। वहीं बुद्धि के सागर श्री गणेश अपने माता पिता को ही अपना संपूर्ण ब्रह्मांड मानकर उनके चारों ओर परिक्रमा की। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता का स्थान और हमारी बुद्धि का सही उपयोग ही जीवन में सर्वश्रेष्ठ सफलता दिलाता है। भगवान गणेश का स्वरूप केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि उसमें जीवन को बेहतर बनाने के गहरे गुण संदेश छिपे हैं। जैसे बड़ा सर, ये हमें बड़ा सोचने और ज्ञान अर्जन करने की प्रेरणा देता है। बड़े कान एक अच्छे श्रोता बनने का संदेश देते हैं, कम बोले और ज़्यादा सुने। छोटी आँखें जीवन में ध्यान और सूक्ष्म दृष्टि रखने की सीख देती है। लंबी सूंड यह अनुकूलशीलता का प्रतीक है, जिससे भारी से भारी और बारीक से बारीक काम किया जा सके। एक दंत यह बात का प्रतीक है कि जीवन में अच्छे को स्वीकार और बुरे को त्याग दे। बड़ा पेट यानी लंबोदर जीवन के अच्छे बुरे सभी अनुभवों और बातों को पचाना सीखे। गणेश उत्सव का सामाजिक महत्व ये है कि अगर इतिहास के पन्नों को पलटकर देखे तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने ब्रिटिश शासन के दौरान स्वतंत्रता संग्राम के लिए लोगों को एकजुट करने हेतु गणेश उत्सव को एक सार्वजनिक रूप दिया था। आज के समय में भी ये उत्साह हमें अपनी जाति और मतभेदों को भुलाकर एक साथ मिलकर उत्साह मनाने का अवसर देता है। आज के दौर में जब हम बप्पा का स्वागत करते हैं, तो पर्यावरण की रक्षा का संकल्प भी लेना चाहिए। हमें मिट्टी के इको फ्रेंडली से मूर्ति बनाने का उपयोग करना चाहिए और जल निकायों को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। जहरीले रंगों और केमिकल से दूषित पानी जब हमारी खाद्य श्रृंखला में पहुंचता है, तो इंसानों में त्वचा और स्वास्थ्य की जुड़ी बीमारी फैलने का खतरा रहता है। इको विसर्जन मूर्ति को आप आसानी से घर पर किसी बाल्टी या गमले में विसर्जित कर सकते हैं। कई मूर्तियों में पौधे के बीज भी होते हैं, जिससे विसर्जन के बाद उसी मिट्टी में एक नया पौधा उगाता है। समुद्री और जल जीवों की सुरक्षा के लिए हमें पॉप की मूर्तियों में इस्तेमाल होने वाले जहरीले रासायनिक रंग पानी में मिलकर मछली और अन्य जलीय जीवों के लिए जानलेवा साबित होते हैं। इको फ्रेंडली मूर्तियों में प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है। यही बप्पा के लिए हमारी सच्ची भक्ति होगी। भारत में हर त्यौहार का अलग महत्व है।

0: और यही वजह है कि इसे त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ पर त्योहार अपने साथ खुशियाँ और आस्था लेकर आता है। गणेश चतुर्थी ऐसा ही पावन पर्व है जिसे पूरे देश में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व भगवान गणेश जी के जन्म के रूप में मनाया जाता है। गणेश जी को शुभारंभ के देवता माना गया है। किसी भी कार्य करने से पहले गणेश की प्रथम पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी मुख्य रूप से भाद्रपद मास में मनाई जाती है। इस दिन भक्त गणेश की मूर्ति अपने घरों या पंडालों में स्थापित करते हैं। माना जाता है कि भगवान गणेश की पूजा करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती है और सफलता की राह आसान हो जाती है। भक्तजन भगवान गणेश को मोदक, लड्डू और फल अर्पित करते हैं। पंडालों में सजावट, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भक्ति गीतों का आयोजन किया जाता है। गणेश जी की पूजा 10 दिनों तक चलती है। इस दौरान गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे से पूरा वातावरण गूंज उठता है। गणेश चतुर्थी का यह पर्व आस्था, आनंद और सामूहिक उत्सव का प्रतीक है। आइए इस पावन अवसर पर हम सब भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन में सभी विघ्नों को, दुखों को और नकारात्मकता का हरण करें तथा हमें सद्बुद्धि और समृद्धि प्रदान करें। आप सभी को फिर से एक बार गणेश उत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।
1: बुद्धिमत्ता के प्रतीक श्री गणेश। इस विषय में अभी आप श्रीमती आहिल्या गौरी जी से ये वार्ता सुन रहे थे।
2: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture, and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting, through Prasar Bharati, proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India, because every district has a story worth telling.
1: कृषि में चूहों से नुकसान व उनका प्रबंधन, इस संदर्भ में आइए आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर अजंता बीरा जी से। तो चलिए सुनते हैं ये बातचीत।
3: मैडम स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
4: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: मैडम किसान भाई ये तो जानते हैं कि चूहों से किसानों को नुकसान होता है, कृषि में होता है, भंडारण में होता है, तमाम सारे नुकसान होते हैं। तो हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जहाँ तक चूहों से होने वाले नुकसान का सवाल है, अगर इसको हम क्वांटिफाई करें, इसका अगर आंकड़ा जानना चाहें तो कितना प्रतिशत नुकसान होता है?
4: जी देखिए, चूहों का हमारी सभी तरह की फसलों में लगभग नुकसान होता है, चाहे वो दालें हों, चाहे हमारे अनाज हैं या नारियल है, फल हैं या सब्जियां हैं। बहुत से किसान भाई नहीं जानते होंगे कि सभी तरह की चीज़ों में इसका नुकसान होता है, और पौध से लेकर और गोदामों तक सभी स्टेज में, अवस्थाओं में वो चूहा पीछा नहीं छोड़ता है। कि चाहे वो आपकी सीडलिंग हो, फिर उसके बाद आपके खेत में आने वाली फसल हो, और उसके बाद धीरे धीरे गोदामों में जब तक आप स्टोर करेंगे तब तक वो चूहा पीछा करता रहेगा। और इसमें कुल होने वाले नुकसान को अगर कहा जाए तो उसको 5 से 10% हम उसमें कुल कृषि उत्पाद में नुकसान मानते हैं।
3: होता है।
4: जी
3: तो ये बिल्कुल एक अच्छा खासा नुकसान है।
4: जी हाँ बिल्कुल। और ये 5 से 10% है जब कुछ नियंत्रण के वो ले लिए जाएं। अगर बिल्कुल नियंत्रण पर कुछ नहीं रोक लगाई जाए तो ये नुकसान काफी आगे तक भी बढ़ सकता है।
3: अच्छा, अगर अनियंत्रित रहे तो
4: बहुत ज्यादा भी हो सकता है। जी
3: मैडम, जहाँ तक चूहा कुल की जो दूसरे जो प्रजातियां हैं जिनसे कि कृषि में नुकसान होता है, ये कौन कौन सी है?
4: जी एक्चुअली चूहा तो हम लोग एक कॉमन भाषा में कहते हैं, इनको हम

0: कुतरने वाले जंतु कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत से और भी जंतु आते हैं जो इसी कुल के हैं, लेकिन चूहा उनको नहीं कहा जाए तो ठीक रहेगा। तो इसमें कुल हमारे जो अंडमान निकोबार ग्रुप की जो बात की जाए तो इसमें 15 तरह के जो हैं इस तरह के जंतु अभी तक रिपोर्ट हुए हैं।
1: जिनसे
0: बाकी
1: मतलब कृषि को नुकसान
0: जी
1: होता
0: हाँ बिल्कुल। और इसमें और आगे अभी अनुसंधान कार्य चल रहा है कि और भी हैं जो हम ये मानते हैं कि यहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन अब तक जो रिपोर्ट है वो 15 स्पीशीज की है, जिसमें से कि 13 जो हैं वो घरेलू चूहा, जिसको हम रेटस रेटस कहेंगे या हाउस रेट कहेंगे, उस कैटेगरी में आते हैं। एक है जो आपकी घरेलू चूहिया, जिसे मस मस्कुलस जिसे कहते हैं, जो कि बहुत छोटी 15 ग्राम से नीचे का वजन वाली जो चूहिया होती है वो कही जाती है, जो कि घरों में आमतौर से पाई जाती है और गोदामों में भी मिल सकती है। और तीसरी जो कैटेगरी है वो है हमारी गिलहरी की, जो कि हम ये मानते हैं कि नहीं गिलहरी है वो नुकसान नहीं करती है, जबकि काफी नुकसान गिलहरी भी करती है।
1: खासतौर पर फलों में काफी
0: जी हाँ,
1: नुकसान
0: फलों
1: होता है।
0: में और सब्जियों में भी कई बार पाई जाती है, और यहाँ तक कि सुपारी तक में भी उसका थोड़ा देखा गया है। तो इस तरह से गिलहरी जो आती है वो उसमें, तो उसे फनम्बुलेंस पेनांटी, जिसमें यहाँ की 5 धारियों वाली गिलहरी यहाँ पर आमतौर से देखी गई है। तो इस तरीके से कुल 15 तरह की प्रजातियां हैं जो इस कुतरने वाले जंतुओं में यहाँ पर पाई जाती
1: जो
0: हैं।
1: कृषि को नुकसान पहुंचाते
0: जी
1: हैं,
0: हाँ
1: तो जहां तक इनके प्रबंधन का सवाल है, तो इसके लिए क्या रणनीति किसान अपना सकते हैं?
0: जी, इसमें 2 तरह की रणनीति किसान अपना सकते हैं। एक है बिना विष के प्रयोग वाली रणनीति और दूसरी है विष के प्रयोग वाली रणनीति।
1: अच्छा, तो पहले हम बात कर लेते हैं बिना विष के प्रयोग वाली रणनीति
0: जी
1: के बारे में,
0: जी
1: इससे आपका क्या मतलब है?
0: जी बिना विष के प्रयोग की रणनीति, जिसमें किसी भी तरह का कोई विष का प्रयोग हम नहीं करें तो भी हम पूरी तरह से नियंत्रण पा सकते हैं, ऐसा माना गया है, अगर हम शुरू से ही सावधानी बरतें। और उसमें कई तरह के उनका अपनाया जाता है, जैसे इसमें पहली जो चीज आती है वो खेतों में खरपतवार का नियंत्रण, क्योंकि चूहे मुख्य फसल रहने पर तो मुख्य फसल खाते हैं, लेकिन जब फसल नहीं रहती है खेतों में तो वो खरपतवारों पर, तो इसलिए अगर हमारे खरपतवार नहीं रहेंगे तो उसी तरह से उनका जो जनसंख्या है अपने आप भी कम होती रहेगी। तो इसलिए खेत की सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा माना जाता है। दूसरा जो है उसमें आता है कि खेत की मेड़ें, जैसे हमारे किसान भाई जानते हैं कि मेड़ बनाते हैं तो वो बहुत ऊंची मेड़ ना बनाएं, जितनी आवश्यकता हो उतना छोटी मेड़ और नीची मेड़ बनाएं, क्योंकि ये जो अपने बिल जो हैं ये मेड़ पे बनाते हैं, तो अगर ऊंची मेड़ें होंगी तो उनको उनके घर बनाने का ज्यादा स्कोप रहेगा, उतना ही ज्यादा वो बनाएंगे। तो एक ये सावधानी बरतनी चाहिए। और तीसरा है कि हमारे कई तरह के पिंजरे, जिसे ट्रैप्स भी कह सकते हैं, उनका प्रयोग,
1: चूहेदानी जो
0: चूहेदानी जिन्हें कहेंगे, तो वो चूहेदानी भी, कई तरह की चूहेदानियां हैं जो उपलब्ध रहती हैं, इसलिए गोदामों में और बहुत सारी फसलों में भी कई बार ये चूहेदानियां भी काफी कारगर साबित होती हैं। चूहेदानियां भी लकड़ी की बनी हुई हो सकती है, लोहे की जाली की बनी हुई हो सकती है। एक और रहते हैं जिसे चिपचिपी वो कहते हैं, जिसे स्टिकी ट्रैप हम मानते हैं, वो भी गोदामों में बहुत अक्सर सफल पाए गए हैं, कि उसको रात को रखा जाता है और उसमें जो भी चूहा वहां से गुजरेगा वो उस पर चिपक जाएगा और फिर चिपकने के कुछ देर बाद मर जाएगा, तो वो बहुत कारगर साबित होता है। तो अगर शुरू से ही सावधानी रखें तो इसमें कोई विष का प्रयोग नहीं है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से नियंत्रण हो जा सकता
1: किया
0: है।
1: जा
0: हाँ
1: सकता है।
0: जी
1: और जहाँ तक विष के प्रयोग से चूहा प्रबंधन का सवाल है, तो पहले हम जानना चाहेंगे कि हमारे यहाँ पर नारियल के बागान बहुत हैं,
0: जी
1: इनमें भी चूहों से नुकसान होता है,
0: जी
1: तो इसमें जो है इसका जो प्रबंधन है विष के जरिए से कैसे किया जा सकता है?
0: अच्छा, नारियल के केस में एक मैं पहले बिना विष के प्रयोग का भी बताना चाहूंगी कि बिना विष के प्रयोग भी इसमें संभव है। इसमें किसान भाइयों को पहले तो सबसे पहले जरूरी है कि इसमें पहचान होना कि क्या हमारा नारियल के पेड़ में चूहा है या
1: या
0: नहीं
1: नहीं
0: है।
1: जी।
0: उसकी पहचान ये है कि उसमें कुछ जो आपके नारियल जो है वो नीचे गिरे मिलेंगे, उसमें एक छेद होगा जहां से वो अटैचमेंट जो होता है, जहां वो लगा होता है,
1: जहां जुड़ता है अपना।
0: जुड़ता है, उसके पास ही एक बड़ा होल होता है, जिसमें कि वहां ऊपर ही पेड़ पे वो उतर के और उसको अंदर ही से खोखला कर देता है, और वो फिर आपके 2 से लेके 20 दिन तक वो नीचे गिरता है। जरूरी नहीं है कि वो जिस वक्त चूहा खाए उसी वक्त गिरे, काफी दिन बाद तक भी चूहा उसे खाए और तो वो गिरेगा। तो उस तरह के अगर फल नीचे पाए जाते हैं, इसका मतलब है कि उस खेत आपके बागान में चूहे हैं। और अगर हैं तो इसमें बहुत अधिक एक चीज है जो जीआई शीट, जिसे 3 से 5 फुट तक की जीआई शीट है, उसको अगर पेड़ के आपके तने पर बांध दें तो वो बहुत कारगर साबित होती है, क्योंकि
1: लोहे की पतली
0: जीव
1: जो
0: जो पतली शीट,
1: शीट
0: हाँ
1: होती है।
0: हाँ तो नारियल के केस में इसकी जैसे 2 टिकिया, 15-15 ग्राम की 2 टिकिया आप ऊपर पत्तियों के बीच, जिसे कहते हैं बिल्कुल बीच में जहाँ है वहां अगर रखा जाए, तो उसमें जो उसका ब्रीडिंग हो रहा होगा चूहे का, वो उसमें वहां पर मर जाएंगे और फिर आगे उसकी वो बढ़ोतरी नहीं होगी। तो काफी हद तक उपाय
1: कंट्रोल हो सकता
0: किया जा सकता है। हाँ
1: है। अच्छा, तो मैडम ये जो नारियल के चूहे होते हैं, तो उनकी प्रवृत्ति क्या ऊपर ही, मतलब नारियल के जो ऊपरी हिस्सा होता है नारियल पेड़ का, तो वहीं वहीं पर प्रजनन करने की होती है या नीचे?
0: जी नहीं नहीं प्रजनन ऊपर ही रहता है,
1: अच्छा।
0: लेकिन उनका जो आना जाना नीचे भी रहता है, वो भी रात को।

0: लेकिन प्रजनन ऊपर ही होता है, इसलिए जो पेड़ आसपास जिनमें गैप कम है उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर प्लास्टिक शीट भी आप बांधे तो वो नीचे ना आकर आपस में पेड़ से ही एक दूसरे में
1: अच्छा,
0: वो आना जाना,
1: पतली है तो मतलब
0: हाँ
1: ऊपर ही ऊपर
0: बिल्कुल।
1: चले
0: तो
1: जाते हैं।
0: इसलिए जितना वो सिफारिश की जाती है कि पेड़ से पेड़ की दूरी इतनी रहनी चाहिए उतना ही माने तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज फिर चूहों की समस्या
1: इस
0: ज्यादा
1: तरह
0: हो
1: की
0: जाएगी।
1: समस्याएं आ
0: जी
1: सकती
0: हाँ
1: हैं। अब नारियल के बाद बात आती है, हमारी जो अनाज की फसलें हैं, दाल की फसलें हैं, इनमें भी
0: जी
1: चूहों से नुकसान होता है।
0: जी हाँ इसमें ये है कि जो फसलें हैं उसमें अगर इसमें जो आपकी बरोज हैं वो होती हैं जो
1: सुरंग बना देते
0: सुरंग
1: हैं।
0: बना देते हैं जैसे, और मेड़ पर सुरंग होंगी, तो जैसे ये देखें कि सुरंग हैं जो कि हमने यहाँ देखा है इवन चने की फसलों में और दालों में भी, हमारे अंडमान में भी मैंने देखा है कि बहुत से सुरंग बनाए हुए हैं जो, और उसमें पाया जाता है अनाज और दालें भी। तो उसमें सबसे पहले ये करना है कि जो उन बरोज में ये देखना है कि लाइव बरो कितनी है हमारी जो,
1: अच्छा
0: क्योंकि सभी बरोज लाइव नहीं होती हैं, तो
1: अच्छा
0: उसमें करना ये होता है कि पहले पूरे खेत की मेड़ में जितनी बरोज हैं उनको मिट्टी से बंद कर दिया जाए एक दिन। तो अगले दिन जब आप देखेंगे तो उसमें से कुछ बरोज खुली हुई दिखाई देंगी अपने आप, तो इसका मतलब वो बरोज

0: बात बात आती है हमारी जो अनाज की फसलें हैं, दाल की फसलें हैं, इनमें भी
1: जी
0: चूहों से नुकसान होता है।
1: जी हाँ, इसमें ये है कि जो फसलें हैं उसमें अगर इसमें जो आपकी बरोज हैं वो होती हैं जो
0: सुरंग बना देते
1: सुरंग
0: हैं।
1: बना देते हैं जैसे, और मेड़ पर सुरंग होंगी, तो जैसे ये देखें कि सुरंग है, जो कि हमने यहाँ देखा है इवन चने की फसलों में और दालों में भी, हमारे अंडमान में भी मैंने देखा है कि बहुत से सुरंग बनाए हुए हैं जो, और उसमें पाया जाता है अनाज और दालें भी। तो उसमें सबसे पहले ये करना है कि जो उन बरोज में ये देखना है कि लाइव बरो कितनी है हमारी, जो
0: अच्छा
1: क्योंकि सभी बरोज लाइव नहीं होती हैं, तो
0: अच्छा
1: उसमें करना ये होता है कि पहले पूरे खेत की मेड़ में जितनी बरोज हैं उनको मिट्टी से बंद कर दिया जाए एक दिन। तो अगले दिन जब आप देखेंगे तो उसमें से कुछ बरोज खुली हुई दिखाई देंगी अपने आप, तो इसका मतलब वो बरोज लाइव हैं। तो उन बरोज में हमारा ये जो ब्रोमोडाइलन जो बेट है, इसको कागज की पुड़िया में 10 ग्राम का वो बना के और उसको अंदर डाल देना चाहिए किसी छड़ी से या लकड़ी की सहायता से, और उसके बाद फिर अगले दिन उनको देखना चाहिए। तो चूहे अगर मरे हुए मिलते हैं तो उनको इकट्ठा करके और एक मिट्टी में दबा देना चाहिए, और ये कोई भी जहर इस्तेमाल करते वक्त ये देखिए कि बाहर कोई ना रहे ताकि हमारे पक्षी या कोई और जानवर उसको
0: ना
1: ना
0: खा
1: खा
0: सके।
1: सके, तो ये रखना चाहिए। तो इस तरीके से अगर दालों में या और अनाज की फसलों में चूहों का प्रकोप है तो वो उस तरह से
0: रोका
1: बचाया
0: जा
1: जा
0: सकता है,
1: सकता
0: मतलब
1: है
0: जहर का इस्तेमाल करके। तो पहले बिल की पहचान कर लेनी चाहिए कि बिल के अंदर
1: कि
0: चूहे हैं
1: हैं
0: या
1: या
0: नहीं, जैसे
1: नहीं।
0: आपने बताया उसे
1: जी
0: कर सकते। अब बात आती है गोदामों की, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान
1: बिल्कुल
0: मेरे ख्याल से
1: बिल्कुल
0: होता है।
1: हाँ,
0: तो वहां पर
1: यहाँ
0: कौन कौन सी सावधानी किसान
1: हाँ,
0: बरते?
1: गोदामों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि पहले ये देखें कि गोदाम में कोई छेद या कोई क्रैक्स या दीवारों में इस तरह का कोई वो तो नहीं है, ताकि इनको आने जाने की प्रवृत्ति या कोई उनको जगह तो नहीं मिल रही है।
0: जी
1: तो जिस जगह आप अनाज का भंडारण करते हैं वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम जहर का प्रयोग नहीं हम सिफारिश करते हैं, क्योंकि खाने की चीज है, जहर कम से कम ही
0: जी
1: इस्तेमाल हो तो अच्छा है। तो इसलिए इसमें बाकी सावधानियां बरतें तो काफी बचा जा सकता है। तो कोई बिल वगैरह ना हो अंदर, कमरा पक्के में हो भंडारण तो अच्छा है, और फिर भी अगर ये लगता है कि चूहे का आना जाना है या कुछ पता चलता है तो फिर हम यहाँ पर रात को उसमें स्टिकी ट्रैप लगाएं और उससे नियंत्रण करें तो वो ज्यादा अच्छा
0: जी स्टिकी
1: रहेगा।
0: ट्रैप काफी महंगा तो नहीं होता?
1: नहीं नहीं
0: बहुत
1: नहीं
0: ज्यादा
1: हाँ, बहुत
0: महंगा?
1: ज्यादा नहीं, बहुत आसानी से मिल जाता है यहाँ
0: अच्छा,
1: और बिल्कुल महंगा नहीं है।
0: जी
1: तो उस तरह से उन गोदामों में बगैर विष के प्रयोग के किया
0: रोका
1: जाए
0: जा
1: तो
0: सकता
1: ज्यादा अच्छा है।
0: है। बहुत सारे किसान भाई जैसे यहाँ पर जो आमतौर पर परंपरागत जो टप्पा कहते हैं, जो बैम्बू की बनी होती है, उससे उस लोग मतलब उसमें स्टोरेज करते हैं, तो
1: हाँ
0: उसमें आप
1: हाँ
0: क्या सलाह
1: हाँ
0: देंगे?
1: उसमें इसीलिए रहता है कि उसमें ज्यादा चांस रहता है चूहे को खाने का, क्योंकि उसको आसपास से अगर कोई वो जगह बंद नहीं है तो फिर उसके आने जाने की प्रक्रिया भी रहती है। और चूहों का ये है कि वो खाने से उतना ज्यादा नुकसान नहीं करते हैं जितना कि वो वैसे ही बर्बाद करते हैं अन्न को, कि वो इंसान के खाने के लायक भी नहीं रहता है,
0: अनाज को
1: तो
0: खराब
1: अनाज
0: कर
1: को
0: देते हैं।
1: हाँ वैसे ज्यादा खराब करते हैं। तो इसलिए उसमें ये देखा जाए कि कहीं ज्यादा छेद या उसको निकलने की या जगह ना हो, बैम्बू का भी बनाए तो ऐसा कि बीच में जगह ना दे, कि किसी तरह से ये है तो पूरा अच्छे से टाइट करके बनाए, तो उस तरह से नहीं होगा। और अगर फिर भी ये लगता है तो जिस जगह पर चांस ये लग रहा है कि अगर यहाँ से आ रहा है चूहा तो उस जगह बाहर वो ट्रैप जो है आपका जाली वाला ट्रैप भी लगा सकते हैं, और या फिर स्टिकी ट्रैप भी लगा सकते हैं। और स्टिकी ट्रैप है तो उसको वैसे ही चूहा मर जाएगा फेंक सकते हैं, अगर जाली वाला ट्रैप है तो
0: मारना
1: उसको
0: पड़ेगा।
1: आप हाँ उसको जाली में ये करना है कि उस जाली सहित उस चूहे को 2-3 मिनट पानी में डुबा दें तो
0: अच्छा,
1: उससे वो मर जाएगा, और उसके बाद कहीं मिट्टी में दबा दिया जाए।
0: तो मैडम उम्मीद करते हैं कि आपकी बातों पर किसान जरूर ध्यान देंगे। और चूहों से होने वाला ये जो नुकसान आपने कहा 5 से 10% तब होता है जब किसान भाई ध्यान देते हैं, ना ध्यान दें तो ज्यादा भी हो सकता है।
1: जी
0: तो आप कार्यक्रम में आए, आपने इतनी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: जी धन्यवाद।
2: कृषि में चूहों से नुकसान व उनका प्रबंधन, इस विषय में हमें बता रही थी डॉक्टर अजंता बीरा, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बातचीत को आपने ध्यान से सुना होगा।
3: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे?
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब?
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुन रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
4: परम तो सभी डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।

0: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
1: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
2: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ चर्चा करेंगे राष्ट्रीय कृषि अवसंरचना योजना के संदर्भ में।

कृषि अवसंरचना कोष योजना फसल कटाई के बाद के प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के विकास के लिए मध्यम से दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण प्रदान करने वाली एक केंद्रीय योजनाएं हैं। ये फंड फसल कटाई के बाद बुनियादी ढांचा प्रबंधन एवं सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों हेतु में निवेश के लिए मध्यम एवं दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करेगी। सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के माध्यम से किसान फसल की कटाई के बाद उसकी सही कीमत मिलने तक उसे सुरक्षित रख सकेंगे। इसका उद्देश्य फसलों की कटाई के बाद अनाज के प्रबंधन हेतु अवसंरचना का विकास करना, लिए गए ऋण पर सब्सिडी और बैंक गारंटी के माध्यम से किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्यमों को निवेश बढ़ाने और आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में आधारिक तंत्र को मजबूत करना है, जिससे देश के बड़े बाजारों तक किसानों की पहुँच सुनिश्चित की जा सके। इस योजना के तहत सरकार द्वारा कृषि क्लस्टर की पहचान कर वहां उगाई जाने वाली फसलों के लिए आवश्यक अवसंरचना के विकास और इसके लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा तथा इस योजना के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों अनाज और अन्य फसलों जैसे प्याज लहसुन आदि के भंडारण हेतु आधुनिक तकनीकी से युक्त भंडार गृहों के निर्माण कर इसे ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकेगा।

0: किसान साथियों, अभी आप राष्ट्रीय कृषि अवसंरचना योजना के विषय में ये चर्चा सुन रहे थे।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर है तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
0: किसान साथियों, अब वक्त हो चला है आज पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर बताने का। और कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे पूछा था, वामन चार किस फसल की उन्नत किस्म है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है, वामन चार उड़द की उन्नत किस्म है। वामन पांच, वामन छः और वामन सात किस्में भी हमारे द्वीपों के लिए उपयुक्त है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान साथियों ने इस प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त

कर लिया होगा। आज के इस कृषि जगत कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन कल शाम 6 बजे आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप कृषि जगत कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 6:30 हुए हैं। अब आरंभ होता है थिरकते हुए गीतों का कार्यक्रम पॉप मसाला। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं अग्निपथ फिल्म के इस गीत से, जिसे गाया है अजय और साथियों ने। बोल अमिताभ भट्टाचार्य के, धुन बनाई अजय अतुल ने।

सुनिधि चौहान और शान की आवाज़ों में ये गीत था 36 चाइना टाउन फिल्म से, रीमिक्स किया अकबर सामी ने। और अब सुनिए अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म का ये गीत।

0: पॉप मसाला कार्यक्रम जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर है तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।

आवश्यक सूचना। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएट उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक ना हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायकों अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है।

श्रोताओं, कल 15 सितंबर को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मनोनीत उपराज्यपाल डॉक्टर दिनेश शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसे दूरदर्शन के स्थानीय चैनल के साथ साथ यूट्यूब चैनल @DDK श्रीविजयपुरम पर दिन के 11:30 बजे से लाइव देखा जा सकता है। पॉप मसाला कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए सुनते हैं मुझसे शादी करोगी फिल्म का ये गीत।

सोनू निगम, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में ये गीत था मुझसे शादी करोगी फिल्म से। और अब कार्यक्रम में सुनते हैं सुनिधि चौहान को फिल्म खाकी से।

सैम भट्ट और मिथुन की आवाज़ों में ये गीत था मर्डर टू फिल्म से। इस गीत के साथ ही थिरकते हुए गीतों का कार्यक्रम पॉप मसाला अब यहीं संपन्न होता है।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 7 बजे हैं। श्रोताओं, कल 15 सितंबर को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मनोनीत उपराज्यपाल डॉक्टर दिनेश शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसे दूरदर्शन के स्थानीय चैनल के साथ साथ यूट्यूब चैनल @DDK श्री विजयपुरम पर दिन के 11:30 बजे से लाइव देखा जा सकता है।

आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएट उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो, जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक ना हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी के श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायकों का अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है।

श्रोताओं, आज शाम 7:30 पर युवाणी में गणेश चतुर्थी पर चर्चा के बाद आप सुनेंगे हिंदी दिवस पर विशेष कार्यक्रम। फिल्मी गीतों का लुत्फ आप ले सकेंगे रात 8 बजे चित्रपट संगीत कार्यक्रम में और रात 10 बजे संदेह से आते हैं इन कार्यक्रम में। आठ बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे रोजगार समाचार, तत्पश्चात होगा कार्यक्रम गौरव गान।

कल प्रातः 5:55 पर एग्री टिप्स कार्यक्रम में जानकारी का विषय रहेगा पशुओं में थनैला रोग। सवेरे 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम सूर्य शीर्षक पर केंद्रित होगा। तत्पश्चात रामचरितमानस गान की 362वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी 6:30 पर। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन इस अंतराल के बाद।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले कुछ मुख्य समाचार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नवनियुक्त उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह का कल लाइव प्रसारण दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम से किया जाएगा। द्वीपों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 19 सितंबर को आइलैंड साइकिलिंग टूर 2026 का आयोजन किया जा रहा है। पर्यटन निदेशालय द्वारा वार्षिक साइकिलिंग आयोजन टूर ऑफ अंडमान के छठे संस्करण का दो बैचों में आयोजन होगा। और नई दिल्ली में 65वें सुब्रतो मुखर्जी कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 के लिए अंडर 17 लड़कों की फुटबॉल टीम द्वीप समूह का प्रतिनिधित्व करेगी। सांध्य समाचारों के साथ मैं संगीता देवनाथ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नवनियुक्त उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन कल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण सुबह 11:30 बजे से दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम के आधिकारिक यूट्यूब चैनल @DDK श्री विजयपुरम और इसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम से भी किया जाएगा। द्वीपों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खेल और युवा मामलों का विभाग, शिक्षा निदेशालय और सूचना प्रचार और पर्यटन निदेशालय तथा साई के सहयोग से 19 सितंबर को आइलैंड साइकिलिंग टूर 2026 आयोजित कर रहा है। यह साइकिलिंग टूर सुबह 9 बजे सेलुलर जेल से शुरू होकर वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, फ्लैग पॉइंट, कार्बन बीच, ऑस्टिनाबाद, प्रात्रापुर, भातुबस्ती, गाराचरमा, सिपीघाट, छोलदारी, तुष्णाबाद, फरारगंज, जिरकाटांग होते हुए वापस, फरारगंज होते हुए नयापुरम, कन्यापुरम, विम्बलीगंज, बम्बू फ्लैट जेट्टी से वाहन फेरी में श्री विजयपुरम पहुंचेंगे। इच्छुक प्रतिभागी एंट्री और डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर 18 सितंबर शाम 5 बजे तक नेताजी स्टेडियम श्री विजयपुरम के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। प्रतिभागी अपनी साइकिल और पूरी साइकिलिंग किट के साथ भाग लेंगे, जिसमें हेलमेट, उपयुक्त स्पोर्ट्स कपड़े, पानी की बोतल और सुरक्षा के लिए अन्य जरूरी सामान शामिल होगा। अधिक जानकारी के लिए प्रतिभागी 9434290640 और 9474229201 पर संपर्क कर सकते हैं। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर 5.0 अभियान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा 12 से 19 सितंबर के दौरान आयोजित किया जा रहा है। मंत्रालय द्वारा इस अभियान में सभी कार्यालयों को भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया है। यह अभियान समुद्री कचरे, खासकर प्लास्टिक कचरे के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई के लिए मंत्रालयों, शिक्षण संस्थानों, सामुदायिक समूहों, एनजीओ और नागरिकों को एक साथ लाता है। भारत की लगभग 1198 किलोमीटर लंबी तटरेखा और समुद्र व तटीय पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर लाखों लोगों की आजीविका को देखते हुए साफ और स्वस्थ समुद्र को बढ़ावा देने के लिए लोगों की लगातार भागीदारी बहुत जरूरी है। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर के 5वें संस्करण में 111 से ज्यादा जगहों पर समुद्र तट की सफाई के अभियान, समुद्र संरक्षण पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रतिज्ञा, युवा छात्रों के लिए अपनी तरह का पहला ओशन ओलंपियाड और तटीय राज्यों के साथ साथ डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई अन्य गतिविधियां शामिल होंगी। कैंपेन का समापन इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे 19 सितंबर को कई समुद्र तटों पर सफाई अभियान के साथ होगा। द्वीप समूह में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं।

सुबह से ही पंडालों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। पंडालों में भक्तों के लिए प्रसाद के साथ अन्नदानम की भी व्यवस्था की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं, टूर ऑफ अंडमान और फुटबॉल टूर्नामेंट। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार अब सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म एक्स, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। पर्यटन निदेशालय द्वारा वार्षिक साइकिलिंग आयोजन टूर ऑफ अंडमान के छठे संस्करण का दो बैचों में आयोजन किया जाएगा। पहला बैच 19 से 25 सितंबर तथा दूसरा बैच 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित होगा। इस आयोजन का उद्देश्य वर्ष 2019 में शुरू किया गया टूर ऑफ अंडमान द्वीप समूह को प्रमुख साइकिलिंग और एडवेंचर पर्यटन गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना है। इस साइकिलिंग संस्करण में देश विदेश के साइकिलिंग प्रेमियों को द्वीप समूह के प्राकृतिक परिदृश्य, तटीय मार्गों, जंगलों, द्वीपों, गांवों और सांस्कृतिक विविधता का अनुभव करने का अवसर मिलेगा। इस आयोजन को वर्ष 2026-27 के वार्षिक कार्यक्रमों के कैलेंडर में भी शामिल किया गया है। आयोजन के दौरान पुलिस, स्वास्थ्य, वन, नौवहन तथा संबंधित जिला प्रशासन सहित विभिन्न विभागों द्वारा आवश्यक सुरक्षा, यातायात, चिकित्सा एवं अन्य सहयोग प्रदान किया जाएगा। पर्यटन निदेशालय ने सभी संबंधित विभागों से आयोजन को सुचारू, सुरक्षित और सफल बनाने में सहयोग करने का आग्रह किया है। 65वें सुब्रतो मुखर्जी कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 के लिए अंडर 17 लड़कों की फुटबॉल टीम द्वीप समूह का प्रतिनिधित्व करेगी। यह टूर्नामेंट 15 से 24 सितंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। टीम को यह अवसर अप्रैल 2026 में आयोजित राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट जीतने के बाद मिला। शिक्षा निदेशालय के निदेशक आदित्य सांगोत्रा ने टीम को इस टूर्नामेंट के लिए शुभकामनाएं दी हैं। निदेशक ने युवा फुटबॉलरों को खेल भावना, अनुशासन और टीम वर्क बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया और भरोसा जताया कि वे शानदार प्रदर्शन करेंगे और द्वीप समूह का नाम रोशन करेंगे। अंडमान निकोबार प्रशासन ने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी संबंधित विभागों एवं प्रतिष्ठानों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अप्रेंटिस एक्ट के प्रावधानों के तहत 30 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को अपने कुल कार्यबल के 2.5% से 15% तक अप्रेंटिस नियुक्त करना आवश्यक है। जारी निर्देश में बताया गया है कि इस मामले को निगरानी के लिए प्रगति पोर्टल पर भी चिन्हित किया गया है। अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पर पहले से पंजीकृत सभी विभागों एवं प्रतिष्ठानों को तत्काल अप्रेंटिसशिप के अवसर तैयार कर उन्हें पोर्टल पर प्रकाशित करने तथा पात्र अप्रेंटिस को नियुक्त करने के लिए कहा गया है। वहीं जो प्रतिष्ठान अभी तक पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें बिना किसी देरी के पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने, इसके बाद अप्रेंटिसशिप के अवसर सृजित करने और अप्रेंटिस को नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा एएनएम के पद पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अपने आवेदन में हुई त्रुटियों को सुधारने का अवसर दिया गया है। निदेशालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार करेक्शन विंडो 16 सितंबर को सुबह 11 बजे से 18 सितंबर सुबह 11 बजे तक खुली रहेगी। अभ्यर्थी निर्धारित अवधि के दौरान ई रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर अपने आवेदन में आवश्यक सुधार कर सकते हैं। 18 सितंबर को सुबह 11 बजे के बाद किसी भी प्रकार के सुधार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने सभी संबंधित अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे अपने हित में करेक्शन विंडो का लाभ उठाते हुए आवेदन में आवश्यक सुधार समय सीमा के भीतर सावधानीपूर्वक पूरा करें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नवनियुक्त उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह का लाइव प्रसारण कल दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम से किया जाएगा। द्वीपों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 19 सितंबर को आइलैंड साइकिलिंग टूर 2026 का आयोजन किया जा रहा है। पर्यटन निदेश

मंत्रालय द्वारा वार्षिक साइकिलिंग आयोजन टूर ऑफ अंडमान के छठे संस्करण का दो बैचों में आयोजन होगा। और नई दिल्ली में 65वें सुब्रतो मुखर्जी कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 के लिए अंडर 17 लड़कों की फुटबॉल टीम द्वीप समूह का प्रतिनिधित्व करेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
3: आरबीआई कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 7:15 हुए हैं। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मछुआरों के लिए विशेष चेतावनी नहीं है। जन सेवाओं को मौसम संबंधित चेतावनी में बताया जाता है कि द्वीपों के एक या दो भागों पर बिजली गिरने के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से हवाएं चलेंगी, जबकि कल शाम तक द्वीपों के अधिकांश भागों पर वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की आशंका है। ये थी मौसम की जानकारी। अब लीजिए सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

जहाज रानी सेवा निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार एमवी रानी चंगा माया बंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर बुधवार 16 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान बृहस्पतिवार 17 तारीख को प्रातः 7 बजे डिगलीपुर से छूटकर माया बंदर होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी कैम्बलवे लिटिल अंडमान के लिए कल सुबह 10 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा तथा इसकी वापसी होगी कल ही रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए। एमवी कालीघाट लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार की यात्रा पर बुधवार 16 तारीख को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। ये जलयान बृहस्पतिवार 17 तारीख को शाम 4 बजे कार निकोबार से छूटकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। जलयान नालंदा नानकौरी होते हुए कैम्बलवे की यात्रा पर कल सुबह 9 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा तथा इसकी वापसी होगी बृहस्पतिवार 17 तारीख को सुबह 8 बजे कैम्बलवे से छूटकर नानकौरी होते हुए श्री विजयपुरम के लिए। एमवी रंगत स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सुबह 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी कमोटा शहीद द्वीप के लिए कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से चलेगा तथा इसकी वापसी होगी कल ही सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए। एमवी रानीचंगा स्वराज द्वीप के लिए कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा तथा इसकी वापसी होगी कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए। एमवी बम्बुका शहीद द्वीप के लिए कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा। ये जलयान कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए और दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप के लिए कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। ये जलयान कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से छूटकर श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी कचाल शहीद द्वीप के लिए कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी होगी कल शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए।

जॉली बॉय स्वराज द्वीप के लिए कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा। ये जलयान परसों बुधवार 16 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 7:20 हुए हैं। अब सुनते हैं कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं हीरो फिल्म के इस गीत से,

आनंद बख्शी का लिखा ये गीत था हीरो फिल्म से। गायिका थी रेशमा, संगीत से सजाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कहर, आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है आनंद मिलिंद ने।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में ये गीत था कहर फिल्म से। इस गीत के साथ ही दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 7:30 हुए हैं। अब युवा श्रोता अपना कार्यक्रम

युवावाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 14 सितंबर है और आज के दिन गणेश चतुर्थी हिंदुओं का एक प्रमुख और लोकप्रिय त्यौहार मनाया जा रहा है। यह त्यौहार भगवान गणेश के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगवान गणेश को बुद्धि, ज्ञान, सुख और समृद्धि का देवता माना जाता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और भारत के कई अन्य राज्यों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन लोग अपने घरों और सार्वजनिक स्थानों पर भगवान गणेश की सुंदर मूर्ति स्थापित करते हैं। भक्त भगवान गणेश की पूजा करते हैं और उन्हें मोदक, लड्डू और अन्य मिठाइयों का भोग लगाते हैं। लोग घरों को सजाते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। पूरे वातावरण में खुशी और भक्ति का माहौल रहता है। कुछ दिनों तक पूजा करने के बाद गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। दोस्तों, गणेश चतुर्थी हमें एकता, प्रेम, भक्ति और पर्यावरण की रक्षा का संदेश देती है। हमें इस त्यौहार को खुशी के साथ साथ स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मनाना चाहिए। रिद्धि सिद्धि के दाता हो तुम, सबके मन के प्यारे हो तुम, विघ्न हमारे दूर भगाओ, सफलता का आशीष दिलाओ। हमारे सभी श्रोताओं को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: त्रि मौजूद हैं, तो सबसे पहले मैं दावत देना चाहूंगा, शब्दों में आग और वाणी में आक्रोश है जिनके दिखता। शब्दों में आग और वाणी में आक्रोश है जिनके दिखता, जो सारे समा में जोश भर दे। ऐसे हैं ये वक्ता, अपने पंक्तियों में हिंदी की डोर थामे, कवि आयुष दुबे ला रहे हैं अपनी कविता।
1: नमस्कार दोस्तों, हिंदी दिवस के इस पावन उपलक्ष्य में मैं आज आयुष कुमार दुबे बहुत ही सौभाग्यशाली मान रहा हूँ अपने आप को। यहाँ पर बैठा हूँ और आप सभी के समक्ष जो भी रेडियो के श्रोता हैं उनके लिए मैं हिंदी भाषा पर आधारित एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। लोग हिंदी को मातृभाषा मानते हैं, मगर मैं हिंदी को माता मानता हूँ। मैं अपने माँ के लिए एक छोटी सी कविता रची है जिसको मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कुछ लिखा था इस प्रकार कि मैं संस्कृत का एक टूटा मन का हिंदी भाषा परिचय दूं, मैं तुलसीदास की कलम पर बैठा भाषाओं का अमृत हूं। मेरे रूप में खींची हर रेखा ने जगती का कल्याण किया, मेरे ब्रह्म वेद की प्रखर ज्योति ने मानव जीवन को साकार किया। मैं जानकी जितना पावन, राजा राम जितना शीतल हूँ, और शब्दों में इतनी ताकत मेरी कि परशुराम का फरसा मैं ही हूँ। दबा ने हिंदी को देश में मेरे, अंग्रेजी तूफानी घटा छाई, पर उसी घंघोर वर्षा में मेरे हिंदी मोर ने थिरक लगाई। मेरे साहित्यकारों के कर कमलों ने कलम थाम रच डाला कल, हिंदी उनकी सोच की ताकत, हिंदी उनके कलम का बल। तुम बंदूक छोड़ संदूक को खोलो और पलटो पन्ने इतिहास की, देखो कितनी समृद्ध थी हिंदी, मेरी हिंदी कितनी खास थी। मैं कैसे भुला दूं वो गीतांजलि, मैं कैसे भुला दूं वह गीतांजलि, मैं कैसे भुला दूं मधुशाला की छवि, कैसे भुला दूं सुभद्रा की तलवार को, मैं कैसे भुला दूं वह पावन गोदान को। मेरे हिंदी पुत्रों ने मेरा परचम जग में लहराया, और इतना अटल हुआ साहित्य कि ठाकुर तक नोबल चल आया। मैं पूरे विश्व की कल की आशा, पूरे विश्व की महारत हूँ, माउंट बेटन की इंडिया नहीं, महात्मा गांधी की सौरभ भारत हूँ। भारत माँ के मस्तक पर वह कनक स्वरूपी है बिंदी, गर्व करो ऐ देशवासियों, हमारी मातृ जिह्वा है हिंदी। जीवन का आनंद, फूलों की सुगंध, मेरे हिंदी में मिश्रित धरोहर अनंत। जहाँ तुम खड़े हो वहीं परचम गाड़ दो, हिंदी को तुम भी नई पहचान दो। आज से नहीं तुम अभी करो शुरू, बना दो तुम हिंदी को सबका गुरूर, बना दो तुम हिंदी को सबका गुरूर। अब प्रस्तुत है मेरी एक दूसरी कविता जो मैंने भारत माँ के लिए लिखी है, और भारत माँ के उन सपूतों के लिए लिखी है जिन्होंने भारत माँ को अंग्रेजी बेड़ियों से आज़ाद करने के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। लिखा कुछ इस प्रकार था कि इतिहास के पन्नों पर लगी धूल को आज मिटाता हूँ, इतिहास के पन्नों पर लगी धूल को आज मिटाता हूँ, जो बीज दबा है राष्ट्रवाद का उसको फिर उपजाता हूँ। लिखा था कि जंजीरों में जकड़ी भारत माता चीख रही थी सदियों से, जंजीरों में जकड़ी भारत माता चीख रही थी सदियों से, भारत माँ को आज़ाद देखने हमने लहू मिला दी नदियों से, 56 इंच के सीने में हमने लाखों गोलियां खाई है, काला पानी की काल कोठरी में हमने रात बिताई है, हमने फंदे को जयमाल समझ मौत से रचाई सगाई है, इतनी संघर्षों के बाद हमने आज़ादी पाई है। वीरों की जन्मस्थली है ये, यहाँ वीरों का रैन बसेरा है, काली घटा ना टिक पाई क्योंकि सोच में हमारे सवेरा है, कष्ट के तूफानों तले हमको रौंदना चाहा गोरों ने, आयात का हाथ बढ़ाकर हमको डस डाला सपोलों ने। भगत सिंह की वह पीड़ादायक शब्द कानों में गूंजी है, भगत सिंह की वह पीड़ादायक शब्द कानों में गूंजी है, उनकी ली गई हर एक सांस भारतीय वीरों की पूंजी है। आज भगत सिंह जवानी के उस उम्र में फांसी के फंदे के समक्ष खड़े हैं और कह रहे हैं, ऐ दुल्हन मैं राख बन सतलज नदी में बह गया, मत पूछ तुमसे जुदाई का गम कैसे दिल पर सह गया, शहादत की खुशी तो है मगर जाते जाते ये दुख भी है, क्योंकि आज़ादी तेरा घूंघट उठाना तो रह ही गया। अब पूछो लाला लाजपत से, अब पूछो लाला लाजपत से तुम कष्ट लाठियों के वार का, कतरा कतरा शोक मनाता जिनकी हर एक आह का, हमने छोड़ खौफ बंदूकों का खुद की चिता सजाई है, जल भुनकर अंगारों में हमने आज़ादी पाई है। आज़ादी क्या है मैं बताना चाहता हूँ कि संघर्षों के सूत में चमकती मोती आज़ादी, घनी अंधेरी रात में जगमग तारा आज़ादी,

सत्य अहिंसा का चिन्ह, बापू की लाठी आजादी, बलिदानियों के रक्त का कतरा कतरा आजादी। हम विराट वीर की गाथाएं निस्वासर दोहराएंगे, भारत माँ की जय का नारा मरते दम तक गाएंगे। हम मिट जाएंगे देश के खातिर, कभी न शीश झुकाएंगे। हम धरा फाट कर जन्मे हैं, हम अंबर तक लहराएंगे। ये आकाश जो आज अनंत आकाश है, खुला आकाश है, आज़ाद भरा आकाश है भारत देश का, वो आकाश नहीं एक नंदन है, यह माटी नहीं एक चंदन है। जिन्होंने लहू से रंगा है तिरंगे को, उन सबको अभिनंदन है। और एक कविता मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ उनके लिए, जिन्होंने कारगिल के युद्ध में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कारगिल के हीरो मनोज कुमार पांडे की। मनोज कुमार पांडे के कंधे पर हमने 4 बंकरों को फूंकने का जिम्मा दिया। उन्होंने कारगिल के पर्वत पर चढ़ाई कर 3 बंकरों को धड़ाधड़ ध्वस्त कर दिया, मगर जैसे ही चौथे बंकर को फूंकने के लिए वो खड़े हुए, पाकिस्तानियों ने उनके मस्तक पर गोली मारी और वो वहीं शहीद हो गए। कविता की शुरुआत मनोज कुमार पांडे की माँ करती हैं कुछ इस प्रकार से। आज सजे दिए मेरे चौखट पर, आज सजे दिए मेरे चौखट पर, मेरे आंगन में रौनक छा गई। देख चेहरा मेरे लल्ले का, मैं फूले नहीं समा रही। चांद से सुंदर चेहरा इसका, मैं सितारों के भांति सजाऊंगी। जब बोल उठेगा लल्ला मेरा, तो मैं भी माँ कहलाऊंगी। छोटी सी ही उम्र से वह खाब सजाए बैठा था, अपने प्रतापी बाहों में बंदूक थामना चाहता था। आज टूटता तारा सच हुआ, आज टूटता तारा सच हुआ, तन पर वर्दी सजी बड़े शान से, बन गया मनोज भी वीर सिपाही, अब सरहद कांपेगी उसके नाम से। आज छोड़ माता का शीतल आंचल, वह जा बसा उस सरहद पर, कैसे रहेगा लल्ला मेरा वह खून जमाती पर्वत पर। अब मनोज कुमार पांडे बताते उन्होंने कारगिल में क्या देखा। उन्होंने कहा कि आज सूर्य रहते काली माँ छा गई, आज सूर्य रहते काली माँ छा गई, मेरे माँ पर विपदा आ गई और उबल उठा मेरे लहू शिरा का, जब माँ पर पड़ी आतंकी परछाई। कायरता का लिए ध्वज उन्होंने आंखों में धूल झोंक दी, हमने गले लगाना चाह पाक को, उसने पीठ में खंजर घोंप दी। कारगिल की उन पर्वत पर मौत बाहें खोले पुकार रही, पर अंतरतम की ज्वाला से मेरी माँ भारती हुंकार रही। जिस खून ने मुझको सींचा है, आज उसका प्रण निभाऊंगा, जिस खून ने मुझको सींचा है, आज उसका प्रण निभाऊंगा। यमराज से आंखें मिलाकर मैं उस मौत को ललकारूंगा, जो वर्दी सजी है सीने में, आज इसका शपथ निभाना है, और उन्हीं डकैतों के सीने में मुझको झंडा गाड़ कर आना है। उन घनी अंधेरी आसमान ने, नब्ज जमाती तापमान ने, जब भी रोका रास्ता मेरा, होता गया प्राणहार में। आज गोलियों से खेलना है मुझको, आज गोलियों से खेलना है मुझको, आज प्राण की बाजी लगाऊंगा, या लहराऊंगा तिरंगा परचम में, या उसमें लिपट कर आऊंगा। उन आग उगलती बंदूकों का मैंने गला घोंट दिया, उन बिजली जैसी गोलियों का मेरे सीने ने रास्ता रोक दिया। कब्र नुमा उन बंकरों को कर दी मैंने दफन वहीं, ना छोड़ नू दहाड़ कर थाम ली मैंने कफन वहीं। अब उड़ चला है मेरा रूह परिंदा, अब उड़ चला है मेरा रूह परिंदा, भारत माँ की बाहों में। ए कायरों, तुम्हारी बंदूक की गिनती उंगली में, मेरे जवानों का सीना लाखों में। वह सिंह रूपी संगीन सरोवर शंखनाद है शंकर का, वह वीर भूमि के वीर स्वरूपी, जिनका हौसला विराट है पर्वत सा। वह अटल अचल अमर अजय विजय उनकी राहों में, जो अनंत अंबर को चीर दे आग वह ज्वाला उनकी बाहों में। हम फूंक डालेंगे चांद सितारे, हम फूंक डालेंगे चांद सितारे, कांपे गया सरहद भी, ऑपरेशन विजय का विजय होगा, जय घोष करेंगे पर्वत भी। हम लोगों ने कारगिल के उस पर्वत पर रोशनी फैलाई, हम लोगों ने कारगिल के पर्वत पर अपना परचम गाड़ा, लेकिन उसमें कई लोगों ने तिरंगे ओढ़े, उसमें से एक सपूत थे मनोज कुमार पांडे। आज शव घर आया है, माँ क्या कहती है। माँ को फिर से वह दिन याद आ गया जब माँ ने कहा था, आज सजे दिए मेरे चौखट पर। आज माँ बेटे का शव हाथों में लेकर कहती है, टूट गई मेरे चौखट घर की, टूट गई मेरे चौखट घर की, मेरे आंगन में दरार पड़ गई है, बुझ गई लौ दिए वंश की, बस ये 4 दीवारी रह गई है, सहरा धरा का धरा रह गया, सहरा धरा का धरा रह गया, लग गई धूल शेरवानी में, सगाई रचाकर मौत से वो अमर हो गया भरी जवानी में। माँ कहती है, वीरता की गाथा मैं इसकी हर सांस के साथ दोहराती हूँ, थाम परम वीर चक्र मेरे लल्ले का, मैं फूले नहीं समाती हूँ, मैं फूले नहीं समाती हूँ। अब ये मेरी कविता श्रद्धांजलि होगी रविन्द्रनाथ टैगोर जी के लिए, जिन्होंने साहित्य में भारत माँ को पहला नोबल जिताया था। तो प्रस्तुत है, कुछ लिखा इस प्रकार था कि कलमकार थे लाख कई पर, कलमकार

0: थे लाख कहीं पर, कलमकार हैं आज कई पर, उनसा अटल न आया कोई, उनसा विराट न कोई होगा। उनकी एक एक शब्दावली भारत में सदियों से गूंज रही, ठाकुर की वह मीठी वाणी आज भी मन को मूंज रही। दर्पण उनकी सारी रचना, दर्पण उनकी सारी रचना भारत का कण कण दर्शाती, तिलक के भांति सजी ललाट पर राष्ट्रगान है कहलाती। गीतों की अंजलि गीतांजलि, गीतों की अंजलि गीतांजलि ठाकुर की नावेद है, उनकी ए अंबरसी छाया भारतीय साहित्य की वेद है। अमन के नींव में काट के जीवन, अमन के नींव में काट के जीवन, देश को सौंपा तन मन धन, ध्वज एकता का लहराने स्थापित किया शांति निकेतन। भारत देश के अंबर में उनका ये ध्वज लहराया था, बीज एकता का बोकर उन्होंने सत्ययुग लौटाया था। और जीत के जीकर अपना जीवन, जीत के जीकर अपना जीवन, मूंद ली अपनी दोनों आंखें कर्म कला से सजे दिलों पर, लिहाजा आज भी चलती उनकी सांसें। क्योंकि जनगण मन का नारा उनका भारत का कण कण गाता है, भारत माँ का वीर सपूत गुरुदेव कहलाता है, भारत माँ का वीर सपूत गुरुदेव कहलाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: अपनी कविताओं के द्वारा सब में ही जोश जगा दिया, अमृत भाषा हिंदी का महत्व जन जन तक पहुंचा दिया। खूब कही उन वीरों की गाथा जिन्होंने जीवन किया वतन के नाम है, उन सभी वीरों को करते हम नतमस्तक प्रणाम है, उन सभी वीरों को करते हम नतमस्तक प्रणाम है। आइए दोस्तों, अब बुलाते हैं चुलबुली जिनकी आवाज और चुलबुला अंदाज है, चुलबुली जिनकी आवाज और चुलबुला अंदाज है, जितनी चंचलता उतना ही इनमें आत्मविश्वास है, जितनी चंचलता उतना ही इनमें आत्मविश्वास है। दिल थाम के बैठिएगा दोस्तों, क्योंकि अब होने जा रहा कवित्री ऋषिता चौधरी का आगाज है।
2: सभी दोस्तों को नमस्कार और हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, मैंने जो कविता लिखी है वो हिंदी दिवस पर ही आधारित है और कविता का शीर्षक है हिंदी हमारी पहचान। पहला शब्द जो मुख से निकला वो हिंदी में ही हमने बोला, मातृभूमि की मातृभाषा में था हमने कहा, माँ बाबा हम रहते हैं हिंदुस्तान में, मातृभाषा हिंदी हमारी, हम रहते हैं हिंदुस्तान में, मातृभाषा हिंदी हमारी, यहाँ हिंदी है हर भारतीय की शान, हिंदी है हिंदुस्तान का मान। सीखा हमने वर्णमाला, फिर बुनते गए उन अक्षरों की माला, हिंदी ने ही सिखाया हमको अ से अमर होना जीवन में, आ से आनंद का अनुभव, क ख ग से जीवन रचा, हिंदी ने दी भाषा का ज्ञान, पहले अक्षर से खुला आसमान, हिंदी से ही बना हिंदुस्तान। यह मात्र एक भाषा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति की पहचान है, आधुनिकता के इस दौर में यह बनी हमारी आन बान है। संस्कृत से जन्मी है हिंदी, शुद्धता का प्रतीक है हिंदी, लेखन और वाणी दोनों को गौरवनीत करवाती हिंदी। भारत के संविधान की रचना में जब आया भाषा का सवाल था, कई भाषाओं के बीच हिंदी ने जगह अपनी बनाई थी। 14 सितंबर 1949 का वो ऐतिहासिक दिन, हिंदी को मिला था राष्ट्रीय भाषा का सम्मान, देवनागरी लिपि में इसे अपनाया गया, संविधान में इसे विशेष स्थान दिलाया गया, अनुच्छेद 343 ने इसे अधिकार दिलाया, भारत के हृदय में इसे सदा बसाया, राष्ट्रभाषा के रूप में इसका बड़ा मान, संविधान में हिंदी की है ये पहचान, इसके संग है अन्य भाषाओं का भी मान, संविधान ने सबको दिया है सम्मान, लेकिन हिंदी की खास है बात, हर प्रांत में बोले चाहे अलग भाषा, हिंदी ने सबको साथ मिलाया, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हिंदी से ही एकता का हुआ प्रसार, राष्ट्रभाषा की ममता में जुड़ी है हर

0: दिल की डोर, शब्द शब्द में बसती है संस्कारों का अनमोल कोर। मिलजुल कर हिंदी अपनाओ, इसमें ही है सच्चा प्यार। भाषा से ही बंधेगा देश, यही है एकता का आधार। हिंदी दिवस है याद दिलाता, अपनी जड़ों से जुड़ना है। इसकी सेवा, इसका प्रचार, जीवन का उद्देश्य करना है। आओ सब मिलकर प्रण करे, हिंदी को ऊंचाइयां दे, विश्व में इसकी गूंज उठे, ऐसा हर प्रयास करे। हिंदी से ही बंधा है भारत का हर कोना, गांव शहर नदी पहाड़, सबका इससे है रिश्ता सोना। संवेदना का प्रवाह है हर दिल की ये आवाज, हिंदी में बोले जब मन जुड़ जाते हैं हर रास। कभी होती थी कागज पर, अब डिजिटल दुनिया में है स्थान। सिर्फ बोलने की नहीं ये भाषा, ये है संवाद का वितान। विज्ञान हो या तकनीक की बात, हिंदी में भी मिले सबको सौगात। नए युग की ये भाषा बने, हर क्षेत्र में अपना नाम रचे। हिंदी सिखाती सादगी और प्रेम, हर शब्द में है इसका मधुर नेम। हमारी सोच, हमारी वाणी, हिंदी से है भारत की कहानी। हमारी सोच, हमारी वाणी, हिंदी से है भारत की कहानी। आओ इसे और फैलाए, आओ इसे और फैलाए, नई पीढ़ी को इससे सजाए। इसमें ही है भविष्य की दृष्टि, हिंदी के बिना नहीं कोई सृष्टि। ज्ञान का सागर, प्रेम का अंबार, ज्ञान का सागर, प्रेम का अंबार, हिंदी के शब्दों में छिपा संसार। दुनिया को दिखाओ इसका नूर, हिंदी में छिपा है सबका गुरूर। हिंदी दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: अपनी कविता में इन्होंने हिंदी के भिन्न रंगों को दिखाया है, केवल महत्वता नहीं बल्कि हिंदी दिवस के इतिहास को दर्शाया है, और हम सबके मन को हर्ष से भर दिया इनके शब्दों ने, और हम सबके मन को हर्ष से भर दिया इनके शब्दों ने, और हमने भी अपनी हिंदी भाषा के सम्मान में सर झुकाया है, सर झुकाया है। अब दोस्तों ले चलते हैं आपको हमारे अगले कवि के पास। जितना निर्मल स्वभाव इनका उतनी ही निर्मल वाणी है, जितना निर्मल स्वभाव इनका उतनी ही निर्मल वाणी है। एक एक पंक्ति में इतनी गहराई, एक एक पंक्ति में इतनी गहराई, लगे कि कोई कहानी है। अपने मन के भावों को शब्दों के जरिए हम तक पहुंचाने जा रहे हैं, अपने मन के भावों को शब्दों के जरिए हम तक पहुंचाने जा रहे हैं। अब शांत स्वर के कवि हिमांशु, अब शांत स्वर के कवि हिमांशु अपनी कविताओं की झांकी ला रहे हैं।
2: हिंदी कितना सुंदर है, एक भाषा जो भारत नहीं बल्कि आज के समय में अलग अलग प्रांत से आए लोग कहते हैं, बातचीत करते हैं, सीखते हैं। कितना गर्व होना चाहिए हम भारतीयों पर। हिंदी हर राज्य के लोग अपनी ही अलग अलग वाणी में कहते हैं, उसको सुनना भी कितना सुंदर लगता है। यही खूबी है भारत देश की कि हम भारतीय चाहे कितने भी अलग संस्कृति से आएं, लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हर किसी को जोड़े रखती है। आज आपके सामने हिंदी की प्रवृत्ति पर, लोगों की सोच पर कविताएं लाया हूँ। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूँ, मैं अनूठा हूँ ये मेरे किरदार की खूबी है। मेरे परछाई और प्रकाश में कोई मतभेद नहीं, मैं स्वभाव से निर्माण हुआ हूँ, मैं अंधेरे में भी रहकर प्रकाश की भरमार हूँ। इसी के साथ मैं अपनी पहली कविता प्रस्तुत करना चाहूँगा। ये प्रकृति के ऊपर है, वर्षा के ऊपर है, जब बारिश आती है तो लोगों में कैसी उमंग आती है उस पर है। मेरी पहली कविता प्रस्तुत है कुछ ऐसे। बादलों का रंग बदल रहा है, एक नन्ही सी आस उठी है समय के साथ। बादलों का रंग बदल रहा है, एक नन्ही सी आस उठी है।

0: समय के साथ, मौसम के आने की खुशी में, बारिश के बूंदों में याद तब्दील हो रही है पीड़ा की। मौसम अंगड़ाइयाँ ले रही है वर्षा के शोक गीत में। मौसम अंगड़ाइयाँ ले रही है वर्षा के शोक गीत में। सूखे टहनियों आश्रय की तलाश में पेड़ों के नीचे बैठे हैं। सूखे टहनियाँ आश्रय की तलाश में पेड़ों के नीचे बैठे हैं। कुछ लोग चुप रहते हैं, वे देखते हैं बातों को सिर्फ बातों को। वे देखते हैं बातों को सिर्फ बातों को। मौसम का रुख बदल जाना चाहिए, वैसे नहीं जैसे इंतज़ार करता, वैसे नहीं जैसे इंतज़ार करता एक किसान अगली फसल के इंतज़ार में। मैं आपको अब आगे ले चलता हूँ मेरी दूसरी कविता की तरफ। जब लोग कभी कभी होता है कि पीड़ा से गुजरते हैं तो उनके मन में कैसी हलचल चलती है और वो उनसे कैसे उभरते हैं, उन पर है ये। ये कुछ इस तरह पेश है। जीवन क्या है? हाँ, चीखो, चिल्लाओ और रुक जाओ, फिर थक कर सो जाओ। वैसे भी यहाँ की हवा में नमी का एहसास पर सन्नाटे में, कैदी सा जीवन। हड़कम मची है यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से कहीं और। बस पड़े हैं फेंके हुए सामान की तरह। अच्छाई, खुशी, सुकून, सरलता सब दहक रहे हैं, सहम रहे हैं, सिमट कर एक कोने में रौंदे हुए। अंधेरे घुटन में दहक रहा है अंदर से, फिर भी मैं पत्थर बना बैठा हूँ।
1: प्रकृति के बदलते अंदाज से लेकर एक उदास मन की व्यथा तक हमें पहुंचा दिया। मन की कश्मकश और उनकी गहराइयों का खालीपन हमें इन्होंने दिखा दिया। धीमे स्वर से धीरे धीरे अपने काव्य से हमें बांधते गए, धीमे स्वर से धीरे धीरे अपने काव्य से हमें बांधते गए कि बदलते हालातों में भी शांत रहने का तरीका हमें सिखा दिया।
2: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुँचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं तो 1 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक वेव्स OTT ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दें। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब दीजिए अपनी रेडियो दोस्त सबीना बानो को इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, शुभ रात्रि।

श्रोताओं, कल 15 सितंबर को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मनोनीत उपराज्यपाल डॉक्टर दिनेश शर्मा के साथ शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसे दूरदर्शन के स्थानीय चैनल के साथ साथ यूट्यूब चैनल @DDK श्री विजयपुरम पर दिन में 11:30 बजे से लाइव देखा जा सकता है।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं महेंद्र कपूर, सुरेश वाडकर और साथियों के गाए मरते दम तक फिल्म के इस गीत से। गीत तथा संगीत रविंद्र जैन का।

क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन,

प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।

किशोर कुमार और महेंद्र कपूर की आवाजों में अब लीजिए सुनिए टक्कर फिल्म का गीत। बोल आनंद बख्शी के, धुन बनाई आरडी बर्मन ने।

0: Do you play for the rush or do you play it smooth? Lead every play with the new Brezza, now available with the exciting turbo booster jet, refined K15C engine and underbody SCNG. With 5-star safety rating, superior performance and features like ventilated seats, new 10.1-inch infotainment screen with premium audio. Every road is your playground. The new Brezza, now available at an introductory starting price of Rs. 7.39 lakh. Book a test drive today at your nearest Maruti Suzuki Arena showroom.
1: आवश्यक सूचना: आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएट उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक ना हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायकों अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।

0: Still stuck on old car? Switch to smarter fuel with more savings with Victoris SCNG. It's smarter because it gives an impressive 27.02 km per kg mileage and has underbody CNG tank, so you don't compromise on boot space. More savings because you get offers up to 50,000 on exchange of your old car. So hurry and book now. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. TNC apply.
1: कल 15 सितंबर को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मनोनीत उपराज्यपाल डॉक्टर दिनेश शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसे दूरदर्शन के स्थानीय चैनल के साथ साथ यूट्यूब चैनल @DDK श्रीविजयपुरम पर दिन में 11:30 बजे से लाइव देखा जा सकता है। कार्यक्रम के अंत में सुनिए सुहाग फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में ये गीत था सुहाग फिल्म से। गीतकार थे आनंद बख्शी तथा संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। रोजगार समाचार। भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA नई दिल्ली द्वारा प्रतिनियुक्ति यानी डेप्यूटेशन के आधार पर योग्य एवं इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

0: भर्ती के अंतर्गत ग्रुप ए के दो पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिनमें सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी और सहायक सलाहकार संचार के एक एक पद रिक्त है। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी तथा सहायक सलाहकार संचार के पदों के लिए सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर 11 के अनुसार होगा। नियुक्ति राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA नई दिल्ली में की जाएगी। आवेदन के लिए अभ्यर्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, रक्षा बल अथवा अन्य सरकारी विभाग में समकक्ष पद पर नियमित रूप से कार्यरत हो अथवा वेतन स्तर 9 में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी पद के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, सूचना प्रौद्योगिकी अथवा दूरसंचार में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता तथा सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। वहीं सहायक सलाहकार संचार के पद के लिए उपरोक्त विषयों में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता के साथ रक्षा बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों, पुलिस वायरलेस एवं संचार अथवा दूर संचार परियोजना के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव अपेक्षित है। दोनों पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष निर्धारित की गई है। पात्र अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन, आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर उचित माध्यम से अवर सचिव प्रशासन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सफरदजंग एनक्लेव नई दिल्ली 110029 के पते पर भेज सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इसी विज्ञापन के संदर्भ में पूर्व में आवेदन किया है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन भेजना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी 1 अगस्त 2026 का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर देख सकते हैं। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएट उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक ना हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी के श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी भी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है। रोजगार समाचार समाप्त हुए।
1: Do you play for the rush or do you play it smooth? Lead every play with the new Brezza, now available with the exciting turbo booster jet, refined K15C engine and underbody SCNG. With 5-star safety rating, superior performance and features like ventilated seats, new 10.1-inch infotainment screen with premium audio, every road is your playground. The new Brezza, now available at an introductory starting price of Rs. 7.39 lakh. Book a test drive today at your nearest Maruti Suzuki Arena showroom.
2: Hey, still stuck on old car? Switch to smarter fuel with more savings with Victoris SCNG. It's smarter because it gives an impressive 27.02 km per kg mileage and has underbody CNG tank, so you don't compromise on boot space. More savings because you get offers up to 50,000 on exchange of your old car. So hurry and book now. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. TNC apply.
0: गौरवगान कार्यक्रम के तहत आइए सुनते हैं कुछ देशभक्ति गीत।

गौरवगान कार्यक्रम के तहत अभी आप कुछ देशभक्ति गीतों का आनंद ले रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। अब कुछ ही पलों में अगला प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता की सराहना की, कहा भारत ने मजबूत आयोजन क्षमता प्रदर्शित की। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। अमरीकी विश्लेषक ने कहा दिल्ली घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता को दर्शाता है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता प्रकट की और देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी।
1: Where there are two major conflicts, where there are big divides.
2: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा था जब दो बड़े संघर्ष जारी हैं, गहरे मतभेद हैं और विभिन्न देशों के विचारों तथा हितों में काफी टकराव है। इसके बावजूद हम ऐसे वक्तव्य पर सहमति बनाने में सफल रहे जिस पर सभी ने सहमति जताई। इस वक्तव्य में शांति, सुरक्षा, स्थिरता, दीर्घकालिक आपसी समझ, वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं के सुचारू प्रवाह, ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति तथा नागरिकों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा का आह्वान किया गया है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
2: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।
0: नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल समापन के बाद समूह में भारत के नेतृत्व की कई सदस्य देशों ने तारीफ की है। भारत की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित 2 दिन का सम्मेलन कल संपन्न हुआ। एक रिपोर्ट।
3: ब्रिक्स में 11 बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, जो दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 40% हिस्सा हैं। ब्रिक्स देशों ने शनिवार को सम्मेलन में एकमत से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सहित दुनिया के नेता शामिल हुए। नई दिल्ली घोषणा पत्र में भारत की अध्यक्षता की तारीफ की गई और सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत सरकार और लोगों की प्रशंसा की गई। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने ब्रिक्स अध्यक्ष के तौर पर भारत के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि नई दिल्ली ने बेहद सफल सम्मेलन आयोजित किया है। चीन की सरकारी मीडिया और नेताओं ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को ग्लोबल साउथ देशों के बीच बेहतर गुणवत्ता के सहयोग और एकजुटता के लिए सकारात्मक कदम बताया। रूस ने ब्रिक्स सहयोगी देशों के साथ समावेशी विकास उन्मुखी साझेदारी के लिए मॉस्को के समर्पण की फिर से पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र सचिव अंतोनियो गुतरश ने भी भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की तारीफ की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी नई दिल्ली घोषणा पत्र की तारीफ की है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगेलमैन ने कहा कि ये घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की

0: अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढालकेबार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट तक विद्युत आपूर्ति को स्वीकृति दी गई है। एक रिपोर्ट।
1: हाल ही में बाढ़ से नेपाल में जल विद्युत अवसंरचना को काफी नुकसान हुआ है, जिससे उसकी घरेलू बिजली निर्माण क्षमता कम हो गई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता हो गई है। सोमवार से मिली मंजूरी से नेपाल को मुश्किल समय में बिजली की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और भारत और नेपाल के बीच करीबी और लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल की सहायता करने और ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह हैं, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में 2 दिन के हिंदी दिवस और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
4: भारतीय साहित्य एक विकसित सतदल कमल की तरह है, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएं किसी भी एक पंखुड़ी को नष्ट होने से कमल का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाएं रानी बनकर प्रांत में विराजमान रहे और इन सभी भाषाओं के बीच में हिंदी मध्यमणि बनकर ये सतदल कमल का सौंदर्य बढ़ाती रहे।
0: श्री अमित शाह ने कहा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को पूरा सम्मान और गरिमा देते हुए हिंदी को केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए।
5: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: इस अवसर पर राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए 11 संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर आज जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल कर ली है। आज राज्य के 10,245 वार्डों के लिए मतगणना हुई। इनमें 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाएं शामिल हैं। भाजपा ने जयपुर, कोटा, उदयपुर और भीलवाड़ा नगर निगमों में बहुमत हासिल कर लिया है, जबकि अलवर में वो आगे चल रही है। बीकानेर में कांग्रेस को बहुमत मिला है और अजमेर तथा पाली में पार्टी आगे है। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेनदेन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेनदेन की राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब 1,000 रुपये या उससे अधिक के असामान्य अंतरण को म्यूल अकाउंट या साइबर फ्रॉड से जुड़े होने की आशंका हो। मसौदा निर्देश अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, लेकिन बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और प्रतिभागी भाग लेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेत्किन ने भारत और मर्कोसुर के बीच तरजीही व्यापार समझौते के

0: विस्तार के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान समझौते में आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करने पर सहमति प्रकट की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। एक रिपोर्ट।
2: परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की और देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता और बढ़ सकती है। परिषद ने बाग जिला परिषद के सदस्य जावेद आरिफ अब्बासी की गिरफ्तारी पर भी चिंता प्रकट की। परिषद ने कहा है कि सार्वजनिक अधिकारों से संबंधित मुद्दों को शांतिपूर्ण ढंग से उठाना मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार है। परिषद ने आरिफ अब्बासी पर किसी भी आरोप को पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से निपटाने का आह्वान किया और कहा कि यदि उनकी हिरासत के लिए कोई स्पष्ट कानूनी आधार नहीं है तो उन्हें बिना किसी देरी के रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की है कि गुजरात ने मिष्टी योजना के अंतर्गत कच्छ में 27,000 हेक्टेयर में मैंग्रोव पौधे लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पर्यावरण मंत्री ने जाखौ स्थित वैज्ञानिक नर्सरी का भी दौरा किया। इस अवसर पर वन्यजीव संरक्षण और चीता परियोजना के अंतर्गत वन विभाग के लिए 33 निगरानी और बचाव वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और अब बात मौसम की। गुजरात में आज तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र के कुछ जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
3: राज्य में भावनगर के वल्लभीपुर में आज 6 इंच बारिश दर्ज की गई, जबकि आनंद के बोरसद में 5.5 इंच और अहमदाबाद में 3.5 इंच बारिश से आम जनजीवन पर असर पड़ा। भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया। इस बीच वाहन चालकों को भी मुश्किल का सामना करना पड़ा। पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण राज्य में सीजन की औसत 80% बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के कारण राज्य के 35 डैम हाई अलर्ट पर है। दूसरी ओर बारिश के कारण लंबे ब्रेक के बाद खरीफ की फसल को नया जीवन मिला है। मनोज सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कल तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि केरलम, माहे, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में भी कल इसी तरह के मौसम की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से गणेशोत्सव पारंपरिक तरीके से मनाने और प्रदूषण कम से कम करने की अपील की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का उत्सव बड़े उत्साह के साथ शुरू हुआ। भक्तों ने प्रार्थना, आरती, भक्ति गीतों और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ भगवान गणेश का स्वागत किया। मुंबई में लालबाग सराजा, गणेश गली, तेजुकाया और जीएसबी जैसी मशहूर मूर्तियों के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। भीड़ और ट्रैफिक को संभालने के लिए पुलिस, रेलवे और बेस्ट ने खास इंतजाम किए हैं। कई जिलों में एक गांव एक गणपति पहल को अपनाया गया। इस साल शोर शराबे वाले प्रदूषण को कम करने पर जोर दिया जा रहा है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता की सराहना की। कहा, भारत ने मजबूत आयोजन क्षमता प्रदर्शित की। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह हैं, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी। और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता प्रकट की। इसके साथ ही

नमस्कार दोस्तों, आपके हमारे साप्ताहिक मंच पब्लिक स्पीक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं मुनीश शर्मा। दोस्तों, आज की शुरुआत एक ऐसे सवाल से जो हर माता पिता के दिल को छूता है। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क का अधिकतर विकास करीब करीब 90% तो उसके शुरुआती 5 वर्षों में ही हो जाता है। जी हाँ, यही वो समय होता है जब

0: बच्चे के भविष्य की इबारत लिखी जा रही होती है, लेकिन अफसोस कई बार सही जानकारी न होने की वजह से हम अनजाने में अपने बच्चों से उनका वो सुनहरा कल छीन लेते हैं जिसके वो हकदार हैं। बच्चों को पालने का अर्थ उनका निर्माण करना है, और इसी निर्माण की दो मजबूत कड़ियां हैं सही पोषण और मानसिक प्रोत्साहन। इसी बेहद जरूरी और संवेदनशील विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, और हमारा आज का विषय है बाल विकास पोषण और प्रारंभिक प्रोत्साहन, यानी न्यूट्रिशन एंड अर्ली स्टिमुलेशन फॉर चाइल्डहुड डेवलपमेंट। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है, हमारे साथ हैं यूनिसेफ इंडिया की पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा एस पांडे और स्वामी दयानंद अस्पताल दिल्ली के बाल रोग एवं नवजात शिशु विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट। आप दोनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।
1: नमस्कार
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं, आप मिलाइए हमारे स्टूडियो के लैंडलाइन नंबर, लेकिन पहले 011 यानी दिल्ली का कोड, और फिर 2331 0481 2371717 2371710 और 2331444 और फिर आप हमसे पूछिए अपने सवाल। व्हाट्सएप नंबर है हमारा दोस्तों 9289094044, इस पर भी आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं, और आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlert पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है, और अब हमें आपकी फोन कॉल्स का है इंतजार। तो सबसे पहले चलिए बात शुरू करते हैं डॉक्टर पांडे से, जो यूनिसेफ इंडिया की पोषण विशेषज्ञ हैं। आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि आमतौर पर यह कहा जाता है डॉक्टर पांडे कि बच्चों के जो शुरुआती 1000 दिन हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है उनके पोषण के बारे में और उनके दिमागी और शारीरिक विकास को लेकर, ये क्या धारणा है और कितना सच है?
2: नमस्कार, पहले तो आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें मैं एक और बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, एक बहुत, हम लोग अभी जब ये डिस्कस कर रहे हैं तो अभी हम पोषण माह मना रहे हैं जो कि 9 सितंबर से ही शुरू हुआ है
0: जी।
2: और जो आपने बात की 1000 दिनों की, तो ये 1000 दिन बेसिकली ये कॉन्सेप्ट अराउंड 2007 और 8 के करीब आया था, जिसमें हम कहते थे कि 2270 दिन प्रेगनेंसी के और 365 मतलब पहले दो वर्ष जो हैं ये हम तीनों ऐड करते हैं तो हम कहते हैं ये पहले 1000 दिन है। अब ये जो पहले 1000 दिन है ये एक बच्चे के शारीरिक मानसिक और बौद्धिक विकास का नींव रखते हैं, और बच्चा आगे जाके कैसा होगा ये उस पर जो केयर हम इस ड्यूरेशन में दे रहे हैं माँ को और बच्चे को, सिर्फ बच्चे को नहीं बल्कि माँ को भी, वो उसके फ्यूचर को डिटरमिन करता है। तो फर्स्ट 1000 डेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो आपने इशू बोला कि अर्ली स्टिमुलेशन, तो इस पीरियड में माँ को भी सपोर्ट करना प्लस बच्चे को स्टिमुलेट करना एक कॉन्सेप्ट है हमारे फर्स्ट 1000 डेज
0: जी। और हमारे साथ जुड़ गए रायबरेली उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता रमा शंकर वाजपेयी जी। वाजपेयी जी, क्या सवाल है आपका?
3: नमस्कार, मैं ये पूछना चाहता था कि इंटरनेट और जंक फूड के जमाने में क्या बाल विकास और पालन पोषण सही ढंग से हो पाएगा, कृपया बताएं
0: जी। डॉक्टर बिष्ट
1: नमस्कार, और आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाजपेयी जी, आपने तो बहुत सही बात कर ली, और आपने मतलब जो दुविधा जो समाज और देश और विश्व इस समय जूझ रहा है वो जंक फूड है। जंक फूड का जिस तरह से विज्ञापन किया जाता है, जिस तरह से बढ़ाया जाता है, और जंक फूड के जितने भी हानिकारक दुष्परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं, उन सब पे आपने सही बात की, ये बहुत बहुत गलत बात है। जंक फूड जैसे कि पैकेज फूड है, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, पैकेट चिप्स, बिस्किट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूटी, जो भी आप जिस भी तरह के हैं, इन सब से बिल्कुल जो आहार है बिल्कुल सही नहीं है, और न्यूट्रिशन पोषण के लिए बहुत बहुत हानिकारक है
0: जी। तो उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है, और अब हम आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर पांडे की जो पूरक आहार है जिसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फूड, यानी

0: माता के दूध के बाद जो ठोस आहार देना शुरू होता है उनमें किन तत्वों का होना बहुत जरूरी समझा जाता है, माना जाता है या है दरअसल?
1: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न का, बिकॉज ये एक ऐसा व्यवहार है जिसमें हमने बहुत धीमा इम्प्रूवमेंट देखा है ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट टू डिकेड्स। अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की बात करते हैं तो उसमें हम दो तीन चीज़ें देखते हैं। हम ये देखते हैं कि क्या बच्चे को सही समय पे शुरुआत की गई, मतलब 6 महीने के बाद से, क्या बच्चे को क्वांटिटी और क्वालिटी जो मिल रही थी वो सही मात्रा में मिल रही थी, और क्या बच्चे को उतनी बार खिलाया जा रहा था, और अगर खिलाया जा रहा था तो क्या क्या चीज़ें उसको खिलाई जा रही थी। तो अब आपका जो प्रश्न आता है, और हमारे इन आंकड़ों में बहुत सुधार नहीं आया है, और उसका कारण कहीं ना कहीं अनभिज्ञता भी है। और क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं बच्चा 6 महीने का है तो उसको हम क्या ही दे सकते हैं, बच्चे को माँ का दूध ही मिलना चाहिए, बट यहीं पे गड़बड़ी है, क्योंकि वो पहला ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का रैपिड फेज होता है। तो इस समय बच्चे को माँ के दूध के साथ कुछ कुछ ऊपरी आहार जो कि घर में बनता है, और अभी जो और जो घर में हम क्या देते हैं, हम दाल चावल दे सकते हैं, हम आपके ये नट्स और सीड्स जो होते हैं इनको पीस के दे सकते हैं, कुछ भी साबुत नहीं देना है क्योंकि उसको मसल के देना है। जो सॉफ्ट फ्रूट्स हैं वो हम बच्चे को खिला सकते हैं, जैसे केला है, आम है, और हम बच्चे के खाने में दूध तो रहेगा ही रहेगा, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम नॉन वेजिटेरियन प्रेफर करते हैं तो उसको भी बहुत मैश्ड प्यूरीड फॉर्म में हम बच्चे को शुरुआत कर सकते हैं, धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी बढ़ानी है। तो ये सब मिलेगा तभी, और हर दिन मिलना है, ये भी नहीं है कि एक बार हफ्ते में या 30 दिन में एक बार, ये अगर बच्चे को हर दिन मिलेगा तो उसका माइक्रोन्यूट्रिय की जो आवश्यकता है वो शायद पूरी हो सकती है।
0: जी, ये तो बात हुई पोषण की, और चूंकि हमारे विषय में शामिल है आज प्रोत्साहन भी, तो डॉक्टर बिष्ट आप ये कृपया हमें बताइए कि ये शुरुआती प्रोत्साहन या अर्ली स्टिम्युलेशन जिसे कहा जाता है, ये है क्या?
2: थैंक यू। एक तो संपूरक आहार के लिए, जैसे मैडम ने कहा कि संपूरक आहार के साथ साथ कई बार हम इसको वीनिंग फूड कहते थे, तो वीनिंग का मतलब ये होता है कि आपने दूध धीरे धीरे कम करना है। दूध की मात्रा कम नहीं करनी है, जो पहले 6 महीने आपने केवल स्तनपान किया था उसके साथ दूध अगले 2 साल तक आपको सतत निरंतर स्तनपान कराते रहना है, और धीरे धीरे करके जैसे मैडम ने कहा आपको संपूरक आहार की मात्रा पहले कुछ चम्मचों से लेके, फिर आधी कटोरी से लेके, फिर 9 महीने में 1/4 कटोरी से लेके, और 1 साल पे 1 कटोरी दिन में 3 बार देने की व्यवस्था है, जिसमें आप तरह तरह के जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं जैसे कि अनाज है, दालें हैं, दूध है, घी है, कुछ फ्रूट्स हैं, तो इस तरह की जो डाइवर्सिटी है उसको देना बहुत ज़रूरी है। ये जो स्टिमुलेशन का पार्ट है, प्रोत्साहन का जो पार्ट है, वो खान पान से लिया जाए तो उसको खाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित किया जाए वो एक बहुत ज़रूरी बात है, कि खाने का समय जो हो वो ऐसा समय हो जो पारिवारिक समय हो, सब मिलके खा रहे हो, ऐसा नहीं हो कि भाई तुझे जल्दी काम करके निपटा के मैं ऑफिस निकलने वाली हूँ या निकलने वाला हूँ, या चलो इसको खिलाते फिर हम कहीं घूमने जाएंगे, या इसको रख दो, तो वो जल्दबाजी में नहीं कर सकते। और वो बच्चे के जो समय है, जब उसकी भूख है, उसके हिसाब से होना चाहिए, और कुछ धीरे धीरे के अनुशासित होता रहता है वो समय के साथ। प्रोत्साहन में जो दूसरा एक जो आप प्रोत कर रहे हैं अर्ली स्टिमुलेशन, वो मानसिक प्रोत्साहन है, और अर्ली स्टिमुलेशन में हम खाने के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि बच्चे को किस तरह से बातें करी जा रही है, खाने के समय उससे बात करते हैं, और कई बार हम उसको कहानी सुनाते सुनाते सुनाते खिला रहे हैं, और आज ये हुआ था, वो हुआ था, और आपने हमने देखा एक बूढ़ी अम्मा आई थी और ये हुआ, तो इस तरह के जो दादी अम्मा और कहानियाँ सुना सुना के बातें करते थे, उससे बच्चे के बोलचाल में आती है, भाषा में होता है, और उसके जो न्यूरल कनेक्शन बढ़ते हैं व्यवहार से लेके सब, उनमें उसमें प्रोत्साहन तो मिलता ही है और डेवलपमेंट भी बढ़ जाता है।
0: जी डॉक्टर पांडे, आपसे ये सवाल है हमारा कि बच्चों में जो ये समस्याएं होती हैं कि उनका कद ठीक से न बढ़ पाना उम्र के मुताबिक, या उनका वज़न जो है बहुत कम रह जाना, स्टंटेड ग्रोथ जिसे कहते हैं, वज़न बहुत कम रह जाना, यानी अंडर वेट हैं या स्टंटेड ग्रोथ है तो कद नहीं बढ़ा उनका, तो ये समस्याएं हैं, तो इसमें यूनिसेफ ने क्या इन्हें पहचाना है और इसके लिए क्या उपाय किए हैं, ये हमारा प्रश्न रहेगा। लेकिन इधर हिसार हरियाणा से हमारे एक श्रोता जुड़ गए हैं हमारे साथ, राजेंद्र, तो पहले सुन लेते हैं इनका सवाल।

0: मनीष जी को भी नमस्कार और डॉक्टर साहब को भी, इनको भी नमस्कार।
1: शुक्रिया जी, नमस्कार।
0: मैं जानने से बच्चे बीमार हो जाते हैं या नमोनिया एक मुख्य बीमारी है जो बच्चों को, तो इसके बाद खाने पीने में क्या सावधानियां रखी जाए और जो बच्चों को आगे चल के सही रहे 1000 दिन में। और दूसरा, आजकल बच्चे जो छोटे बच्चे 2 साल के ही मोबाइल के बहुत ज्यादा शौकीन हो गए, मोबाइल वगैरह नहीं रह सकते, इसके बारे में जानना था आगे मोबाइल क्या असर दिमाग पे डाल सकता है इसके बारे में।
1: जी, तो इन्होंने दरअसल दो बड़े महत्वपूर्ण सवाल जो हैं वो मिला दिए हैं और ये हमारे जो आपसे नियमित प्रश्न होने वाले थे उनमें पहले से शामिल हैं। एक तो ये है कि निमोनिया की, खैर इन्होंने जो बात की वो एक बात है, और दूसरी ये है कि जो हम स्टिमुलेंट्स की बात कर रहे हैं, तो कई बार माता पिता ये समझ लेते हैं कि अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है, उसको पसंद नहीं आ रहा है, सो एज ए स्टिमुलेंट इट इज आई मीन एप्ट और राइट और करेक्ट टू इंट्रोड्यूस देम टू सम यू नो मीडिया और रील्स और टेलीविजन। तो ये कितना सही है, कितना उचित है या गलत है, इनका सवाल भी इससे जुड़ा हुआ। डॉक्टर बिष्ट
2: राजेंद्र जी, आपके दोनों सवाल ही जैसे बोला है मुनीष जी ने बहुत सही है। निमोनिया किससे मैं बात करता हूँ, क्योंकि एक चिकित्सक होने के समय से निमोनिया एक काफ़ी जानलेवा बीमारी थी और हमारे अभी भी जो शिशुओं की मृत्यु दर है उसका जो मुख्य कारक है उसमें दस्त और निमोनिया अभी भी मेजर कारण होते हैं, और उसका निवारण से लेके उसका रोकथाम के लिए सरकार अलग अलग तरह के कार्यक्रम कर रही है। टीकाकरण एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिसमें हम बहुत तरह के टीके लगाते हैं जो खतरनाक निमोनिया से बचाने के काम करते हैं, मगर जो मौसमी बीमारियाँ हैं, मौसमी वायरल निमोनियाज हैं, वो निमोनियाज होते हैं, उनमें आपको यही है कि जिसको खांसी जुकाम बुखार हो उन लोगों से बचा के रखिए, और निमोनिया जैसे कोविड था, इन्फ्लुएंजा है, H1N1 है, इन सब बीमारियों को आगे फैलने ना दीजिए। अगर एक बार निमोनिया हो जाता है राजेंद्र जी जैसे आपने कहा है, तो किस तरह का है, तो अगर किसी को बार बार निमोनिया हो रहा है कि क्या उसको सांस में तकलीफ है जिसको हम एस्मा कहते हैं, और बार बार सांस में निमोनिया होना या भाप लगाने की जरूरत पड़ना, नेबुलाइजर की जरूरत पड़ना, वो एस्मा है, उसमें वातावरण में कुछ बदलाव की भी जरूरत पड़ सकती है। दूसरा आपका जो सवाल था कि टीवी और मीडिया का जो टीवी उनका मोबाइल का जो शौक है, मोबाइल के शौक के लिए 0 स्क्रीन टाइम है 2 साल से कम बच्चे के लिए, तो आप अपने परिवार में, आप बड़े हैं, आप अपने परिवार में अपने लोगों को बताइए कि इससे मानसिक जो विकास होता है वो बहुत कम हो जाता है, कनेक्शन नहीं बन पाते हैं, और आगे जाके बच्चे की जो कैपेबिलिटीज़ है, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ है, वो कम हो सकती हैं। तो आप 2 साल तक तो 0-0 है, उसके बाद हम कहते हैं कि जब जैसे स्कूल जा रहे हैं और हमें लगता है कि कुछ पढ़ाई लिखाई के लिए भी काम होता है, और आजकल हमने कोविड में देखा है कि एक माध्यम बन गया है शिक्षा का भी, तो नेट और इंटरनेट भी, तो उसमें हमने 2 घंटे से ज़्यादा का स्क्रीन टाइम किसी को भी अलाउ नहीं करेगा।
1: जी, हमारे एक और श्रोता हमसे जुड़ गए हैं दिल्ली से, धर्मवीर जी। तो धर्मवीर जी बताइए क्या है आपका प्रश्न।
3: जी नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधी दिल्ली से बोल रहा हूँ।
1: नमस्कार
3: डॉक्टर साहब, जैसे पौष्टिक आहारों में आप बताते हैं दूध दही पनीर मक्खन घी, ये अब कुछ दिन पहले ही देखिए आपने समाचार में सुना कि ये हमारे पौष्टिक आहार ये भी नकली हमारे सामने आ रहे हैं, तो आम इंसान तो भ्रम में रह जाएगा कि हम कौन सा ले कैसा खाएं, पनीर नकली, खोया नकली, अभी मक्खन भी नकली आया था, वो तो हमने ही खरीद लिया था गलती से, तो फिर इसको वापिस करा, तो इसके लिए क्या सावधानी बरतें हैं, और क्या ये जंक फूड में भी ये नकली देते हैं, तो जहर पे जहर, नीम कितना करेला है नीम चला, तो ऐसे ये डबल डबल जहर हमारे पे बच्चे को अनजाने में खाने पड़ जाते हैं।
1: जी धर्मवीर जी, हालांकि ये जो आपका प्रश्न है ये एक अलग दिशा का प्रश्न है और हमारे आज के विषय से थोड़ा अलग है, हालांकि बहुत ही गंभीर ये समस्या है और बराबर अखबारों में और अन्य मीडिया के माध्यमों से इस समस्या जो है उजागर हो रही है, लेकिन डॉक्टर पांडे आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में।
4: धर्मवीर जी, आई थिंक एक जो बहुत अच्छी बात है कि आपको ये बात पता है कि बाहर जो कई बार जो मिल रहा है वो सही नहीं है, तो सबसे बड़ी शुरुआत तो यही है कि हम जो भी हम एज डॉक्टर्स जो मैसेज देते हैं कि भाई जितना हो सके आप घर का बना खाना खाइए, कंप्लीट प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन शायद नहीं हो पाएगा, बट फिर भी अगर हम जागरूक हैं तो शायद हम अपना बचाव कर सकते हैं, अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं, अपने बच्चों को हम बचा सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको

0: जानकारी है, जानकारी को अब आपको सही दिशा में ले जाना है। बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें नहीं खानी। और बाकी जैसा मनीष जी ने कहा कि ये बहुत ब्रॉडर सिस्टमिक चेंजेस की तरफ भी डायरेक्ट कर रहा है, तो मे बी आज का कॉन्वर्सेशन इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगा।
1: बहरहाल धर्मवीर जी शुक्रिया, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमसे पूछा। और सासाराम बिहार से हमसे जुड़ गए हमारे श्रोता अमित उपाध्याय जी। अमित जी क्या सवाल है आपका?
2: जी जितेंद्र जी विशेषज्ञ हैं, पहले नमस्कार। मेरा एक सवाल था कि जैसे कि जो बाहर में बहुत सारे लोग रहते हैं एकल परिवार में, तो उनको समय नहीं दे पाते हैं, तो एक मैं बोल रहा था कि डिसिप्लिन चार्ट थोड़ा सा बता देते कि कैसे हम लोग कुछ समय अगर बच्चों को सुबह में या शाम को थोड़ा सा भी समय देते हैं, ताकि बच्चों का मानसिक विकास हो सके। जो 5 साल जो आपने जिक्र किया कि 5 साल तक खासकर, तो कैसे हम लोग इसको फॉलोअप कर सकते हैं? क्योंकि हम लोग थक जाते हैं या उतना समय नहीं दे पाते हैं भागम धाग के जिंदगी में, लेकिन चाहते हैं कि बच्चे का विकास भी हो, तो हम लोग कैसे क्या इसको एक डाइट चार्ट के तरह अनुसार डिसिप्लिन की तरह की कैसे इसको हम लोग क्या क्या कर सकते हैं बच्चों को, थोड़ा सा इस पर एक बार डिस्कशन हो जाए।
1: जी जी जी, डॉक्टर बिष्ट से हम ये जानना चाहेंगे, जैसा कि आपका सवाल है और खासतौर पर ये आपने न्यूक्लियर फैमिलीज जो एकल परिवार हैं जिनमें बड़े बूढ़े माता पिता नहीं हैं, सिर्फ माता पिता और बच्चे हैं छोटे, तो वहाँ वो कैसे फिर इस समस्या से निजात पाएं या कैसे क्या समाधान हो? दरअसल कहना
3: अमित उपाध्याय जी, ये तो इस नए समाज की और एक अर्बन समाज की एक दुविधा है कि हमें एक जो संयुक्त परिवार के फ़ायदे थे और संयुक्त एक कंप्लीट होलसम फैमिली जो होती है जिसमें दादा दादी नाना नानी चाचा बुआ सब होते हैं, वो सब नहीं हो पा रहे हैं। मगर जहाँ तक सवाल है कि एक परिवार में जहाँ पे माता पिता हैं और भाई बहन हैं, तो उनमें जो स्टिमुलेशन है क्योंकि मानसिक रूप से करने के लिए उसको व्यवहार, मैंने पहले भी कहा, उसको स्टिमुलेट होना चाहिए। तो माँ बाप के पास समय से आप उनको जितना भी समय मिलता है आपको, ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं होता कि बच्चा 24 घंटे में से 23 घंटे बिगड़ माँ बाप के रह रहा है, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो आपको जो संरक्षण देना है और जो साथ देना है बच्चे का, वो तो है ही। तो अगर जितने भी घंटे मिल रहे हैं आपको, 10-12 घंटे जितने मिल रहे हैं, उस वक्त आप अलग अलग समय बच्चे के साथ बात कर रहे हैं, बच्चों को कहानियाँ सुना रहे हैं, बच्चों को कुछ कुछ उनको स्टिमुलेट कर रहे हैं, छोटे छोटे गेम्स दे रहे हैं, छोटे छोटे जैसे छुपन छुपाई का गेम खेल रहे हैं, कई बार पकड़ पकड़ाई खेल रहे हैं, कई बार कट्टा कट्टा खेल रहे हैं, आप कुछ भी चौकस खेल रहे हैं, तो आप कुछ भी गेम खेल रहे हैं। कई बार हम उन्हें थोड़ा छोटा छोटा जंप कराते हैं, लॉन्ग जंप कराते हैं, पोशअप खेलते हैं, खींचा खाची करते हैं। दीज आर ऑल स्टिमुलेशन गेम्स विच वर जो हम आराम से पहले से गाँव में करते थे, रस्सा कस्सी कर रहे थे, थोड़ा बहुत हल्की सी कुश्ती भी टाइप की कर रहे थे, जूटी बूटी, तो ये सब था जो बच्चे को स्टिमुलेट करता था। कई बार चीज़ें छुपा देते थे, उनको ढूंढ के लाने के लिए बोलते थे, दीज आर गेम्स विच यू कैन डू। एंड सर्टेनली हम ये नहीं कह रहे कि आपको मोबाइल में दिखा के उनसे सारे गेम सिखाने और करने हैं, आप घर पे बैठ के जो पहले हम काम करा करते थे कर सकते, पेड़ के आगे आंगन में पेड़ के पीछे छुप गए ये सब करना, दैट इज ऑल। आँख में बंद करके आप कर रहे हैं, वो जो आँख मिचोली थी वो बहुत बहुत अच्छा खेल था, क्योंकि उसमें बच्चों को अंधेरे में भी या आँख बंद करके भी चलने का छूने का स्टिमुलेशन मिलता था।
1: जी डॉक्टर साहब, और ये हमारे श्रोता हिमाचल प्रदेश से शिमला से हमसे जुड़े हैं और पूछना चाह रहे हैं शिमला से, राकेश जी। जी कहिए, क्या है आपका सवाल?
4: जी नमस्कार सर, और मैं राकेश बात कर रहा हूँ पहाड़ी क्षेत्र कोटखाई शिमला से। तो मैं, हमारे जो है सेब का जो है फल होता है, तो मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, जब हम बच्चों को फल फ्रूट खाते हैं तो किस तरह से खिलाने चाहिए? कई बार हम बच्चों की आदत होती है कि फल ऐसे ही खा लेते हैं, कि क्या फल जो है धो के खाना कितना आवश्यकता है, जैसे कि खासकर जो है हमारे एप्पल होगी।
1: जी जी जी डॉक्टर पांडे,
0: देखिए अगर आपका बच्चा छोटा है, पहली बात तो है कि अगर बच्चा 6 से 8 महीने का है, उसको हम कहते हैं ना थोड़ा सा सेमी सॉलिड, मतलब वो जो चम्मच से गिराने पे थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा निकले। अब आप जो सेब की बात कर रहे हैं जो ग्रो होता है, छोटे बच्चों को इवन छोटे छोटे मैश अगर आप काट के देंगे पीसेस, तो उसके गले में फंस सकते हैं। सो बहुत केयरफुल रहिए छोटे बच्चे को, जब तक बच्चा अपने उंगली से पकड़ के उसको, उसके दांत ना निकल आए, वो च्यू ना कर पाए, तब तक उसको कटा हुआ कोई पीस नहीं देना है, बिकॉज निगलने और गले में फंसने की संभावना होती है। शुरुआती महीनों में उसको मैश्ड फ्रूट्स ही देने। आपने सेब की बात की, नॉर्मली सेब हम देर से शुरू करते हैं, शुरुआत हम कहते हैं कि हम केला दे सकते हैं, हम आम दे सकते हैं, जो सॉफ्ट चीज़ें होती हैं जो निगली जा सके बच्चे के द्वारा, वो देनी चाहिए शुरुआती।

0: में सेब और सेब की फांके नहीं देनी चाहिए, बिकॉज ये कड़े होते हैं. उसी तरह आप अनार की भी वो नहीं देने हैं आपको. तो ये कुछ सुझाव है हमारी तरफ से.
1: जी जी, दिल्ली से हमारे श्रोता हैं संजय जी. संजय जी, क्या है आपका प्रश्न?
2: शिक्षित दायरे में एक जगह बना दी जाए सरकार की ओर से, ताकि बच्चों की देख रेख करे काम के दौरान जब माता पिता काम पर हो, ताकि जो है बहुत अच्छे से बच्चों की देख रेख करो, काम के बाद माता पिता ले जाए और उस हिसाब से उनका टैक्स वगैरह थोड़ा कटे, या तो काम के हिसाब से जैसा सैलरी होगी उस हिसाब से डिसाइड कर दे पैसों का, ताकि क्योंकि कर्नाटक में अभी कुछ दिनों पहले हुआ था प्राइवेट एक.
1: जी जी जी जी जी, हाँ ये आपने एक अच्छे उदाहरण दिए. और बात दरअसल हो रही है कि जो बच्चे हैं बहुत ही छोटी उम्र के, तो उनका जो पोषण है वो कैसा हो और उनको जो शुरुआती प्रोत्साहन है वो कैसे दिया जाए. दोस्तों, हमारे स्टूडियो की फ़ोन लाइन्स खुली हैं, आप मिलाइए हमारे स्टूडियो लाइन नंबर. लेकिन पहले ज़रूर ये शून्य और फिर नंबर 2331048, या व्हाट्सएप पर आप चाहें तो सवाल आप हमें भेज सकते हैं. अभी मैंने देखा हमारी स्क्रीन पर उभरा था व्हाट्सएप का एक प्रश्न, और व्हाट्सएप का नंबर है दोस्तों 9289094044. तो इस पर भी आप हमें अपने सवाल हमें भेज सकते हैं. आज हम चर्चा कर रहे हैं बाल विकास, पोषण और प्रारंभिक प्रोत्साहन विषय पर, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ यूनिसेफ इंडिया की पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा एस पांडे और स्वामी दयानंद अस्पताल के बाल रोग एवं नवजात शिशु विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट. जी हाँ, तो हमारे एक और श्रोता हमसे जुड़ते दिखाई दे रहे हैं हमसे, और व्हाट्सएप पर है ये सवाल हर्षवर्धन जी का. हर्षवर्धन जी पूछना चाहते हैं कि बच्चों को आहार कितने माह बाद देना चाहिए. हालांकि आहार तो मैं समझता हूँ डॉक्टर पांडे की उन्हें जन्म के फौरन बाद ही दे दिया जाता है आहार, यदि कहें, लेकिन शायद पूरक आहार के विषय में
0: तो वो 6 महीने के बाद ही देना चाहिए.
1: जी जी जी, तो हर्षवर्धन जी का जो ये प्रश्न था, तो हम आपको ये बता दें कि 6 माह बीत जाने के बाद, यानी कि तब तक वो जो शिशु है वो माता का दूध पीता है, और उसके बाद आप उसे ये जो संपूरक आहार या पूरक आहार जिसे कहा जाता है वो दे सकते हैं.
3: मुनिषे का इस पर अन्नप्राशन और
1: जी
3: जो हमारी एक पुरानी व्यवस्था थी, परंपरा थी, तो उसमें पहले से हमारे पूर्वजों को पहले से ही पता था कि अब बच्चा तैयार हो गया है, अब उसमें दांत आने लगे हैं, अब वो चबाने की शक्ति आने लगी है, तो उसे कुछ कुछ ठोस आहार दे रहा था. उसके लिए अन्नप्राशन जैसी कुछ परंपराएं थी.
1: अन्नप्राशन को दरअसल हमारे यहाँ
3: फेस्टिवल
1: संस्कृति में एक संस्कार में गिना गया है, जैसे विवाह संस्कार, तो उसी तरह अन्नप्राशन सबसे पहला.
0: पर एक इसमें बात और है कि अन्नप्राशन में कई बार हम लोग फील्ड में जो देखते हैं वो कहते हैं चटा देना, बट चटाने के बाद खिलाना भी है. तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हर्षवर्धन जी ने बात की, कि कई बार चटाना इज नॉट सफिशिएंट, हमें बच्चे को खिलाना है माँ के दूध के साथ.
1: जी जी जी. और दोस्तों, आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल हमें पोस्ट कर सकते हैं. और हम आपको बता दें कि ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है. हमें आपकी फोन कॉल्स लगातार मिल रही हैं, आपके सवाल हम तक पहुंच रहे हैं. और डॉक्टर बिष्ट, आपसे ये जानना चाहूंगा मैं, हालांकि एक श्रोता ने भी पूछा था लेकिन वो थोड़ा उनका अंदाज कुछ अलग था इस सवाल को लेकर. हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो स्क्रीन टाइम है, यानी ये जो मोबाइल है या टेलीविजन का देखना और बच्चों को भोजन कराना, क्या ये मानसिक विकास को प्रभावित करता है?
3: देखिए, जैसा जिस परिस्थिति में आजकल के एकल परिवार से बात हुई थी, और उनके पास सीमित समय है, और कई बार हम जो रिस्पॉन्सिव फीडिंग होती है जिसमें बच्चे के हंगर क्यूज से संबंधित खाना खिलाना है और हम अपने समय के अनुसार खिलाना चाहते हैं, तो कई बार हम एक फोर्स फीडिंग करने की कोशिश करते हैं, या फिर कुछ ऐसा मतलब इमेजिनरी या ऐसा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ बच्चा स्तब्ध हो जाए या फिर जड़ मत हो जाए और टीवी देखता रहे और हम उसके मुंह में कुछ कुछ डालते रहे.

0: तो इस तरह के एक डेज्ड और जॉम्बी टाइप के हालत में हम बच्चे को खिलाते रहते हैं, वो उस पर ना तो उसे खाने का स्वाद पता चलता है, ना उसे खाने का टेस्ट टेक्सचर पता चल रहा है, और वो उस वक्त जो खाने का जो मज़ा लेना है वो नहीं ले पाता। तो वो ऐसे बच्चे बाद में भी जो खाना, उनको फूड फैटिज्म भी ज़्यादा होता है और उनको खाना खिलाने से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं।
1: तो डॉक्टर पांडे, आपसे हमारा एक सवाल था, वो चूंकि श्रोता का हमारा कॉल आया तो वो अनुत्तरित रहा, तो यूनिसेफ ने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं बच्चों का जो कद ना बढ़ना या वजन की जो समस्याएं होती हैं उसको लेकर?
2: तो दो चीजें हैं, एक हम टर्म यूज करते हैं, टेक्निकल टर्म है स्टंटेड, मतलब बच्चे का हाइट कम रह गई। स्टंटिंग एक महीने दो महीने में नहीं होती, ये क्रॉनिक कंडीशन है, लंबे समय। तो जो फर्स्ट 1000 डेज का जो आपने प्रश्न पूछा था वो कई बार स्टंटिंग को एड्रेस करता है। हम माँ को पहले 2 साल को केटर करें तो बच्चा हमारा कुपोषित नहीं होगा। तो ये तो स्टंटिंग का हो गया। स्टंटिंग को चेंज करना मुश्किल है। हम यहाँ पे सरकार के साथ काम करते हैं, सरकार की योजनाओं से जुड़े हुए हैं। और एक एरिया है, क्योंकि स्टंटिंग लॉन्ग टर्म है तो उसमें आपका विमेन एम्पावरमेंट, पॉवर्टी, आपका फूड फीडिंग प्रैक्टिसेस, इलनेस, अगर कोई जैसे हमारे का काफ़ी उन्होंने प्रश्न पूछे, बीमारी है बच्चे को तो हमने कैसे केयर किया, हमारा जो वातावरण में सफाई स्वच्छता है, तो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। तो स्टंटिंग को हम बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, बट हम डेफिनेटली प्रिवेंटिव बिहेवियर्स को एज यूनिसेफ प्रमोट करते हैं गवर्नमेंट के प्रोग्रामों के साथ। एक एरिया है जिसमें हम लोगों ने काफ़ी काम किया है और अपनी तरफ से योगदान देने का प्रयास किया है, वो है सीवियर वेस्टिंग या फिर सैम बच्चा जो कि बहुत अति कुपोषित है। उसके लिए हम लोग कुछ अस्पतालों के साथ मिलकर काम करते हैं, हम ट्रेनिंग्स करते हैं, हम लर्निंग्स फील्ड से लाते हैं, हर स्टेट की अपनी एक यूनिक लर्निंग है और उस लर्निंग को हम गवर्नमेंट के साथ शेयर करते हैं कि क्या उस लर्निंग को हम और स्केल अप कर सकते हैं। और ये मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कई स्टेट्स ने सैम प्रोग्राम अच्छे से सक्सेसफुली चला रहे हैं सरकार के मार्गदर्शन में, और प्लस हमसे जितना तकनीकी सहयोग दिया जा सकता है वो हम अपने लेवल से दे रहे हैं।
1: अच्छा डॉक्टर बिष्ट, क्या ये जो पोषण जो है ये सिर्फ शारीरिक विकास पर ही प्रभाव डालता है या मानसिक विकास को भी प्रभावित करता है?
0: जैसा मनीषी आपने शुरुआत में ही कहा, ये पहले 1000 दिन का जो डेवलपमेंट है या आहार है वो उसके क्योंकि दिमाग बनता ही पहले 5 साल के अंदर है, 90 से 95% मैं कहूँगा कि दिमाग जो है वो पहले 5 साल बनता है। जन्म पे बच्चे का जो हेड सरकमफ्रेंस होता है वो तकरीबन 33 होता है और 5 साल पे 50 सेंटीमीटर होता है, और उसके बाद जो हमारा अभी एडल्ट है वो 52 से 53 सेंटीमीटर ही होगा। तो आपसे जो सिर्फ 2-3 सेंटीमीटर ही हेड और बढ़ेगा तो बाकी दिमाग का जितना बढ़ना होता है वो पहले 5 साल में ही होता है और सारे कनेक्शंस भी तभी बन रहे होते हैं।
1: जी, यूनिसेफ इंडिया की पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा एस पांडे और स्वामी दयानंद अस्पताल के बाल रोग एवं नवजात शिशु विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट आप हमारे स्टूडियो में पधारे, हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद। और हम अपने सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद करते हैं। कार्यक्रम आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें हमेशा की तरह इसी मेल पर भेज सकते हैं, पता है हमारा airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम को आप दोबारा सुनना चाहें तो आइए हमारी वेबसाइट पर, वेबसाइट है newsonair.nic.in, इस पर आप लॉग इन कर सकते हैं। पब्लिक स्पीक का ये अंक दोस्तों यहीं समाप्त होता है, आप हमें दीजिए इजाजत। मैं हूं मुनीश शर्मा, आज्ञा लेते हैं आपसे, नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: थैंक यू।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। अब पेश है कार्यक्रम संदेश आते हैं।

आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में अपने पसंदीदा गीत सुनने के लिए आप अपना नाम व पता, फिल्म का नाम, गीत के बोल टाइप करके व्हाट्सएप कीजिए हमें इस नंबर पर 9474234000। नंबर एक बार पुनः नोट करें, 9474234000। करते हैं कार्यक्रम का आगाज और लेते हैं प्रोग्राम का पहला व्हाट्सएप मैसेज, जिसे भेजा है कलिकट से आकाश ने। हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये गीत आशिकी 2 फिल्म से।

के स्वर में। अब आइए सुनते हैं जिस्म टू फिल्म का ये गीत। इस गीत को सुनने के इच्छुक श्रोता है डिगलीपुर से प्रीति और संगीता।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माय वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
0: संदेह से आते हैं कार्यक्रम को जारी रखते हुए, आइए सुनते हैं बम फ्लैट से फिरदौस तरन्नुम और शब्बीर की पसंद पर ये गीत हीरो फिल्म से। आवाजें हैं मोहित चौहान, प्रिया पंचल और साथियों की।

आवश्यक सूचना: आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएट उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक ना हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है।

सोनू निगम, नीरज श्रीधर और साथियों की आवाज़ों में आइए अब सुनते हैं राज द मिस्ट्री कंटिन्यूस फिल्म से ये गीत, जिसे लिखा है कुमार ने, धुन बनाई राजू सिंह ने। इस गीत को सुनना चाहा है प्रेमनगर से अशोक प्रजापति ने।

कल 15 सितंबर को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मनोनीत उपराज्यपाल डॉक्टर दिनेश शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसे दूरदर्शन के स्थानीय चैनल के साथ साथ यूट्यूब चैनल @DTK श्रीविजयपुरम पर दिन में 11:30 बजे से लाइव देखा जा सकता है। रेस, आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का गीत।

समीर का लिखा एवं प्रीतम का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत था रेस फिल्म से। स्वर था आतिफ असलम का। इस गीत को सुनने के इच्छुक श्रोता थे रंगत से सुमित्रा और सुचित्रा। इस गीत के साथ ही संदेशे आते हैं कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जन सेवाओं तथा मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। कल शाम तक के मौसम संबंधित पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश भागों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय रात्रि के 10:30 और 18 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा यहीं पर समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz पर विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 24वीं तिथि, तदनुसार 15 सितंबर सन 2026। इस समय सुबह के 5:28 और 37 सेकंड हुए हैं। अपनी आज की पहली सभा में हम आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं।

0: लीजिए सुनिए अनमोल विचार।
1: नेतृत्व की अभिलाषा केवल आगे बढ़ने की इच्छा नहीं, बल्कि दूसरों को साथ लेकर आगे बढ़ने का संकल्प है। सच्चा नेता वही है जो स्वयं उदाहरण बने और दूसरों की सफलता का मार्ग प्रशस्त करे।
0: ये था अनमोल विचार। अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं